श्लोक राज रहे बनता विनोद कुसुम रंग बिखसोर नानक तेह सरनी परो बिनस जाए मैं मोर पौड़ी रे मन बिन हर जय रचा तह तह बंधन पाए जेह बिद कतू न छूटी है सकते उकमाहे हाँ हाँ करते कर्म रत ताको पारिया फार प्रीत नहीं जो नाम स्यो तौ एऊ कर्म बेकार बादे जम की जेवरी मीठी माया रंग भ्रम के मोहे ने बुझै सो प्रभ सधु संग लेखे गणतना छूटी है काची पीतना शुद्ध

होवा साधु संग जो राते रंग एक कै नानक गूड़ा रंग पौड़ी हरारा रंगो या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना हरे रे दरगह कह ना को आओ बैठ आदर सुभ देऊ ओआ महली पावे तू बासा जन्म मरण होए बिनासा मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके हर संपै नानक करता कै सलोक लालच झूठ बेकार मोह व्यापत मूड़े अंध लाग परे दुर्गंध स्यों नानक माया बंद पौड़ी लल्ला लपट बिखैर असराते अहम बुद्ध माया मदमाते या माया।

लगना नानक ठाकर सदा अलिपना श्लोक। लाल गोपाल गोबिंद प्रभ गहर गंभीर अथाह

होवनहार हो सदयाया, वकंत न काहू पाया। कीट हस्त में पुरुष माने, परगट पुरख सब डाऊ सब ठाऊ जाने। जा कौ दीनो हर रस अपना, नान गुरमुख हर हरते जपना। श्लोक आत्म रस जे जानिया, हर रंग सहजे मान। नानक तन तन तन जानो, आए ते प्रवान। पौड़ी आया सफल ताहू को गनिय, जास रसनो हर हर जस भनिय। आए बसै साधु कै संगे, अंदर नाम ते आवै रंगे। आवत सोजन ना मैं राता, जाको दया मैं बेदाता। एक आवन फिर जो ना आया, नानक हर कै दर सुमाया। सलोक यास जपत मन होए आनंद, बिनसै दूजा भाओ। दुख दर्द तृष्णा बुझै, नानक नाम समाओ। पौड़ी यैया जारो धर्म दो, तिसै त्याग सुख सहजे सो। यैया जाए परो संत सरना, जे आसरिया पव जल तरना। यैया जन्मना आवै सो, एक नाम ले मने प्रो। यैया जन्म नहारी है, गुरपूरे की टेक। नानक ते सुख पाया, जा कै ही अरे एक। श्लोक अंतर मंतन बस रहे, ईत ऊत के मीत। गुरपूरे उपदेसिया, नानक जपिए नीत। पौड़ी अंदन सिमरौ तास कहो, जो अंत सहाई होए। एह बिखिया दिन चार छे, छाड़ चलो सब कोए। कां को मात पिता सोतिया, गृह बंता का संग न लिया। ऐसी संच जो बिनसत नाही, पसेती अपने कर जाही। साध संकर कीर्तन गाया, नानक ते बहुर न आया। श्लोक अत सुंदर कुलीन चतर, मुख ज्ञानी धनवंत। मृतक कहिए नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। पौड़ी गंगा खड़शास्त्र हो ज्ञाता, पूरक कुंभक रेच करमाता। ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी, सोम पाक अपरस उद्यानी। राम नाम संग मन नहीं हेता, जो कश कीनो सो अनेता। उवा ते उत्तम गनो चंडाला, नानक जे मन बसै गोपाला। श्लोक कुंट चार दै दिस प्रमे, कर्म किरत की रेख। सुख दुख मुक्त जोन, नानक लिख्यो लेख। पवड़ी

बंधन परे नानक नाम छुटार पौड़ी। जजा जानै हो कछ हुआ बांध्यो जो नलनी परमसुआ। जो जानै हो भगत ज्ञानी आगै ठाकर तिल नहीं मानी। जो जानै मैं कथनी करता व्यापारी बसदा जो फिरता। सा संग जे हो मैं मारी नानक ता को मिले मुरारी। श्लोक चालांगे उठ नाम जप निस्बा सिर आराध। कारा तुझे न व्यापई नानक मिटै उपाद। पौड़ी चज्जा चूर्ण मिटै तुम्हारो राम नाम स्यों कर व्यवहारो। चूरत चूरत सख्त मुआ जा कर दै होत पहु बिया। चरै कसमल पाप तेरे मनुआ अमृत कथा संत संग सुनुआ। चरै काम क्रोध दृष्टाई नानक जा को कृपा गुसाई। सलोक यतन करो तुम अनक बिद रह ना पावो मीत। जीवत रहो हर हर भजो नानक नाम प्रीत। पवड़ी नया ज्ञानो दृढ़ सही बिनस जाय ए हेत। गणती गणो ना गण सको उड़सदारे केत। न्यो पेखो सो बिनसतो कास्यो करिए संग। ज्ञानो या बिद सही चित झूठो माया रंग। ज्ञानत सोई संत सोए भ्रमते की चित भिन्न। अंध कूपते देख डो जे होवो सो प्रसन्न। न्या कह सम्राते कारण करने योग नानक ते उसत करो न्याहू कियो संजोग। श्लोक टूटे बंधन जन मरण साध सेव सुख पाए नानक मनो न बिसरै गुणित गोविंद राय। पौड़ी

देंदे तोट न आवई अगणत परे पंडार, दैन हार सद जीवन हारा मन मूर क्यों ताहे बिसारा, दोष नहीं काहू कौ मीता माया मोह बंद प्रभ गीता, दर्द निवारे जाके आपे नानक ते दे गुरमुख त्रापे, सलोक धर जिया रे इक टेक तू लाहे बिडानी आस, नानक नाम ते आई है कारज आवै रास पौड़ी, तद्दा तावत तौ मिटै संत संग होए बास, तुरते कृपा करो आप तौ होए मनै प्रगास, तन साचा तेऊ सच साहा हर हर पूंजी नाम बिसाहा, तीरज जस सोभा तेह बनया हर हर नाम श्रवण जे सुनया, गुरमुख जेह कट रहे समाई नानक ते जन मिली वडाई, सलोक नानक नाम नाम जप जपया अंतर बाहर रंग, गुरपूरै उपदेसिया नरक नाहे साध संग पौड़ी, नन्ना नरक भरै ते नाही जाकै मन तन नाम बसाही, नाम निदान गुरमुख जो जपते बिख माया मैं ना होए खपते, नन्ना कारना होता ता कहो नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो, निद निदान हर अमृत पूरे तैं बाजे नानक अनहद तूरे, सलोक पत राखी गुर पार ब्रह्म तज प्रपंच मोह बेकार, नानक सो आराधिए अंत ना पारा वार पौड़ी, पप्पा परमित पार ना पाया पतत पावन अगम हर राया, होत पुनीत कोट अपराधु अमृत नाम जपै मिल साधु, पर पज त्रोह मोह मिट नाई जा कहो राखो आप गुसाई, पात साहो छत्र सिर सोउ नानक दूसरे अवर ना को, सलोक फाहे काटे मिटे गवन फतेह पई मन जीत, नानक गुरते थित पाई फिरन मिटे नित नीत पौड़ी, फफा फिरत फिर तू आया दुर्लभ देहे कल युग मैं पाया, फिर अवसर चरै न हाथा नाम जपो तो कटिए फासा, फिर फिर आमन जान ना होई एक एक जपो जप सोई, करो किरपा प्रभ करने हारे मिल रहो नानक बेचारे, सलोक बिनो सुनो तुम पार ब्रह्म दीन दयाल गोपाल, सुख संपै बहु भोग रस ना।

उड़ी हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश हे पूर्ण हे सर्व मैं दुख पंजन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निदान जां कै सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे हैपी हो बनहार हे संतें कै सदा संग निदारा आधार हे ठाकर हौं दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए नानक दीजै नाम दान राखो ही है परोए सलोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन गुरुदेव बंधप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश गुरुदेव मंत निरुदरा गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूर्त गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतत पवित्र करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूड पापी जित लगतरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा एहो श्लोक आद अंत पढ़ना गौड़ी सुखमनी महला पंजवां श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद आद गुर ए नमः जुगाद गुर ए नमः सतगुर ए नमः श्री गुरुदेव ए नमः अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो सिमरो जास विषम पर एक नाम जपत अगणत अनेक वेद पुराण सिमरत सुधाखर कीने राम नाम एक अखर किनका एक जिस जी बसावै ताकी महिमा गनी ना आवै कांखी एक दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उदा

सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भक्त जना कै मन विश्राम रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन ना लागै, प्रभ कै सिमरन अंदर जागै। प्रभ कै सिमरन भव ना व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै। प्रभ का सिमरन साध कै संग, सर्ब निदान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभ कै सिमरन जपता पूजा, प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा। प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी, प्रभ कै सिमरन दरगै मानी। प्रभ कै सिमरन होए सो भला, प्रभ कै सिमरन सफल फला। से सिमरै जिने आप सिमराए, नानक तां कै लागो उपाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सबके सुझै। प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद महे समाए। प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरै से धनवंते, प्रभ को सिमरै से पतवंते। प्रभ को सिमरै से जन परवान, प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान। प्रभ को सिमरै से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरै से सर्ब के राजे। प्रभ को सिमरै से सुखवासी, प्रभ को सिमरै सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिने आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला। प्रभ को सिमरै से पर उपकारी, प्रभ को सिमरै तिन सद बलिहारी। प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावै। प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता। प्रभ को सिमरै तिन आनंद कनेरे, प्रभ को सिमरै बसै हर नेरे। संत कृपा ते अंधन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग। प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभ कै सिमरन कहो ना चूरे। प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहि समानी। प्रभ कै सिमरन निःचल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन। प्रभ कै सिमरन अनह चुन कुआर, सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार। सिमरै से जन जिन कौ प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए। हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चहो कुंट जाते। हर सिमरन तारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगले आकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा। कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। श्लोक दीन दर्द दुख पंजना, कट कट नाथ या नाथ। शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जह मात पिता सुतमीत ना पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जय महाभयान दूत जमदल, तै केवल नाम संग तेरे चले। जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी।
अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंदना परै, हर का नाम जपत निस्तरै। अनक माया रंग तिख ना बुझावै, हर का नाम जपत अगावै। जेह मार्ग हो जाता केला, तै हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा धियाइऐ, नानक गुरमुख परम गत पाइऐ। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपतै पार पराही। अनक बिगन जाए आए संघारै, हर का नाम तत्काल उधारै। अनक जोन जन्मै मर जाम, नाम जपत पावै विश्राम। हौ मैला मल कबो न धोवै, हर का नाम कोट पाप होवै। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइऐ साध कै संग। जेह मार्ग के गने जाहे ना कोसा, हर का नाम।

जहां त्रिखा मन तुझिया करख तै नानक हर हर अमृत बरख भक्त जना की बरतन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जनकोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रत।

हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कौ परै न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालिक जीना, हर तन जन कौ आ प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग के ते तरे। पार जाते ओ हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत दिवसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तोल कछ अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खड़ शास्त्र सिमृत वखियान। जोग अभ्यास कर्म धर्म किरिया, सगल त्याग बन मद्दे फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, महा उदास्त पीसर थीवै। अग्न माहे होमत प्राण, कनक असव है वर पूम दान। न्यौली कर्म करै बोवासन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमख निमख कर शरीर कटावै, तौपी होमे मैल न जावै। हर के नाम समसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै। सोच करै दिन सियर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करै, मन ते कबहू ना बिखिया उटरै। जल धोवै बहु दे अनीत, शुद्ध कहां होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहु मूच। बहुत सियाणप जम का पौ व्यापै, अनक जतन कर तृष्णा त्रापै। पेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोटो पाव दरगै नहीं सजै। छूट सनाही।

हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहे सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगे साजना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सदगावै। जे को अपनी शोभा लोरे साध संग ए मैं शोरे, जे को जन्म मरण ते डरे साजना की सरनी परे। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रधान सा संग जाका मिटे अभमान, आपस कहो जो जाने नीचा सो गनिय सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल की रीना हर हर नाम तन कट कट चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल सृष्ट साजना। सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा। निरता

जो ठाकर ससदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जा की टहल पावे दरगे मान तिसे बिसारे मुगदिया जान। सदा सदा एहो कूल नहार नानक राखन हारिया पार रतन त्याग कौडी संग्रचे साच छोड़ झूठ संग मचे जो छड़ना सो अस्त्र कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करे संग सहाई तिस पर हरे चंदन ले प्यो तारे धोए गर्द प्रीत पसम संग होए अंध कु मैं पतत बिकराल नानक काढ़ लेहो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर पेख अंतर मल माया शब्द नाहे कश

बिनस जाए हमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जेह प्रसाद शक्ति अमृत खाहे तिस ठाकर कौ रख मन माहे जेह प्रसाद सुगंधत तन लावै तिस कौ सिमरत परम गत पावै जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मन अंदर जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरौ तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसै त्याग कत अवर लोबावै जेह प्रसाद सुख से सुई जै मन आठ पहर ताका जस गावी जै जेह प्रसाद तुझ सब को मानै मुखता को जस रसन बखानै जेह प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पाल ब्रह्म प्रभ जी जबत दरगै मान पावै नानक पासे ती कर जावै जेह प्रसाद आरो कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जेह प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत जेह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकर प्रभ ताकै जेह प्रसाद तुझको ना पहुचै मन सास सास सिमरो प्रभ ऊचे जेह प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ता की भगत करे हे जेह प्रसाद या पूखन पहरी जै मन ते सिमरत क्यों वाल सकी जै जेह प्रसाद असव हस्त असवारी मन तिस प्रभ कहो कबहू ना बिसारी जेह प्रसाद बाग मिलख तना राख परोए प्रभ अपने मना जिन तेरी मन

साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूझते मूची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेख एक बिन कोए। नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमला लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सुर सर्ब कौ सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग कौ लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै तीर्ज एक, जो बसदा को खोदे को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ, नानक ज्यों पाव का सही स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जलाओ। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब दे नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जिन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ही उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो महा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अह बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै करसदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संघेता। ब्रह्म ज्ञानी कै होया चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी का उसका आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी सच जीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक। और तारै जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान।
निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक हो अपरसो सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श। पारत्रे रूप ना पेख नेत्र, साध की टहलो संत संग हेत। कर्ण ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद बिखिया परहर, मन की बासना मन ते टर। इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नान कोट मदे को ऐसा अपरस। बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते होए भिन्न। कर्म करत हो

नानक हो बैसनो परम गत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग। मन ते बिनसै सगला परम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नित नीत, मन तन अर्पै बिसन प्रीत। हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन पर बोधै, राम नाम या तुम्हें सोधै। राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित के उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जोन ना आवै। वेद पुराण सिमरत बूझै मूल, सुख में जानै अस्थूल। चहु वरना कौ दे उपदेश, नानक उस पंडित कौ सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चहु वरना मैं जपै को नाम। जो जो जपै तिसकी गत होए, सत्संग पावै जन कोए। कर कृपा अंतर उतारै, पस प्रेत मुग्ध पाथर को उतारै। सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहू जूत कत ना पाइय धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म। जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास। आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया। सदा निगट निगट हर जान, सो दास दर गए परवान। अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सोजी परै। सगल संग आत्मे उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सोऊ कहावै। तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तै नहीं वियोग। तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान। जो वरताए साई जुगत, नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर रखै तैसा तिन नाओ। आपे करन करावन जोग, प्रभ पावै सोई फुन होग। पसर्यो आप होए अंत तरंग, लखे ना जाहे पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश। सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पहे निहाल। सलोक उस्तत करे अनेक जन, अंत ना पारा वार। नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी। कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमय उदासी। कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते। कई कोट आत्म ध्यान तारै, कई कोट कब का विचारै। कई कोट नवतन नाम ते आवै, नानक करते का अंत ना पावै। कई कोट पय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी। कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर। कई कोट पर दर्ब कौ हिरै, कई कोट पर दुख ना करै। कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट पर देश पर माहे। जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी। कई कोट पंखी सर्प्यो पाए, कई कोट पाथर बिरख निपजाए। कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल। कई कोट ससियर सूर नखियतर, कई कोट देवदानव इंद्र सिर शतर। सगल समग्री अपने सूत तारै,
नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै। कई कोट राजसो तामसो सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत रसास्त। कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत। कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे। कई कोट जख किन्नर प्रसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिरगाच। सब ते नेरै सबहू ते दूर, नानक आप अलिप्त रहया परपूर। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी। कई कोट जन्मै जीवै मरै, कई कोट बौजोनी फिरै। कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट घालै थक पाहे। कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया मै चिंत। जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किछ प्रभ कै हाथे। कई कोट भय बैरागी, राम नाम संगतिन लव लागी। कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते। कई कोट दर्शन प्रभ्यास, तिनको मिल्यो प्रभ बनास। कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग। जिनका होए आप सो प्रसन्न, नानक तेजन सदा तन तन। कई कोट खानी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड। कई कोट होए अवतार, कई जूत कीनो विस्तार। कई बार पसरे उपासार, सदा सदा एक एक अंकार। कई कोट कीने

जिस हो वैसो प्रसन्न। अष्टपदी अविनाशी ब्रह्म मैं राख, मानव की तू प्रीत त्याग, तिस्ते पर नाही किस कोए, सर्व निरंतर एको सोए। आपे बिना आपे दाना, गैर गंभीर गहिर सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद, कृपा निधान दयाल बख्शंद। साध तेरे की चरनी पाओ, नानक कै मन एहो अनराओ, मनसा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग।

करता कह। राज मैं राज, योग मैं जोगी, तप मैं तपीसर, ग्रस्त मैं भोगी, त्याय त्याय भगत सुख पाया, नानक तिस पुरख का किनंत ना पाया, जा की लीला की मित नाहे, सगल देवहारे अवगाहे, पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत, सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे, जन दास नाम ते आवैसे, ते गुण में जा को परमाए, जन्म मरे फिर आवै जाए, ऊच नीच उतिसके स्थान, जैसा जनावै तैसा नानक जान, नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पे करे करंग, नाना बिदकीनो विस्तार, प्रभव नासी एकंकार, नाना चलत करे खिन माहे, पूर रहो पूर्ण सब ठाए, नाना बिदकर बंत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब कर तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवै नानक हर नाओ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे सिमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगले आकार, नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवण, कर कृपा जिस आपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए, रूप सत जाका सत अस्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख समाए समाणी, सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करणी निर्मल निर्मली, जिसै बजाय तिसै सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नान गुर ते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत तेजन जा कर दे प्रवेश, सत निरत बूझै जे कोए, नाम जपत ता की गत होए, आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत, जिसकी सृष्ट सो करने हार, अवरना बुझ करत विचार, करते की मित ना जाने किया, नानक जो तिस पावै सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म पय बिस्माद, जिन बुझिया तिस आया स्वाद, प्रभ के रंग राजन रहे, गुर के भजन पदार्थ लहे, ओए दाते दुख कट नहार, जा के संग तरे संसार, जन का सेवक सोवड भागी, जन के संग एक लिव लागी, गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे, गुर प्रसाद नानक फल पावे, सलोक आद सच जुगाद सच है पे सच, नानक होसी पे सच, अष्टपदी चरण सत सत परसनहार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत यावनहार, आप सत सत सबधारी, आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभगता, सुरत सत सत जस सुनता, बुझनहार कौ सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए, सत स्वरूप हृदय जनमान्या, करण करावन तिन मूल पछान्या, जा कर दे विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया, पै ते निरपव होए बसाना, जिस ते उपजया तिस माहे समाना, बस्त माहे ले बस्त गडाई, ताको पेना कहना जाई, बूझे बूझन हर बबेक, नारायण मिले नानकेक, ठाकर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकर का सेवक सदा पुजारी, ठाकर के सेवक है मन प्रतीत, ठाकर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकर कौ सेवक जाने संग, प्रभ का सेवक नाम कह रंग, सेवक कौ प्रभ पालनहारा, सेवक की राखै निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभ धारै, नानक सो सेवक सा सा सुमारै,
अपने जन का पर्दा ढके, अपने सेवक की सर पर रखे, अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की अपने सेवक की आपत रखे, ताकि गतमत कोई ना लखे, प्रभु के सेवकों को न पहुंचे, प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया, निकी कीरी मैं कल रख है, भस्म करे लश्कर कोट लख है, जिसका सासना काटते आप, ताको राख्त देकर हाथ, मानस जतन करत बहु पात, तिसके कर्तब बिरथे जात, मारे ना राखे अवरना कोए, सर्ब जिया का राखा सोए, काहे सोच कर रे प्राणी, जप नानक प्रभ लख विडानी, बारंबार बार प्रभ जपिए, पी अमृत मंत्र त्रपिए, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिसके शवरना ही दृष्टाया, नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग, नाम रस जो जंत्र बताने, मन तन नामे नाम समाने, उठत बैठत सोबत नाम, कहो नानक जन कै सद काम, बोलो जस जेहबा दिन रात, प्रभ अपने जन की नींदात, करे भगत आत्म कै चाए, प्रभ अपने स्यों रह सो आए, जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने, तिसकी महिमा कौन बखाना, तिसका गुण कह एक न जाना, आठ पहर प्रभ सह हजूरे, कहो नानक से ही जन पूरे, मन मेरे तिनकी ओट ले हे, मन तन अपना तिन जन दे हे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्श सब पाप मिटावे, अवर सियाणप सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान ना होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा, सलोक सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाओ, तिसके संग सिख उदर, नानक हर गुण गाओ, अष्टपदी सतगुर से की करे प्रतपाल, सेव कौ गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै, सतगुर सिके बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै, सतगुर सिको नाम धन दे, गुर का सिख वट पागी है, सतगुर सिका हलत पलत सवार है, नानक सतगुर सिको जी नाल सुमार है, गुर कै ग्रह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह, आप सिकाओ कर कछ ना जनावै, हर हर नाम हृदय सत्यावै, मन बेचै सतगुर कै पास, तिस सेवक के कार्य रास, सेवा करत होए नेकामी, तिसका होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिसे आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बीस बिसवे गुर का मन मान, सो सेवक परमेश्वर की गत जान, सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनक बार गुर को बल जाओ, सर्वनिधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म मैं जानो जन मैं पार ब्रह्म, एक आप नहीं कछ परम, सहस सियाण पो लया ना जाई है, नानक ऐसा गुर वड भागी पाई है, सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसब चरण गत निर्मल रीत, भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे, सुनकर बचन करनिया गाने, मन संतोख आत्म पतियाने, पूरा गुर अखियो जा का मंत्र, अमृत दृष्ट पेखे हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावै तिस लय मिलाए, जेहबा एक उस्तत अनेक, सतपुरख पूर्ण विवेक, काहू बोलना पहुंचत प्राणी, अगवा गोचर प्रभ निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत कने ना पाई, अनक भगत बंधन नित करै, चरण कमल हृदय सिमरै, सदबलिहारी सतगुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने,
एहो हर रस पावै जन कोए, अमृत पीवै अमर सो होए, उस पुरख का नाही कदे विनाश, जा कै मन प्रगटे गुणतास, आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक दे, मोह माया कै संग ना लेप, मन में रखे हर हरेक, अंधकार दीपक परगासे, नानक परमो दुख तै ते नासे, तपत माए ठंड वरताई, आनंद भया दुख नाटे पाई, जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेशे, पाव चूका निरपा होए बसे, सगल ब्याद मन देख नसे, जिसका साथ इन कृपा तारी, साध संग जप नाम मुरारी, थित पाई चूके भ्रम गमन, सुन नानक हर हर जस रवन, निर्गुण आप सरगुण पियो ही, कला तार जिन सगली मोही, अपने चरत प्रव्या बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिन दूजा नाही कोए, सर्व निरंतर एको सोए, ओत पोत रव्या रूप रंग, पय प्रगास साध कै संग, रच रचना अपनी कल तारी, अनक बार नानक बलिहारी। सलोक साथ ना चाले बिन भजन, बिखिया सगली शार, हर हर नाम कमावना, नानक हो तन सार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवर्यो पाव सब मीत बिसारो, चरण कमल रिद मैं उर तारो, करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हरवथ, एहो तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाए, जिस तन कौ चार कुंट उठतावै, सो तन हर सेवा ते पावै, जिस सुख कौ नित बाछै मीत, सो सुख साधु संग परीत, जिस सोभा कौ करह पली करनी, सा सोभा पज हर की सरनी, अन क्यो पावी रोग ना जाए, रोग मिटै हर अवखद लाए, सर्व निदान मैं हर नाम निदान, जप नानक दरगह परवान, मन पर बोधो हर कह नाए, दै दिस्तावत आवै ठाए, ता कौ बिघन ना लागे कोए, जा कर दै बसे हर सोए, कल ताती ठांडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पाओ बिन सह पूर्ण होए आस, भगत पाए आत्म परगास, तित कर जाए बसे अबनासी, कहो नानक काटी जम फासी, तत विचार कह जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा, आवा गमन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरदेव, इउं रतन जन्म का होए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार, अन क्यो पाव ना छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन बंछत नानक फल पाए, संग ना चालस तेरे तना, तू क्या लपटावै मूर्ख मना, सुत मीत कुटंब अर बंता, इनते कहो तुम कमन सनाथा, राज रंग माया विस्थार, इनते कहो कमन छुटकार, अस हस्ती रथ असवारी, झूठा डंफ झूठ पासारी, जिन दिए तिस बुझै ना बिगाना, नाम बिसार नानक पछताना, गुर की मत तू लेहे आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल बिख जाहे, आप जपो अवरा नाम जपावो, सुनत कह तो रहत गत पावो, सार पूत सत हर को नाओ, सह सुबाए नानक गुण गाओ,
गुण गावत तेरी उत्तर समैल, बिन सजाए हम मैं बिख फैल, होहे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रह सार नाम समाल, छाड़ सियानप सगली मना, सा संग पावै सजतना, हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहा सुख दर गै जयकार, सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाकै मस्तक लेख, एको जाप एको सालाहे, एक सिमर एको मन आहे, एक सके गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत, एको एक एक हरियाप, पूर्ण पूर रहो प्रव्याप, अनक विस्थार एक ते पे, एक आराध प्राष्ट गए, मन तन अंतर एक प्रभराता, गुर प्रसाद नानक एक जाता। सलोक फिरत फिरत प्रभ आया, परया तौ सरनाए, नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए। अष्टपदी जाचक जंजा चै प्रभदान, कर कृपा देवो हर नाम, साजना की मंग तूर, पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर, सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो, चरण कमल स्यों लागे प्रीत, भगत करो प्रभ की नित नीत, एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभ सार, प्रभ की दृष्ट महा सुख होए, हर रस पावे बिरला कोए, जिन चाखिया से जन त्रिपताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने, सुब्र परे प्रेम रस रंग, उपजै चाओ साध कै संग, परे सरन आन सब त्याग, अंतर प्रगास अनद निलविलाग, वड भागी जपया प्रभ सोए, नानक नावरते सुख होए, सेव की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई, जन कौ प्रभ होयो दयाल, सेव की नो सदा निहाल, बंधन काट मुक्त जन पाया, जन्म मरण दुख भ्रम गया, इच पुन्नी सरदा सा पूरी, रव रहया सा संग हजूरी, जिसका साथ न लिया मिलाए, नानक भगती नाम समाए, सो क्यों बिसरै जे काल ना पानै, सो क्यों बिसरै जे किया जानै, सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरै जे अग्न मै राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै, सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गांडै, गुर पूरै तत है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया, साजन संत करो एहो काम, आन त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरह नाम जपावो, भगत पाए तरिया संसार, बिन भगती तन होसी शार, सर्व कल्याण सुख निद नाम, बूढ जात पाए विश्राम, सगल दुख का होवत नास, नानक नाम।

दयालो भगत वचन सदा कृपालो अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आदि पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो हो पुनीत भगत पाए लावे मनहीत हम निर्गुणी आर नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए अनक राज भोग वडे आई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत पली सुकरणी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्र

आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। अष्टपदी जब अकार हो कश ना दृटे ता पापुन तब कहते होता। जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संक मात। जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरक शोक सह व्यापत। जब अपने आप आपार ब्रह्म ता मोह कहां किस होवत परम। आपन खेल आप वर्ती जा नान करने हार ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी ता बंद मोत कौ किस कौ गनी। जब एक हर अगम अपार तब नरक सुर कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहे सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जोत तरे तब कवन निडर कवन कत डरे। आपन चलते आप कर नहार नानक ठाकर अगमय अपार। अविनाशी सुख अपने आसन तै जन्म मरण को कहां विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब आप गत्या गोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचरिया गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बादे। अपने आप ही चर जा नानक अपन रूप आप ही उपर जा। जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तै शरशिदर लगत कौ कीस। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग सुमावे तै किसे भूख कवन त्रिपतावे। करण करावन करने हार नानक करते का नहे सुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई। जय सर्व कला आपे परवीन तै वेद कतेब कहां कूचीन। जब अपने आप उरतार है तो सगन अब सगन कहां विचार है। जह अपन ऊच अपने आप नेरा तै कौन ठाकर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी का जानो आप। जय अशाल आशेदा भेद।

पूर्ण पूर रहे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल। अपने कर्तव्य जानै आप, अंतर जामी रहो ब्याप। प्रतपालै जियन बहु पांत, जो जो रचियो सोत सहत आत। जिस पावै तिस लय मिलाए, भगत करै हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मान्या, करनहार नानक एक जानिया। जन लागा हर एक नाए, तिसकी आसना बिरथी जाए। सेव कौ सेवा बनयाई, हुकम बूझ परम पद पाई।

नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सासा सिमर गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आसा नित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरो हर तन के पर लिहो भंडार नान गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवारो उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख पंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत हो तो उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्दा नाहद वाजै सुन सुन अंध करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरै तन कै साथे सरन योग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पए सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भए गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ धारी नानक निभी खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावताने एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बौर न होवे अमन जान हर तन खाड़ चले जन सोए नानक जसै प्राप्त होए खेम सात रिद नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ ऊतम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन कै मुख भने गुर नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक करम प्रभ पाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ता का दुख निवारै दुलभ देहे तत्काल उदारै निर्मल शोभा अमृत ता की बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मल ता के कर्म सब ते ऊच ता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी। थित्ती गौड़ी महला पंजवां सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद जल थल महियल पूरिया स्वामी सृजनहार नानक अनक पात होए पसरिया नानक एक अंकार पौड़ी एक में एक अंकार प्रभ करो बंदना त्याए गुण गोबिंद गोपाल प्रभ शरण परो हर राय ताकि आस कल्याण सुख जाते सब कश होए चार कुंट दह दिस प्रमयो तिस बिन अवर ना कोए।
वेद पुराण सिमरत सुने बहुविध करो विचार पत उदाहरण पैहरण सुख सागर निरंकार दाता भुगता देनहार तिस बिन रहन ना जाए दाता भुगता देनहार तिस बिन अवर ना जाए जो चाहे सोई मिले नानक हर गुण गाए गोविंद जस गाइए हर नीत मिल भजिए साध।

को खाटशास्त्री उच्चो कह अंत ना पारा वार भगत सोह गुण गावते नानक प्रभ कह द्वार पौड़ी खष्टम खाटशास्त्र कह स्मृत कथ अनेक उत्तम उच्चो पार ब्रह्म गुण अंत ना जाने सेख नारद मुनजन सुख ब्यास जस गावत गोबिंद रसगी दे हर स्यो बीदे भगत रचे भगवंत मोह मान परम बिनसयो पाई शरण दयाल चरण कमल मंतन बसे दर्शन देख निहाल लाभ मिले तोटा हिराए।

स्वाद बेकार, नानक नाम बिसारे है नरक सुरग अवतार। पौड़ी नौमी नवे शदर अपवीत, हर नाम न जपै करत विपरीत। पारत्रे रमै बकै साध निंद, करन सुनही हर जस बिंद। हिरै पर दर्ब उदर कै ताई, अग्न न निवरै तृष्णा न बुझाई। हर सेवा बिन एह फल लागे, नानक प्रभ बिसरत मर जमै अभागे। सलोक दह जस खोजित मैं फिरयो, जत देखौं तत सोए। मन बस आवै नानका, जे पूरन किरपा होए। पौड़ी दसवीं।

मन में चितवै पूर्ण भगवंत, हस्त चरण संत टहल कमाई है, नानक हो संजम प्रभ कृपा पाई है। श्लोक एको एक बखानी है, बिरला जाने स्वाद, गुण गोबिंद न जानिए, नानक सब विस्माद। पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्ब जी दया, इनविद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राख कठाए, मन तन सुध जपत हर नाए, सब मैं पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एहो धर्म। सलोक दुर्मत हरि सेवा करी, पेटे साध कृपाल, नानक प्रभ सो मिल रहे बिनसे सगल जंजाल। पौड़ी द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तजमान, हरे अमृत पान करो साध संग, मंत्र पतासै कीर्तन प्रभ रंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंच पूव आत्मा हर नाम रस पुख है, गुर पूरे ते एह निहचा उपाई है, नानक राम रमत फिर जो न आई है। श्लोक तीन गुणा मैं व्यापिया, पूर्ण होत ना काम, पतो धारण मन बसै, नानक छूटै नाम। पौड़ी त्रौदसी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार, हर हर भजन ना मन मैं आयो, सुख सागर प्रभ निमख ना गायो, हर शोका दे कर बाध्यो, दीर्घ रोग माया आशा देओ, दिने बेकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर बिसरत होवत एह हाल, शरण नानक प्रभ पुरख दयाल। सलोक चार कुंट चौदह पवन, सगल व्याप्त राम, नानक ऊना देखिए पूर्णता के काम। पौड़ी चौदह चार कुंट प्रव्याप, सगल भवन पूर्ण प्रताप, दसे दिशा रव्या प्रभ एक, तरन आकाश समय प्रपेख, जल थल बन पर्वत पाताल, परमेश्वर तै बसै दयाल, सूखम अस्थूल सगल भगवान, नानक गुरमुख ब्रह्म पिशान। श्लोक आत्म जीता गुरमुख।

पूरे ते पाया नानक सुख विश्राम। सलोक पूरन कबो ना डोलता, पूरा किया प्रभ आप, दिन दिन चढ़े सवाया, नानक होतना घाट पौड़ी। पूर्ण मां पूर्ण प्रभ एक, करण कारण समर्थ, जी जंत दयाल पुरख, सब ऊपर जाका हाथ। गुण दान गोबिंद गुर, किया जाका होए, अंतर जामी प्रभ सुजान, अलख निरंजन सोए। पार ब्रह्म परमेश्वरो, सब जन नहार, संत सहाई सरन योग, आठ पहर नमस्कार। अकथ कथा न बुझिया, सिमरो हर के चरण, पतो धरन नाथ नाथ, नानक प्रभ की शरण। सलोक दुख बिन से सहसा गयो, शरण गही हर राय, मन चिंदे फल पाया, नानक हर गुण गाए पौड़ी। कोई गावे को सुने, कोई करे विचार, को उपदेश है को दृढ़ है, तिसका होए उधार। किलबे काटे हुए निर्मला, जन्म जन्म मल जाए, हल्त पल्त मुखी उजला, नैपो है तिस्माए। सो सुरता सो बैसनो, सो ज्ञानी तनवंत, सो सूरा कुलवंत सोए, जिन पजया भगवंत। खत्री ब्राह्मण सूद वैस, उदरे सिमर चंडाल, जिन जान्यो प्रभ अपना, नानक तसै रवाल। गौड़ी की वार महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला चौथा, सतगुर पुरख दयाल है, जिसनो समत सब कोए, एक दृष्ट कर देखदा, मन भावनी ते सिद्ध होए। सतगुर विच अमृत है, हर उत्तम हर पद सोए, नानक कृपा ते हर त्याई है, गुरमुख पावै कोए। महला चौथा, हम मैं माया सब बिख है, नित जग तोटा संसार, लहा हर तन खटिया, गुरमुख शब्द विचार। हम मैं मैल बिख उतर, हर अमृत हर ओर तार, सब कार्य तिन के सिद्ध है, जिन गुरमुख कृपा तार। नानक जो तुर मिले से मिल रहे, हर मेले सृजनहार पौड़ी। तू सच्चा साहिब सच है, सच सच्चा गोसाई, तुदनो सब ते आईंदी, सब लगे तेरी पाई। तेरी सिफत सवाल्यो स्वरूप है, जिन कीती तिस पार लंघाई, गुरमुखा नु फल पाईंदा, सच नाम समाई। वड्डे मेरे साहिबा, वड्डी तेरी वड्याई। सलोक महला चौथा, विण नावै होर सलाहना, सब बोलन फिका साध, मनमुख अहंकार सलाह दे, हौ मैं ममतावाद। जिन सलाहन से मरै, खप जावै सब अपवाद, जन नानक गुरमुख उबरे, जप हर हर परमानाद। महला चौथा, सतगुर हर प्रभ दस, नाम ते आई मन हरी, नानक नाम पवित, हर मुख बोली सब दुख पर हरी पौड़ी। तू आपे आप निरंकार है, निरंजन हर राया, जिनी तू एक मन सच ते आया, तिनका सब दुख गवाया। तेरा श्री को नाही, जिसनो लवे लाए सुनाया, तो जेवड दाता तू है निरंजना, तू है सच मेरे मन पाया। सच्चे मेरे साहेबा, सच्चे सच नाया। सलोक महला चौथा, मन अंतर हम मैं रोग है, प्रम पूले मन मुख दुर्जना, नानक रोग गवाए, मेरे सतगुर साधु सजना। महला चौथा, मंतन रत्ता रंग स्यों, गुरमुख हर गुण तास, जन नानक हर शरणागति, हर मेले गुर साबास पौड़ी। तू करता पुरखिया गम है, किस नाल तू वड़ी है, तुद जेवड़ होए सो आखी है, तो जेहा तू है पड़ी है। तू घट घट एक वरतदा, गुरमुख

देखो भाई एहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, जिने अपने जोर सब आण निवाए, अपने भगतां की रख करे हर स्वामी, निंदका दुष्टां के मोह काले कराए, सतगुर की वड़ियाई ने चढ़ै सवाई, हर कीर्त भगत नित आप कराए, अंध नाम जपो गुर सिखो, हर करता सतगुर करी वसाए, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मोह कढ़ाए, गुरसिखा के मोह जले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार शब्द कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए, पौड़ी तू सच्चा साहब आप है ससा हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रभु वणजारे थारे, सच सेवा सच वणंजल है गुण कथे निरारे, सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लखारे, श्लोक महला चौथा, जिस अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवी भला, उस दे आखे है कोई ना लगे नित उजाड़ी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या उसदा सब गया, नित चुगली करे अनहोंदी पराई, मुकट न सके उसदा काला भया, कर्म धरती शरीर कलयुग विच जिहा को बीजे तिहा को खाए, गल्लां उपर तपावस न होई विस खादी तत्काल मर जाए, भाई वेखो न्याओ सच करते का जिहा कोई करे तिहा कोई पाए, जन नानक को सब सो जी पाई हर दर किया बाता आग सुनाए, महला चौथा, हुंदे प्रतख गुरु जो विछड़े तनको दर ढोई नाही, कोई जाए मिले तिन निंदका मोह फिके थुक थुक मोह पाई, जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके नित पंबल पूसे खाही, जिन गुर गोप्या अपना से लेंदे टहा फिराही, तिन की भुख कदे ना उतरै नित भुखा भुख कुकाही, ओना दा आख्या को ना सुनै नित हौले हौल मराही, सतगुर की वड्याई वेख ना सकनी ओना अगे पिछे था ओ नाही, जो सतगुर मारे तिन जाय मिलै रहंदी खोंदी सब पत गवाही, ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके जे ओस मिलै तस कुष्ट उठाही, हर तिनका दर्शन ना करो जो दूजे पाए चित लाही, तुर करता आप लिख पाया तिस नाल क्यों चारा नाही, जन नानक ना मारा तू तिस अपड़ को ना सकाही, नावे की वड्याई वड्डी है नित सवाई चढ़े चढ़ाही, महला चौथा, जे होंदे गुरु बैठकिया ते जन की वड्याई वड्डी होई, तिसको जगत निव्या सब पैरी पया, जस वर्तिया लोई तिसको खंड ब्रह्मांड नमस्कार करे, जिसके मस्तक हथ धरिया गुर पूरे सो पूरा होई, गुर की वड्याई नित चढ़ै सवाई अपड़ को ना सकोई, जन नानक हर करता आप बैठकिया आपे पैज रखे प्रभ सोई, पौड़ी काया कोटिया पार है अंदर हट नाले, गुरमुख सौदा जो करे हर वस माले, नाम निदान हर बन जी है हीरे परवाले, विण काया जे होर थै तन खोज दे से मूड बिताले, से उजड़ परम पवाई है ज्यों चाड़ मिर्ग पाले, श्लोक महला चौथा, जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग में होया, नरक कोर दुखू है ओथे पकड़ ओह टोया, कूक पुकार को ना सुने ओह औखा होए होए रोया, ओन हलत पलत सब गवाया लहा मूल सब खोया, ओह तेली संदा बल्द कर नित भलके उठ प्रभ जोया, हर वेखै सुने नित सब किश तिदू किश गुजा ना होया, जैसा जैसा बीजै सो लुणै
जेहा पुरब किने बोया, जिस कृपा करे प्रभ अपनी, तिस सतगुर के चरण धोया। गुर सतगुर पिछे तर गया, जो लोहा काट संगोया। जन नानक नाम ते आए तू, जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा, वड भागियां सोहागणी, जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय। अंतर जोत परगासिया, नानक नाम समाए। पौड़ी, एहो शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सच्चे की विच जोत। गोहज रतन विच लुक रहे, कोई गुरमुख सेव कड़े खोत। सब आत्म राम पछाणिया, ता एक रविया एको ओत पोत। एक देखिया एक मन्या, एको सुनिया श्रवण सरोत। जन नानक नाम सलाहे तू, सच सच्चे सेवा तेरी होत। श्लोक महला चौथा, सब रस दिन के हृदय है, जिन हर वसिया मन माहे। हर दरगह ते मुख उजले, तिन कौ सब देखन जाए। जिन निरपौ नाम ते आया, तिन कौ पौ कोई नाहे। हर उत्तम किनी सरेविया, जिन कौ तुर लिखिया आहे। ते हर दरगह पहनाई है, जिन हर वुठा मन माहे। ओए आप तरे सब कुटुंब स्यों, दिन तिन पिछे सब जगत छड़ाहे। जन नानक कौ हर मेल जन, तिन वेख वेख हम जीवाहे। महला चौथा, सा धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। से जंत पई हरियावले, जिन्नी मेरा सतगुर देखिया जाए। तन तन पिता तन तन कुल, तन तन सो जननी, जिन गुरु जनिया माए। तन तन गुरु जिन ना मारा दिया, आप तरिया जिनी डिठा तिना ले छड़ाए। हर सतगुर मिलो दया कर, जन नानक तो वै पाए। पौड़ी, सच सच्चा सतगुर अगम है, जिस अंदर हरि उर धारिया। सच सच्चा सतगुर पुरख है, जिन काम क्रोध बिख मारिया। जा डिठा पूरा सतगुरु, ता अंदरों मन साधारिया। बलिहारी गुरे अपने, सदा सदा घुम वारिया। गुरमुख जिता मन मुख हारिया। श्लोक महला चौथा, कर कृपा सतगुर मेले ओन, मुख गुरमुख नाम ते आए सी। सो करे जे सतगुर भाव सी, गुर पूरा करी वसाय सी। जिन अंदर नाम निधान है, तिनका पौ सब गवाए सी। जिन रखण कौ हर आप होए, होर केती चख चख जाए सी। जन नानक नाम ते आए तू, हर हलत पलत छोड़ाए सी। महला चौथा, गुरसिखा कै मन भावदी, गुर सतगुर की वडियाई। हर रख पै सतगुरु की, नित चढ़ै सवाई। गुर सतगुर कै मन पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म छड़ाई। गुर सतगुर तान दी बाण हार, तिन सब आण निवाई। जिन्नी डिठा मेरा सतगुर पाओ कर, तिनके सब पाप गवाई। हर दरगह ते मुख उजले, बहु सोभा पाई। जन नानक मंगै धूड़ तिन, जो गुर के सिख मेरे पाई। पौड़ी, हौ आख सलाही सिफत सच, सच सच्चे की वडियाई। सा लाही सच सलाह सच, सच कीमत किने ना पाई। सच सच्चा रस

मंत्र बताया हर रस खाए पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाइया सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याइया सलाही सच सलाह सच सच कीमत कने ना पाइया जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजर नदरी आइया सच गुरमुख जिनी सलाहया तिन्ना भुखा सब गवाइया श्लोक महला चौथा मैं मन तन खोज खोज इंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़ विष्ट गुरु मैं पाया जिन हर प्रभ दिता जोड़ महला तीजा माया तारी अत अन्ना बोला शब्द ना सुनई बहु रोल कचोला गुरमुख जापै शब्द लिवलाए हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए जो तिस पावै सो करे कराया नानक

फिर सतगुर लगे पाए, सतगुर की गणते कुसी है, दुखे दुख विहाए। सतगुर पुरख निर्वैर है, आपे ले जिस लाए, नानक दर्शन जिन्ना विखा ले उन तिन्ना दरगे ले छड़ाए। महला तीजा मनमुख अज्ञान, दुर्मत अहंकारी, अंतर क्रोध जुवे मतहारी, कूड़क सत ओह

बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए, नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी। जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़े आरा चित उदास, ओए वाल छल।

आपो अपनी आपे पछताणी। अजराइल फरिश्ता तिल पीड़े कहानी। सलोक महला पंजवा। सेवक सच्चे साह के सही प्रवान, दूजा सेव नानका से पच पच मोए अजान। महला पंजवा। जो तुर लिखिया लेख प्रभ मेटना ना जाए, राम नाम तन वखरो नानक सदा ते आए। पौड़ी पंजवा। नारायण लया ना ठूंगड़ा है, पैर किथे रखे करदा पाप अमित्या। नित विसो चखे निंदा करता पचमवा। विच देही पखे सच्चे साहिब मारिया, कौन तिसनो रखे। नानक ते शरणागति जो पुरख्या लखे। सलोक महला पंजवा। नरक कोर बहु दुख घने, अकिरत घना का थान। तिन प्रभ मारे नानका, होए होए मोए हराम। महला पंजवा। अवखत सबे कीतियान, निंदका दारू नाहे। आप लाए नानका पच पच जोनी पाहे। पौड़ी पंजवा। तुस दिता पूरे सतगुरु, हर तन सचिया खुट। सब आंदे से मिट गए जमका पौ छुट। काम क्रोध बुरे आईया संग साधु टुट। विण सचे दूजा सेव दे होए मरसन बुट। नानक कौ गुर बख्शिया नामै संग जुट। सलोक महला चौथा। तपा ना होवै अंदरों लोभी, नित माया नो फिरै जज मालिया। अगों दे सद्या सत्तै दी भिख्या लै नाही, पिछों दे पछताए कै आण तपै पुत विच बहालिया। पंच लोग

नाही। तन बहुतै डिठै तपै धर्म हारिया, पाई एहो तपा ना होवी बगला है, बैसाध जना विचारिया। सतपुरख की तपा निंदा करे, संसार की उस्तति विच होवै, एत दोखै तपा दईए मारिया। महापुरखां की निंदा का वेख, जे तपे नो फल लगा, सब गया तपे का कालिया। बाहर बह पंचा विच तपा सदाए, अंदर बह तपा पाप कमाए। हर अंदर ला

जन नानक का खसम वड्डा है, सबना दा धनी है। श्लोक महला चौथा। मन मुख मूलों भुलिया, विच लब लोभ अहंकार, झगड़ा कर दिया अंदन गुदर, शब्द ना करे विचार। शुद्ध मत करते सब हिर लई, बोलन सब विकार, दिते कित ना संतोखी है, अंतर दिसना बहु अज्ञान अंधार। नानक मन मुखा नालों टुटी भली, जिन माया मोह।

तुद जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक सरनाई। सलोक महला पंजवा। डिठड़ो हबठाए ऊना काई जाए नानक लद्दा तिन सुआओ जिन्ना सतगुर भेटिया। महला पंजवा। दामनी चमत्कार त्यों वरतारा जग खे वत सुहावी साए नानक नाउ जपंदो तिस्तनी पौड़ी। सिमरत शास्त्र सोध सब किने कीम ना जानी जो जन पेट साध संग सो हर रंग माणी। सच नाम करता पुरख एह रतना खाणी मस्तक होवे लिखिया हर सिमर प्राणी। तोसा दिचै सच नाम नानक मेहमानी। सलोक महला पंजवा। अंतर चिंता नैनी सुखी मूल ना उतरे भुख नानक सच्चे नाम बिनु किसे ना लथो दुख। महला पंजवा। मुठड़े से ही साथ जिन्नी सच ना लद्या नानक से साबास जिन्नी गुरमल एक पछाणिया पौड़ी। जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा ओए सेवन समर्थ अपना बिनसै सब मंदा। पत ते उदाहरण पार ब्रह्म संत वेद कहंदा भगत वछल तेरा बिरद है जो जुग वर्तंदा। नानक जाचै एक नाम मन तन पावंदा। सलोक महला पंजवा। चिड़ी चोहकी पहु फुटी वगन बहुत तरंग अचरज रूप संतन रचे नानक नामै रंग। महला पंजवा। घर मंदर खुशियां तही जह तू आवै चित दुनिया कियां वड़ियाईया नानक सब को मित पौड़ी। हर तन सच्ची रास है किने विर लै जाता तिसे प्राप्त पाए रहो जिस दे विधाता। मन तन पीतर मौलिया हर रंग जन राता साध संग गुण गाया सब दुख है खाता। नानक सोई जीविया जिन एक पछाता। सलोक महला पंजवा। खखड़िया सोहाविया लगड़िया अतकंठ ब्रह विछोड़ा तनी स्यो नानक सह सह गंठ। महला पंजवा। विसारें दे मर गए मर पे ना सके मूल वे मुख होए राम ते जो तस्कर उपर सूल पौड़ी। सुख दान प्रभ एक है अवनासी सुनिया जल थल मैयल पूरिया घट घट हर भणिया। ऊच नीच सब एक समान कीट हस्ती बनिया मीत सखा सुत बंद पो सब तिस दे जनिया। तुस नानक देवै जिस नाम तिन हर रंग मणिया। सलोक महला पंजवा। जिन्ना सास ग्रास ना विसरै हर नामा मन मंत धन से ही नानका पूर्ण सोई संत। महला पंजवा। अठे पहर पौंदा फिर खावण संदड़े सूल दोजक पौंदा क्यों रह जा चेतना होए रसूल पौड़ी। तिसै सिरे वो प्राणी हो जिसद ना पलै एथे रहो सुहेलिया अगे नाल चलै। घर बंदो सच धर्म का गढ़ थम अहलै ओट लहो नारायण दीन दुनिया चलै नानक पकड़े चरण हार तिस दर गए मलै। सलोक महला पंजवा। जाचक मंगे दान देह प्यारिया देवन हार दातार मैं नित चितारिया। निखुट ना जाई मूल अतुल भंडारिया नानक शब्द अपार तिन सबके सारिया। महला पंजवा। सिखो शब्द प्यारो जन्म मरण की टेक मुख उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक पौड़ी। ओथे अमृत वंडी है सुखिया हर करने जमके पंथ ना पाई है फिर नाही मरने। जिसनो आया प्रेम रस तिसे ही जरने बाणी उचरे साध जन अम्यो चले चरने। पेख दर्शन नानक जीविया मने अंदर धरने। सलोक महला पंजवा। सतगुर पूरे सेवे

जिस सिमरत संकट छुटे आनंद मंगल बिसराम, नानक जपिए सदा हर निमख ना बिसरो नाम। पौड़ी तिनकी शोभा क्या गणी, जिनी हर हर लद्दा, सादा सरणी जो पवे सो छुटे बद्दा। गुण गावे अबनासी जोन गर्भ ना ददा, गुर भेटिया पार ब्रह्म हर पढ़ बुझ समदा। नानक पाया सो धनी हर अगम अगदा।

है। हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरी है, नानक प्रीतम मिल रहे पार ब्रह्म नर हरी है। श्लोक महला पंजवा, नानक आए से प्रवान है, जिन हर बुठा चित गाली अल्प लालिया कम न आवै मित। महला पंजवा, पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया, पूर्ण अगम विस्माद, नानक राम नाम तन कीता पूरे गुर प्रसाद। पौड़ी तोहो न चली खसम नाल, लब मोहे विगुते करतब करन भलेरिया, मद माया सुते फिर जोन पवाईया नु जा मार्ग मुते, कीता पाए ने अपना दुख सेती जुते, नानक नाए विसारे है सब मंदिर उते। सलोक महला पंजवा, उठन दया बहन दया सवन दया सुख सोए, नानक नाम सलाह है मन तन शीतल होए। महला पंजवा, लालच अटिया नित फरै स्वार्थ करे ना कोए, जिस गुर पेटे नानका तिस मन वसिया सोए। पौड़ी सबे वस्तु कौड़िया सच्चे नाओ मिठा, साध आया तिन हर जना चख साधी डिठा, पार ब्रह्म जिस लिखिया मन तिसै उठा, एक निरंजन रव रहया पाओ दोया कुठा। हर नानक मंगै जोड़ कर प्रभ देवै तुठा। सलोक महला पंजवा, जाचड़ी सासार जो जा चंदी हेकड़ो, गाली ब्याह विकार नानक तनी में हुनिया। महला पंजवा, नीह जे विद्दा मन पछाणु विरलो थियो, जो नहारा संत नानक पादर पदरो। पौड़ी सोई सेवो जियड़े दाता बख्शिंद, किलविक सब विनाश होन सिमरत गोविंद। हर मार्ग साधु दसिया जपिए गुरमंत, माया स्वाद सब फिकिया हर मन पावंद। त्याए नानक परमेसर है जिन दित्ती जिंद। सलोक महला पंजवा, वत लगी

कहो कबीर ए कहिए काहे, साध संगत बैकुंठ आहे। गौड़ी कबीर जी उपजै निपजै निपज समाई, नैना देखत एहो जग जाई। लाज ना मरो कहो कर मेरा, अंत की बार नहीं कष्ट तेरा रहाओ। अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली। चोवा चंदन मर्दन अंगा, सोतन जलै काठ कै संगा। कहो कबीर सुनो रे गुनिया, बिनसै गो रूप देखै सब दुनिया। गौड़ी कबीर जी अवर मुए क्या सो करी जै, तौ की जै जो अपन जी जै। मैं ना मरो मरबो संसारा,

कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुवटा ना पनिहारी, गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा अनक।

वेद की पुत्री सिमरत पाई, साकत साकल जेवरी लहै आई, आपन नगर आपते बांधया, मोह कै फाद काल सर संध्या रहाओ, कटी ना कटे टूट न जाई, सास अपन होय जग को खाई, हम देखत जिन सब जग लूटिया, कहो कबीर मैं राम कै छूटिया, गौड़ी कबीर जी दे मुहार।

चल रे बैकुंठ तुझे ले तारों, हिचै ता प्रेम कह चब कुमाराओं। कहत कबीर पले असवारा, बेदक देवते रह निरारा। गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए, तेह मुख देखत लूकट लाए। एक दुख राम राय।

गौड़ी कबीर जी आपे पावके आपे पवना, जारे खसम तारा खै कवना, राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चितरया सुमाए रहाओ। काको जरे कहे हुए हान, नटवट खेले सारंग पान, कहो कबीर अखर दोए पाख, होएगा खसम ता लेगा राख। गौड़ी कबीर जी दो पदे नाम है जोगत्या।

कहो कबीर खोजो असमानो, राम समान ना देखो वानो। गौड़ी कबीर जी जेह सिर रच रच बांध तपाग, सो सिर चुंच सवार काग। इस तन तन को क्या गरबैया, राम नाम काहे ना दृढ़िया। रहाओ कहत कबीर सुन।

दुचिते की दोए थून गिरानी, मोह बलेंडा टूटा, तिसना शान परी धारी उपर, दुरमत पांडा फूटा। आंधी पाछे जो जल बरखे, तह तेरा जन पीना। कह कबीर मन पया प्रगासा, उदय पान जब चीना। गौड़ी चेती एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। हर जस सुने ना हर गुण गावै, बात नहीं असमान गिरावै। ऐसे लोगन स्यो क्या कहिए, जो प्रभ किए भगते बाहजो। तिनते सदा डराने रही है रहाओ। आप ना देहे चुरू पर पानी, तह निंदे जे गंगा यानी। बैठत उठत कुटलता चाले, आप गए और नहूं कहले। छाड़ को चर्चा यान न जाने, ब्रह्मा हूं को कयो न माने। आप गए और नहूं खोवे, आग लगाए मंदिर में सोवे। अवर्ण हस्त आप है काने, तिनको देख कबीर ले जाने। राग गौड़ी बैरागण कबीर जी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जीवत पितर ना माने को, मुए सराद कराही। पितर पी बपरे कहो क्यों पावे, कौआ कूकर खाही। मोको कुशल बतावो कोई, कुशल कुशल करते जग बिनसै। कुशल पी कैसे होई रहाओ, माटी के कर देवी देवा। तिस आगे जियो देही, ऐसे पितर तुम्हारे कहिए। अपन कया ना लेही, सर जियो काटे निर्जियो पूजे। अंतकाल का उपारी, राम नाम की गत नहीं जानी। पै डूबे संसारी, देवी देवा पूजे डोले। पार ब्रह्म नहीं जाना, कहत कबीरा कुल नहीं चेतिया। बिखिया सो लपटाना, गौड़ी जीवत मरे मरे फुन जीवे। ऐसे सुन समाया, अंजन माहे निरंजन रही है। बौना पव जल पाया, मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है। गुरमत मनुआ अस्त्र रखो, इन बिद अमृत पियोई है रहाओ। गुर कै बाण बजर कल छेदी, प्रगटिया पद प्रगासा। सकता देर जेवड़ी भ्रम चूकी, निश्चल सेव कर बासा। तिन बिन बाण तनख चढ़ाई है, इह जग बेदिया भाई। दैद सिर बूंडी पवन चुलावै, डोर रही लिवलाई। ओन मन मनुआ सुन समाना, दुबदा दुरमत भागी। कहो कबीर अनुभव के देखिया, राम नाम लिवलागी। गौड़ी बैरागण ते पदे, उल्टत पवन चक्र खट भेदे। सुरत सुन अनुरागी, आवे ना जाए मरे ना जीवे। तास खोज बैरागी, मेरे मन मन ही उल्ट समाना। गुर प्रसाद अगल पई अवरै, ना तर था बेगाना रहाओ। निवरै दूर दूर फुन निवरै, जिन जैसा कर मान्या। अलौती का जैसे भया बरेडा, जिन पिया तिन जानिया। तेरी निर्गुण कथा काए स्यो कहिए, ऐसा कोई बबेकी। कहो कबीर जिन दिया पलीता, तिन तैसी चल देखी। गौड़ी तै पावस सिंध तूप नहीं शैया, तै उत्पत पर लो नाही। जीवन मृत ना दुख सुख व्यापै, सुन समाज दो तै नाही। सहज की अकथ कथा है न्यारी, तोल नहीं चढ़े जाए ना मुकाती। हल्की लगे ना भारी रहाओ, अर्द उर्द दो तै नाही। रात दिन सतै नाही, जल नहीं पवन पावक फुन नाही। सतगुर तहां समाही, आगमा गोचर रह निरंतर। गुर कृपा ते लही है, कहो कबीर बल जाओ गुरे अपने। सत्संगत मिल रही है, गौड़ी पाप उन्दोय बैल बिसाहे। पवन पूंजी परगासे हो, तृष्णा गूण परी कट पीतर। इन बिद टांड बिसाहे हो, ऐसा नायक राम हमारा। सगल संसार की ओ बनजारा,
रहाओ। काम क्रोध दोए भए जगाती, मन तरंग बटवारा, पंच तत् मिल धन निबेरै, टांडा उतरियो पारा। कहत कबीर सुनो रे संतो, अब ऐसी बन आई, घाटी चढ़त बैले कथा का, चलो गुण छिटकाई। गौड़ी पंच पदा पेवकड़ै दिन चार है, साहुरड़ै जाना, अंधा लोक न जाने, मूर्ख ए आना। कहो डडिया

लाज बहारी, लाज घड़ी स्यो टूट पड़ी उठ चली पनिहारी। साहेब होए दयाल कृपा करे अपना कार्य सवारे, तां सोहागण जानिए गुरशब्द विचारे। किरत की बांधी सब फिर देखो बिचारी, इसनो क्यों आखिए क्या करे विचारी। पई निराशी उठ चली चित बंद ना धीरा, हर की चरणी लाग रहो पाए सरन कबीरा। गौड़ी जोगी कह जोग पल मीठा, अवरना दूजा पाई, रुंडत मुंडत एक है सबदी एक है सिद्ध पाई। हर बिन परम पुलाने अंधा, जा पै जाओ आप छुटकावनो ते बांधे बहु फंदा। रहाओ जहते उपजी तही समानी, एह बिद बिसरी तब ही, पंडित गुणी सूर हम दाते एक है बड़ा मही। जिसे बुझाए सोई बूझे, बिन बूझे क्यों रही है, सतगुर मिले अंधेरा चूकै। इन बिद मान कलही है, तज बावे दाहने बेकारा, हर पादो दृढ़ कर रही है। कहो कबीर गूंगे गुड़खाया, पूछे ते क्या कही है। हरा गौड़ी पूर्वी कबीर जी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद जह कछ आहा तहा किश नाही, पाई तत्त नाही, इड़ा पिंगला सुख मन बंदे ए अवगन कत जाही।

ज्ञानी त्यानी बहुपदेशी एह जग सगलो तंदा कहे कबीर एक राम नाम बिनु या जग माया अंधा। गौड़ी बारवी मन रे छड़ो परम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सनमुख रंते डरप सती के साचे पांडे। डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सद पाई ऐली नोहा संधौरा रहाओ काम क्रोध माया के लीने या बिद जगत बिगूता कह कबीर राजा राम ना छोड़ाओ सगल ऊते ऊंचा। गौड़ी तेरवी फरमान तेरा सिराई ऊपर

साहेब रोस तरों के प्यार रहाओ, नाम तेरा आधार मेरा ज्यों फूल जई है नार। कहे कबीर।

निंदक सो जो निंदा हो रै, हमरा जीवन निंदक लो रै। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करै उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपो, तरन तारन राम राया रहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक पहे है, कह देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई। कह कबीर बुद्ध हर ले मेरी, बुद्ध बदली सिद पाई। गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बंदी, बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाई। अब मन जागत रहो रे भाई, गाफल होए कै जन्म गवायो। चोर मुसे कर जाई रहाओ। पंच पहरुआ दर में रहते, तिनका नहीं पतियारा। चेत सुचेत चित होए रहो, तौले परगास उजारा। नौकर दे

माई मोहे अवर ना जान्यो अनाना, शिव संकाद जास गुन गावे तास बसे मोरे प्राणा ना रहाओ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मत गगन मंडल मैं ध्याना ना, बिखे रोग पै बंधन भागे मन ही कर सुख जाना ना। एक सुमात्रत जान मान प्रभ दूसर मने ना आना ना, चंदन बास भय मन बासन त्या कट्यो अभमाना ना। जो जन गाए त्याय जस ठाकर तास प्रभु है थाना ना, तेह बड़ भाग बस्यो मन जाके कर्म प्रधान मथाना ना। काट सकत शिव सहज प्रगासो एक है एक समाना ना। कह कबीर गुर भेट महासुख भ्रमत रहे मन माना ना। राग गौड़ी पूर्वी बाम नखरी कबीर जियो की एक ओंकार, सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। बावन अक्षर लोक त्रय सब कश इन्ही माहे, ए अखर खिर जाहेंगे ओए अखर इन मै नाहे। जहां बोल तै अक्षर आवा, जह बोल तै मन ना रहावा। बोले बोल मद है सोई, जस ओ है तसलख है ना कोई। अल्लाह लहो तव क्या कहो, कहो ता को पुकार। भटक बीज में रव रहे हो जा को तीन लोक विस्तार। अल्लाह लहंता भेद शह कश कश पायो भेद, उल्ट भेद मन भेदे हो पायो अपंग छेद। तुरक तरीकत जानिए हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारने कशवक पढ़िए ज्ञान। ओवंकार याद मैं जाना लेखियार मेटे ताहे ना माना, ओवंकार लखे जो कोई सोई लख मेटना ना होई। कक्का किरण कमल मैं पावा, सस बिघास संपट नहीं आवा। अर्जे तहां कुसम रस पावा, अकह कहा कह का समझावा। खखा है खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ ना दे जस्तावा। खसमै जान खिमा कर रहे ता होए निखियाओ

बंदक होए बंद सुध लह। पब्बा पेद पेद मिलावा आपो पान परोसो आवा। जो बाहर सो पीतर जानिया पया भेद पुबत पहचानिया। मम्मा मूल गया मन मान मरमी होए सो मन को जाने। मत कोई मन मिलता बिलमावै मगन पया ते सो सच पावै। मम्मा मन स्यो काज है मन सादे सिद्ध होए। मन ही मन स्यो कह कबीरा मनसा मिलिया ना कोए। एहो मन शक्ति एहो मन सीओ एहो मन पंच तत् को जियो। एहो मन ले जाओ उन मन रहे तो तीन लोक की बात कहे। यैया जाओ जाने तो दुर्मत हानो कर बस काया गाओ। रण रूतो पाजे नहीं सूरो थारो नाओ। रारा रस निरस कर जानिया होए निरस सो रस पहचानिया। एहरा छाडे ओ रस आवा ओ रस पिया ए रस नहीं पावा। लल्ला ऐसे ले मल्लावे अंत ना जाए परम सच पावे। आर जाओ तहां प्रेम लेवलावे तो अल लह लय चरण समावे। ववा बार बार बिसन सुमार ना आवे हार। बल बल जे बिसन तना जस गावे विसन मिले सब ही सच पावे। वाह वाह वाही जानिए वाह जाने एहो होए। एहो आरे ओहो जब मिले तब मिलत ना जाने कोए। ससा सोनी का कर सो दो घट परचा की बात न रो दो। घट परचा जो उपजय पाओ पूर रया तैंतर भवन राओ। खखा खोज पर जो कोई जो खोजे सो बहुर ना होई। खोज बूझ

भी होए तबे मनमाना, है तो सही लखे जो कोई, तब ओही ओहो एहो ना होई। ल्यो ल्यो करत फिरे सब लोग, ता कारण व्यापे बो सोग। लक्ष्मी बरस्यों जो ल्यो लावे, सोग मिटे सब ही सुख पावे। खखा खिरत खपत गए केते, खिरत खपत अजू न चेते। अब जग जान जो मना रह, जह का बिचरा तह थिर लह। बावन अखर जोरे आन, सकिया ना अखर एक पछान। सत का शब्द कबीरा कह, पंडित हुए सो अन पैर है। पंडित लोगे कौ व्यवहार, ज्ञानवंत कौ तत् विचार। जा कह जी जैसी बुद होई, कह कबीर जाने गा सोई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग गौड़ी थिती कबीर जी की। श्लोक पंद्रह थिती सात वार, कह कबीर उरवार ना पार। साधक सिद्ध लखे जो पे ओ, आपे करता आपे दे ओ। थिती अमावस में आस निवारो, अंतर जामी राम सुमारो। जीवत पावो मोख द्वार, अनपो शब्द तत निजसार। चरण कमल गोबिंद रंग लागा, संत प्रसाद भय मन निर्मलो। हर कीर्तन में अंदर जागा रहाओ, परवा प्रीतम करो विचारो। घट में खेल अकट अपारो, काल कल्पना कदे ना खाए। आद पुरख में रह समाए, द्वितीया दोहकर जाने अंग। माया ब्रह्म रमै सब संग, ना उबड़े न करता जाए। अकुल निरंजन एक पाए, तृतीया तीने सम कर लिया वै। आनंद मूल परम पद पावै, साध संगत उपजै विश्वास। बाहर पीतर सदा प्रगास,

पंच पंच तत् विस्थार कनक कामनी जोग व्यवहार प्रेम सुधा रस पीवै कोए जरा मरण दुख फेर ना होए छट खट चक्र शहू दिस्ताए बिन पर चै नहीं थिरा रहाए दुबदा मेट खे मांगे रहो कर्म तर्म की सूल ना सहो सात समकर बाचा जान सात सतकर बाचा जान आत्म राम लिहो प्रवान छूटे संसा मिट जाहे दुख सुन सरोवर पावो सुख अष्टमी अष्ट तात की काया ता मैं कुल महा निदराया गुरगम ज्ञान बतावै भेद उल्टा रह अपंग अछेद नौमी नव

दसवीं दैदस होए आनंद छूटै परम मिलै गोबिंद ज्योत स्वरूपी तात्यानूप अमल ना मलन शाह नहीं धूप। एकादशी एक दिस्तावै तो जोनी संकट बहुर ना आवै शीतल निर्मल पया शरीरा दूर बतावो पाया नीरा। बारस बारह युग वै सूर अहनिस बाजे अनहद तूर देख्या तिहू लोक का पियो अचरज पया जीव ते सीओ। तेरस तेरा यगंब खान अर्ध उर्द बिच सम पहचान नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान। चौदस चौदह लोक मझार रोम रोम में बसे मुरार सासन तो कातरो ध्यान कथनी कथिया ब्रह्म ज्ञान। पुन्यो पूरा चंद आकाश पसरे कला सहज प्रगास आदि अंत मद होए रहे आथीर सुख सागर में रमै कबीर। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी वार कबीर जियो के सत बार बार हर के गुण गावो गुरगम पे सो हर का पावो रहाओ। आदित करै भगत आरंभ काया मंदर मनसा थंब अहनस अखंड सो रही जाए तो अनहद बेण सहज मह वाए। सोमवार सस्य अमृत चरै चाखत बेख सगल बिखहरै बाणी रोकिया रह द्वार तो मन मत वारो पीवनहार। मंगलवारे ले माहीत पंच जोर की जाने रीत कर छोड़े बाहर जिन जाए ना तर खरा रिसै है राए। बुधवार बुध करे प्रगास हृदय कमल में हर का बास। गुरमिल दो एक समतरै उर्द पंक लै सूदा करै बृहस्पत बिख्या दे बिहाए तीन देव एक संग लाए तीन नदी तै त्रिवटी माहे एनस कसमल तो वै नाहे। सोकृत सहारै सो एह व्रत चढ़ै अनदिन आप स्यों लड़ै। सुरखी पांचो राखै सबै तो दूजी दृष्ट न पैसै कबै। थावर थिर कर राखै सोए जोत दी वट्टी कट मैं जोए। बाहर पीतर पया प्रगास तब हुआ सगल कर्म का नास। जब लग कट मैं दूजी आन तौ तो लो महल न लाभ जान। रमत राम स्यों लागो रंग कह कबीर तब निर्मल अंग। राग गौड़ी चेती बाणी नाम देव जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। देवा पाहन तारी अले राम कहत जन का स्नान तरे रहाओ। तारी ले गन का बिन रूप कुबजा ब्याद अजा मल तारी अले। चरण बदक जन तेउ मुक्त भये हाँ बल बल जिन राम कहे। दासी सोत जन बिदर सुदामा।

मेरी हरो बिपत जन करो सुभाई, चरण ना छाड़ो शरीर कल जाई। कहो रविदास परो तेरी साबा, बेग मिलो जन कर ना बिलंबा। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुखा दो नहीं ते ठाओ। ना तस्वीस खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। अब मोए खूब

कवन कर्म ते छूटी है, जे साधे सब सिद्ध होए, कर्म अकर्म बिचारी है, शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हृदय बसै, कौन हरै अभिमान, बाहर उदक पुखारी है, घट भीतर बिबद बेकार, शुद्ध कवन पर होए बो, सुच कुंचर बिद व्यवहार, राव प्रगास रजनी जथा गत, जानत सब संसार, पारस मानो ता बोश होए, कनक होत नहीं बार, परम परस गुर भेटी है, पूर्व लिखत ललाट, उन मन मन मन ही मिले, छुटकत बजर कपाट, भगत जुगत मत सत करी, परम बंधन काट बेकार, सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक विचार, अनक जतन निग्रह किए, टारी ना टरै परम फास, प्रेम

सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहब साचै नाए रहाओ। साचे नाम की तिल वड़ियाई, आग थके कीमत नहीं पाई। जैसा मिलकै आखण पाहे, वड्डा ना होवै काट ना जाए।

आए, तू सर्वे पूर रहया लिवलाए रहाओ। जियो पाए जुगत हथ कीनी, काली नथ क्या वड्डा भया, किस तू पुरख जोरू कौन कही है, सर्ब निरंतर रव रहा। नाल कुटंब साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सृष्ट गया, आगे अंतरा पायो ताका, कंस छेद क्या वड्डा भया। रतने उपाए तरे खीर मथिया, होर पखलाए जे असी किया, कह नानक छपै क्यों छपया, एकी एकी वंड दिया। आसा महला पहला, कर्म कर तूत बेल बिस्थारी, राम नाम फल हुआ, तिस रूप ना रेखा नाह दवाजै, शब्द निरंजन किया। करे वख्याण जाने जे कोई, अमृत पीवै सोई रहाओ, जिन पिया से मस्त पहे है, टूटे बंधन फाहे। ज्योति ज्योत समाणी पीतर, ता छोड़े माया के लाहे, सर्व ज्योत रूप तेरा देखिया, सगल पवन तेरी माया, रारे रूप निरालम बैठा, नजर करे विच छाया। बीना शब्द वजावै जोगी, दर्शन रूपया पारा, शब्दा नहद सो सौराता, नानक कह विचारा। आसा महला पहला, मैं गुण गल्लां के सिर पार, गली गल्लां सिरजनहार, खाना पीना हसना बाद, जब लग हृदय न आवै याद, तौ प्रवाह के ही क्या कीजै, जन्म जन्म किश लीजी लीजै रहाओ। मन की मत मता गल मता, जो किश बोली है सब खतो खता, क्या मोहल कीचै अरदास, पाप पुन दो साखी पास, जैसा तू करै तैसा को होए, तुझ बिन दूजा नाही कोए, जेही तू मत देहे तेही को पावै, तुझ आपे पावै तवै चलावै। राग रतन परिया परवार, तिस विच उपजै अमृत सार, नानक करते कहो धन माल, जे को आखे हो बिचार। आसा महला पहला, कर कृपा अपने घर आया, तामिल सखिया काज रचाया, खेल देख मन आनंद भया, शहु भी आहने आया। गावो गावो कामणी बबेक विचार, हमरे घर आया जग जीवन पतार रहाओ। गुरु द्वारे हमरा भी आहो जे होवा, जां सह मिलिया तां जानिया, तेहो लोका मैं शब्द रविया है, आप गया मन मानिया। अपना कार्ज आप सवारे, होरन कार्ज ना होई, जित कार्ज सत संतोख दया धर्म है, गुरमुख बूझै कोई। पंत नानक सबना का परे को सोए, जिसनो नजर करे सासो हागण होए। आसा महला पहला, गृहो बन समसर सहि सुभाए, दुर्मत गत पै कीर्त ठाए, सच पौड़ी साचो मुख नाओ, सतगुर सेव पाए रही थाओ, मन चूरे खड़ दर्शन जान, सर्व ज्योत पूर्ण भगवान रहाओ। अधिक त्यास पेख बहु करै, दुख बिखिया सुख तन पर हरै, काम क्रोध अंतर तन हिरै, दुबदा छोड़ नाम निस्तरै। सिवत सलाहण सहज आनंद, सखा सैन प्रेम गोबिंद, आपे करे आपे बख्शिंद, तन मन हर पै आगै जिंद। झूठ विकार महा दुख देहे, पेख वर्ण दिसै सब खेहे, जो पजै सो आवै जाए, नानक असर नाम रजाए। आसा महला पहला, एको सरवर कमल अनूप, सदा बिगासै परमल रूप, उजल मोती चुगै हंस, सर्व कला जग दिसै अंश, जो दिसै सो उपजै बिनसै, बिन जल सरवर कमल ना दिसै रहाओ। बिरला बूझै पावै भेद, साखा तीन कह नित बेद, नाद बिंद की सुरत समाए, सतगुर सेव परम पद पाए।
ਮੁਕਤੋ ਰਾਤੋ ਰੰਗ ਰਵਾਤੋ ਰਾਜਨ ਰਾਜ ਸਦਾ ਬਿਕਸੰਤੋ ਜਿਸ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਬੂੜਤ ਪਾਹਨ ਤਾਰੈ ਤਾਰ ਤਿਰਭਵਨ ਮੈਂ ਜੋਤ ਤਿਰਭਵਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਉਲਟ ਭਈ ਕਰ ਕਰ ਮੈਂ ਆਣਿਆ ਅਹਿਨਸ ਭਗਤ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੈ ਲਾਗੈ ਪਾਏ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਮਤ ਸਾਚੀ ਇਹੋ ਜਿਤ ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਲਾਗੈ ਧੂਰ ਲਾਗੀ ਮਹਿਲ ਮਿਟੈ ਸੱਚ ਨਾਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਹਿ ਲਿਵਲਾ।

क्या देखा सूझ बूझ ना पावे, बिन आवे मंत्र बित ना आवे। जो जन्मे से रोग व्यापे, हमे माया दुख संतापे, से जन बांचे जो प्रभ राखे, सतगुर सेव अमृत रस चाखे। चलतो मन राखे अमृत चाखे, सतगुर सेव अमृत शब्द भाखे। साचे शब्द मुक्त गत पाए, नानक विचों आप गवाए, आसा महला पहला। जो तिन किया सो सच थिया, अमृत नाम सतगुर दिया। हृदय नाम नाही मन भंग, अंध नाल प्यारे संग। हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया। नाम पदार्थ नवनिध पाई रहाओ, कर्म धर्म।

हर वारो जिन पाया धन नारी हर सिउ राती शब्द विचारी आप तरै संगत कुल तारै सतगुर सेव तत् विचारै हमरी जात पत सजनाओ कर्म धर्म संजम सत पाओ नानक बख्शे पूछना होए दूजा मेटै एको सोए आसा महला पहला एक आवै एक जावै आई एक हर राते रहै समाई एक धरन गगन में ठावर ना पावै से कर्महीन हर नाम ना त्यावै गुर पूरे ते गत मित पाई एहो संसार बिखवत अत भौ जल गुर शब्दी हर पार लंघाई रहाओ जिन को आप ले

बुरा पला कहो किसनो कही है, दिसे ब्रह्म गुरमुख सच लही है, अकथ कथो गुरमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार। शास्त्र वेद सिमरत बहु भेद, अठसठ मजन हर रस रेद, गुरमुख निर्मल मैल ना लागे, नानक हिरदय नाम वड्डे तुर भागे। आसा महला पहला, निम्न उपाय लगो गुरे अपने, आत्म राम ने हारिया, करत विचार हृदय हर रविया, हृदय देख विचारिया, बोलो राम करे निस्तारा, गुर प्रसाद रतन हर लाभ, मिटे ज्ञान होए उजियारा, रहाओ रवनी रवे बंधन नहीं टूटे, विच हमें भरम ना जाई, सतगुर मिले ता हमें टूटे, ता को लिखे पाई, हर हर नाम भगत प्रिया प्रीतम, सुख सागर ओर तारे, भगत वछल जग जीवन दाता, मत गुरमत हर निस्तारे, मन स्यो जूझ मरे प्रपाए, मनसा मने समाए, नानक कृपा करे जग जीवन, सहज पाए लिवलाए। आसा महला पहला, किसको कहे सुनावे किसको, किस समझावे समझ रहे, किसे पढ़ावे पढ़ गुण बूझे, सतगुर शब्द संतोख रहे। ऐसा गुरमत रमत शरीरा, हर पज मेरे मानो गहर गंभीरा, रहाओ अनंत तरंग भगत हर रंगा, अंधन सूचे हर गुण संगा, मिथ्या जन्म सख्त संसारा, राम पगजन रहे निरारा, सूची काया हर गुण गाया, आत्म चीन रहे लिवलाया, आद अपा

प्रभ दूर नाही प्रभ तू है। सब जग देखिया माया छाया, नानक गुरमत नाम ते आया। आसा महला पहला ते तुका, कोई भीखक भीख्या खाए, कोई राजा रहा समाए। किसी मान किसै अपमान, टाहयो सारे तरे त्यान। तुते वड्डा

मन का अंधला माया का बंद, खीन खराब होवे नित कंद, खान जीवन की बहुती आस, लेख तेरा एहसास गिरास, अहनिस अंधले दीपक दे, पाओ जल डूबत चिंत करे, कह सुने जो माने नाओ, हाँ बलिहार ता कह जाओ, नानक करे अरदास, जियो पिंड सब तेरे पास, जा तू देह जपी तेरा नाओ, दर गै बैसन होवे थाओ, जा तुद पावे ता दो जाए, ज्ञान तन मन वसे आए, नदर करे ता सतगुर मिले, प्रणवत नानक पव जल तरै, आसा महला पहला पंच पदे, दुध बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पुज काम नाही, क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नाही, की विसरै दुख बहुता लागै, दुख लागै तू विसर नाही, रहाओ अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पवन ना वाजै, चरनी चलै पजूता आगै, विण सेवा फल लागै, अखर बिरख बाग पोए चोखी, संचित पाओ करेही, सबना फल लागै नाम एको, बिन कर्मा कैसे लेही, जेते जीते ते सब तेरे, विण सेवा फल किसे नाही, दुख सुख पाना तेरा होवे, विण नावें जियो रह नाही, मत विच मरण जीवन होर कैसा।

काया ब्रह्मा अमन है धोती, ज्ञान जनेऊ ध्यान कुछ पाती, हर नामा जजा चो नाओ, गुरप्रसादी ब्रह्म सुमाओ। पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामे सोच नामे पढ़ाओ, नामे चजाचार रहाओ। बाहर जनेऊ जिचर जोत है नाल, धोती टिक्का नाम संभाल, एथे उथे निभि नाल, विणना वै होर कर्म ना पाल। पूजा प्रेम माया प्रजाल, एको वेखो अवरना पाल, चिन्ह तत् गगन दस द्वार, हर मुख पाठ पढ़े विचार। भोजन पाओ परम पाओ भागै, पाहरू राशब चोर ना लागै, तिलक लाट जाने प्रवेक, बुझे ब्रह्म अंतर बबेक, आचारी नहीं जीतया जाए, पाठ पढ़े नहीं कीमत पाए। अष्ट दसी चहो भेद ना पाया, नानक सतगुर ब्रह्म दिखाया, आसा महला पहला। सेवक दास भगत जन सोई, ठाकर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन फनगोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई। साच नाम गुर शब्द विचार, गुरमुख साचे साचे दरबार रहाओ। सच्चा अर्ज सच्ची अरदास, मैली खसम सुने सावास, सच्चे तख्त

मन्ने हुक्म सो प्रगट जाए, सच निशाने ठग ना पाए। पंडित पढ़े वखाणे वेद, अंतर वस्त न जाने भेद। गुरबिन सोजी बूझ ना होए, साचा रव रह या प्रभ सोए। क्या हो आखा आख वखाणी, तू आपे जाने सर्व विडाणी। नानक एको दर्दी बाण, गुरमुख साच तहां गुदराण। आसा महला पहला, काची गागर दे दोहेली। उपजे बिनसै दुख पाई, एहो जग सागर दुत्तर क्यों तरी है। बिन हर गुर पार ना पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सरबी रंगी रूपी तू है। तिस बख्शे जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवे। फिर से मिल ना दे बुरी, सखी साजनी के हौ चरण सरेवा। हर गुर किरपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया। तुम सा मीत ना यवर कोई, जो तू राखे तिवी रहना। दुख सुख देवै करै सोई, आसा मनसा दो बिनास्त। त्रिगुण आस निरास पई, तुरिया अवस्था गुरमुख पाई है। संसवा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप। जिस हर हिरदय अलाख्या भेवा, नानक राम नाम मन राता। गुरमत पाए सहज सेवा, आसा महला पहला। पंच पदे मोह कुटुंब मोह सबकार, मोह तुम तजो सगल वेकार। मोह अर भरम तजो तुम वीर, साच नाम हृदय रवै शरीर रहाओ। सच नाम जा नव निध पाई, रोवै पूत न कल्पै माई। एत मोहे डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरै पार। एत मोहे फिर जूनी पाहे, मोहे लागा जमपुर जाहे। गुर दीखिया ले जब तब कमाहे, ना मोह टूटै ना थाए पाहे। नदर करे ता एहो मोह जाए, नानक हर सिउ रहै समाए। आसा महला पहला, आप करे सच अलाख्या पार। हौ पापी तू बख्शनहार, तेरा पाणा सब किश होवै। मन अठ कीचै अंत विगोवै रहाओ। मनमुख की मत कूड़ व्यापी, बिन हर सिमरण पाप संतापी। दुर्मत त्याग लहा किश लेवो, जो पजै सो लाख्या पेवो। ऐसा हमरा सखा सहाई, गुर हर मिलिया भगत दृढ़ाई। सगली सौंदी टोटा आवै, नानक राम नाम मन पावै। आसा महला पहला। चौपदे विद्या विचारी, ता पर उपकारी। जा पंचरासी ता तीर्थवासी। कुंगुरु वाजै जे मन लागै, तौ जम कहां करे मोस्यो वागै रहाओ। आस निरासी तौ सन्यासी, जा जत जोगी ता कायां भोगी। दया दिगंबर

एक ना परिया गुण कर तोवा मेरा सौ जग हो निष्परसोवा इओ क्यों कंत प्यारी होवा सौ जग हो निष्परसोवा रहाओ आस प्यासी से जयावा आगे से पावा के ना पावा क्या जाना क्या होए गारी माई हार दर्शन बिन रहन ना जाई रहाओ प्रेम ना चाखिया मेरी तिसना बुझानी गया सो जो बन तन पछतानी अजय सो जागो आस प्यासी पई ले उदासी रहो निरासी रहाओ हौ मैं खोए करे सिंगार तव कामन से जरवै पतार तव नानक कंतै मन पावै छोड़ वडाई अपने खसम समावै रहाओ आसा महला पहला पेव कड़ैतन खरी।

कहत नानक ऐसी मत आवै ताको सच्चे सच समावै आसा महला पहला दो पदे तित सरवरड़ पहिले निवासा पानी पाव कितने किया पंकज मोह पग नहीं चाल हम देखा तह डूबिया ले मन एक ना चेत समूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा हो ना हो जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पाया प्रणवत नानक तिन की सरना जिंतू नाही विसरिया आसा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक जय कर करते कीर्त होए सो कर राख वडाई तो हे रहाओ विसोए चसिया घड़िया पहरा थिती वारी माहो पया सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस एको वंकार सतगुर प्रसाद आसा घर तीजा महला पहला लख लस्कर लख वाजे नेजे लख उठ करे सलाम लखा उपर फरमाइश तेरी लख उठ राखे मान जा पत लेखे ना पवे ता सब निरा फल काम हर के नाम बिना जग तंदा जे बहुता समझाइए भोला पीसो अंदो वंदा रहाओ लख खटिए लख संजिए खाजै लख आवे लख जाहे जा पत लेखे ना पवे ता जी किथे फिर पाहे लख शास्त समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेखे ना पवे ता सबे को प्रवाण सच नाम पच उपजय कर्म नाम करतार अहनस हृदय जे वसै नानक नदरी पार आसा महला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओह सोखिया चूका जम स्यों मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मड़िया कर एक ठे एक रतीले पाहे रहाओ पिंड पतल मेरी केसो किरिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाचे एहो मेरा आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्मराओ सच्चा नामन तांथी है जा एनस लागे पाओ एक लोकी होर शमशरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीस का कबू ने खूट सना है आसा कर चौथा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवतियां दर्शन कहताई दुख भूख तीर्थ किए जोगी जति जुगत मैं रहते कर कर पगवे भेख पए तौ कारण साहेबा रंग रते तेरे नामा नेका रूपानंता कहन ना जाही तेरे गुण के ते रहाओ दर कर मैला हस्ती घोड़े छोड़वे लायत देश गए पीर पे कांबर सालक साधक छोड़ी दुनिया थाए पए सात सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमड़ लिए दुखिए दर्द वंद दर तेरे नाम रते दरवेश पए खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत तोती कीनी तू साहेब हौ सांगी तेरा प्रणवै नानक जात कैसी आसा कर पंजवा महला पहला एक ओवं

सूत धारी, खिमा सिंगार कामण तन पहरै रावै लाल प्यारी। लाल बहुगुण कामण मोही, तेरे गुण होहे नायवरी रहाओ। हर हर हर कंठ ले पहरै, दामोदर दंत ले, कर कर करता कंगन पहरै, इन बिद चित तरेई। मद सूदन कर मुंदरी पहरै, परमेसर पट ले, तीरज तड़ी बंदावै कामण, श्री रंग सुरमा दे। मन मंदर जे दीपक जाले, काया सेज करे, ज्ञान राओ जब से जय आवै, ता नानक भोग करे। आसा महला पहला, कीता होवै करे कराया, तिस क्या कहियै भाई, जो किश करना सो कर रहया, कीते क्या चतराई। तेरा हुकम भला तुद पावै, नानक ता को मिलै वडाई, साचे नाम समावै रहाओ। किरत पया परवाना लिखिया, बाहड़ हुक्म ना होई, जैसा लिखिया तैसा पढ़िया, मेट न सकै कोई। जे को दरगै बहुता बोलै, नौ पवै बाजारी, सतरंज बाजी पक्कै नाही, कच्ची आवै सारी। ना को पढ़िया पंडित बीना, ना को मूर्ख मंदा, बंदी अंदर सिफत कराए, ता को कहियै बंदा। आसा महला पहला, गुर का शब्द मनै मैं मुंदरा, खिंथा खिमा हंडावो, जो किश करै पला कर।

अमृत नाम ने रंजन पाया, ज्ञान काया रस भोगं रहाओ, शिव नगरी में आसन बैसाओ, कल्पते आगी बादं, सिंगी शब्द सदा तुन सोहै, एनिस पूरे नादं, पत विचार ज्ञान मत डंडा, वर्तमान बेपूतं, हर कीर्त रह रास हमारी, गुरमुख पंथ अतीतं, सगली ज्योत हमारी समया, नाना वर्णा नेकं, कहो नानक सुन पार्थर योगी, पार ब्रह्म लिवेकं, आसा महला पहला, गुड़ कर ज्ञान त्यान कर तावै, कर करनी कस पाई है, पाठी पवन प्रेम का पोचा, इतरस अम्यो चुआई है, बाबा मनमत वारो नाम रस पीवै, सहज रंग रच रहया, अहनस बनी प्रेम लिवलागी, शब्दा नाहद गहया रहाओ, पूरा सच प्याला सहजे, तिसे पियाए जा को नदर करे, अमृत कावा पारी होवे, क्यामत शूशे पाओ तरे, गुर की साखी अमृत बाणी, पीवत ही परवान पया, दर दर्शन का प्रीतम होवे, मुक्त बैकुंठ करै किया, सिफती रत्ता सद बैरागी, जुवे जन्म ना हार है, कहो नानक सुन पार्थर योगी, खीवा अमृत धार है, आसा महला पहला, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोष ना देई करता, जमकर मुगल चढ़ाया, एती मार पई कर लाने, तै की दर्द ना आया, करता तू सबना का सोई, जे सकता सकते कौ मारे, ता मन रोस ना होई रहा हो, सकता सीहो मारे पै वगे, खसमे सा पुरसाई, रतन विगाड़ वे गोए कुत्ती, मुया सार ना काई, आपे जोड़ वे छोड़े आपे, वेख तेरी वड़े आई, जे को ना उतराए वड़ा, साध करे मन पाने, खसमै नदरी कीड़ा आवै, जेते चुगै दाने, मर मर जीवै तक्ष पाए, नानक नाम वखाने, राग आसा कर दूजा महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर दर्शन पावै वडभाग, गुर कै सब सच्चै बैराग, खर दर्शन वरतै वरतारा, गुर का दर्शन अगमय अपारा, गुर का दर्शन मुग्ध

गुर दर्शन उदरै संसारा, जे को लाए पाओ प्यारा, पाओ प्यारा लाए विरला कोए, गुर कै दर्शन सदा सुख होए, गुर कै दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवै परवार सधार, निगुरे कौ गतकाई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाही, गुर कै शब्द सुख सांस शरीर, गुरमुख तां कौ लगे ना पीर, जम काल तिस नेड़ ना आवै, नानक गुरमुख साज समावै, आसा महला तीजा, शब्द मुआ विचों आप गवाए, सतगुर सेवे तिलना तुमाए, निरपव दाता सदा मन होए, सच्ची बाणी पाए भाग कोए, गुण संग्रह विचों अवगुण जाहे, पूरे गुर कै शब्द समाहे, रहाओ गुणा का गाहक होवै, सो गुण जाने, अमृत शब्द नाम वखाणे, साची बाणी सूचा होए, गुण ते नाम प्राप्त होए, गुणिया मोलक पाए ना जाहे, मन निर्मल साचा शब्द समाहे, सेवड़ भागी जिन नाम ते आया, सदा गुण दाता मन वसाया।

भगत रता जन सह सुभाए, गुर कै पैसा चै साज समाए, बिन गुर पूरे भगत ना होए, मन मुखरुने अपनी पत खोए, मेरे मानो हर भज मेरे मानो हर जापो सदा ते आए, सदा आनंद होवे दिन राती, जो इच्छा सोई फल पाए रहाओ, गुर पूरे ते पूरा पाए, हृदय शब्द सच नाम वसाए, अंतर निर्मल अमृत सरन आए, सदा सूचे साज समाए, हर प्रभ वेखे सदा हजूर, गुर प्रसाद रहा भरपूर, जहां जाओ तह वेखा सोए, गुर बिन दाता अवर ना कोए, गुर सागर पूरा भंडार, ऊतम रतन जवाहरिया पार, गुर प्रसादी देवनहार, नानक बख्शे बख्शनहार, आसा महला तीजा, गुर सायर

ज्ञान रतन सब सोजी होए, गुर प्रसाद ज्ञान बिनासै, अंधन जागै वेखै सच सोए रहाओ। मोह गुमान गुर शब्द जलाए, पूरे गुरते सोजी पाए, अंतर महल गुर शब्द पछाणै, आवन जान रहै थिर नाम समाणै। जमण मरना है संसार, मन मुखा चेत।

नाम रखो गुरमत मन चीता रहाओ। नामो नाम सुनी मन सरसा, नाम लाहा लै गुरमत बिकसा। नाम बिना कुष्टि मोह अंधा, सब निफल कर्म किए दुख धंधा। हर हर हर जस जपै वडभागी, नानक गुरमत नाम लिव लागी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद महला चौथा। राग आसा कर छेवें के तेन, हथ कर तंत वजावै जोगी। थोथर वाजै बेन गुरमत हर गुण बोलो जोगी। एव मनुआ हर रंग भेन, जोगी हर देहो मती उपदेश। जुग जुग हर हर एको वरतै, तिस आगै हम आदेश रहाओ। गावै राग पांत बहु बोलै, एव मनुआ खेलै खेल। जो वै कूप सिंचन कौ बसदा, उठ बैल गए चर बेल। काया नगर में कर्म हर बोवो, हर जामै हरिया खेत। मनुआ अस्थिर बैल मन जोवो, हर सिंचो गुरमत जेत। जोगी जंगम सृट सब तुमरी, जो देहो मती तित चेल। जन नानक के प्रभ अंतर जामी, हर लावो मनुआ पेल। आसा महला चौथा। कब को पाले कुंगरू ताला, कब को बजावे रबाब। आवत जात बार खिन लागे, हौं तब लग सुमारो नाम। मेरे मन ऐसी भगत बने आई, हौं हर बिन खिन पल रह न सको। जैसे जल बिन मीन मर जाई रहाओ। कब को मेले पंच सत गायन, कब को राग तुने उठावे। मेलत चुनत खिन पल चसा लागे, तब लग मेरा मन राम गुन गावे। कब को नाचे पाप पसारे, कब को हाथ फसारे। हाथ पाप पसारत बिलम तिल लागे, तब लग मेरा मन राम सुमारे। कब को लोगन को पति आवे, लोक पतीने ना पत होए। जन नानक हर हृदय सत्य आवो, ता जय जय करे सब कोए। आसा महला चौथा। सत संगत मिलिए हर साधु, मिल संगत हर गुण गाए। ज्ञान रतन बलिया कड़ चानन, अज्ञाना दे राजाए। हर जन नाचो हर हर त्याए, ऐसे संत मिले मेरे भाई। हम जन के तो वह पाए रहाओ। हर हर नाम जपो मन मेरे, अनदिन हर लिव लाए। जो इच्छो सोई फल पावो, फिर भूख न लग आए। आपे हरे परंपर करता, हरे आपे बोल बुलाए। सही संत भले तुद पावे, जिनकी पत पावे थाए। नानक आखना राजे हर गुण, ज्यो आखे त्यों सुख पाए। भगत भंडार दिए हर अपने, गुण गाहक वणज लै जाए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग आसा कर अठवां, राग आसा कर अठवें के काफी महला चौथा। आया मरण तो राहो, हो मैं रोई है। गुरमुख नाम ते आए अस्थिर होई है। गुरपूरे साबास चलन जानिया, लाहा नाम सो सार शब्द समाणिया रहाओ। पूर्व लिखे डेहे से आए माया, चलन अज के कल तुरों फुरमाया। बिरथा जन्म तिन्ना, जिनी नाम विसारिया। जुवै खेलन जग के हो मन हारिया। जीवन मरण सुख होए, जिन्ना गुर पाया। नानक सचे सच सच समाया। आसा महला चौथा। जन्म पदार्थ पाए नाम ते आया, गुर प्रसादी बुझ सच समाया। जिन तुर लिखिया लेख, तिन्नी नाम कमाया। दर सच्चे सच्यार महल बुलाया रहाओ। अंतर नाम निदान गुरमुख पाई है, अंदर नाम ते आए हर गुण गाई है। अंतर वसजा नेक मनमुख नहीं पाई है, हम मैं गर्भ है गर्भ आप खुआई है। नानक आपे आप,
ਆਪ ਖੁਆਈਐ ਗੁਰਮਤਿ ਮਨ ਪਰਗਾਸ ਸੱਚਾ ਪਾਈਐ ਰਾਗ ਆਸਾਵਰੀ ਘਰ ਸੋਲਵੇਂ ਕੇ ਦੋ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸੁਧੰਗ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਉ ਆਂਦਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਬਤਾਇਆ ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਖਿਨ ਪਲ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਉ ਰਹਾਉ ਹਮਰੈ ਸਰਵਣ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਉ ਹਉ ਇੱਕ ਖਿਨ ਜੈਸੇ ਹੰਸ ਸਰਵਰ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਤੈਸੇ ਹਰ ਜਨ ਕਿਉ ਰਹਿ ਹਰ ਸੇਵਾ ਬਿਨ ਕਿਨਹੂ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਰਿਦ ਧਾਰ ਕਿਨਹੂ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਮੋਹ ਅਪਮਾਨ ਹਰ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਹਰ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਆਸਾਵਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਮਾਈ ਮੋਰੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਮ ਬਤਾਵੋ ਰੀ ਮਾਈ ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਖਿਨ ਪਲ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਉ ਜੈਸੇ ਕਰ ਹਲ ਬੇਲ ਰਿਝਾਈ ਰਹਾਉ ਹਮਰਾ ਮਨ ਬੈ ਰਾਗ ਬਿਰਗਤ ਭਇਓ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮੀਤ ਕਹਿ ਤਾਈ ਜੈਸੇ ਅਲ ਕਮਲਾ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਤੈਸੇ ਮੋਹੇ ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਰਾਗ ਸਰਨ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਮੋਹੇ ਸਰਦਾ ਪੂਰ ਹਰ ਗੁਸਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕੈ ਮਨ ਅੰਧ ਹੋਤ ਹੈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਮਖ ਦਿਖਾਈ ਰਾਗ ਆਸਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਨ ਲਾਈ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋਈ ਫਿਰ ਖਾਇਆ ਜਿਨ ਸੁਖ ਬੈਠਾਲੀ ਤਿਸ ਪਉ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਇਆ ਭਾਈ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਦੇਖ ਵਿਵਾਦੇ ਹਮ ਆਈ ਵਸਗਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਐਸਾ ਦੇਖ ਬਿਮੋਹਤ ਹੋਏ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਬਿਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਧਰੋਹਨ ਧਰੋਹੇ ਰਹਾਉ ਇੱਕ ਫਿਰੈ ਉਦਾਸੀ ਤਿਨ ਕਾਮ ਵਿਆਪੇ ਇੱਕ ਸੰਚੈ ਗ੍ਰਹੀ ਤਿਨ ਹੋਏ ਨਾ ਆਪੈ ਇੱਕ ਸਤੀ ਕਹਾਵੈ ਤਿਨ ਬਹੁਤ ਕਲ ਪਾਵੈ ਹਮ ਹਰ ਰਾਖੇ ਲਗ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੈ ਤਪ ਕਰਤੇ ਤਪਸੀ ਭੁਲਾਏ ਪੰਡਿਤ ਮੋਹੇ ਲੋਭ ਸਵਾਏ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੋਹੇ ਮੋਹਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖੇ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਹੋਏ ਵਰਤੀ ਦਾਸ ਕਰ ਜੋੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿ ਹੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵਾਂ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਸੂ ਤੇ

मैं प्रेम रस पाया, दुर्जन मारे वैरी संघारे, सतगुर मोको हर नाम देवाया रहाओ। प्रथमे त्यागी हम मैं प्रीत, द्वितीया त्यागी लोगारीत, त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साध पिछाने, सहज गुफा में

जन नानक बोले ब्रह्म विचार, जो सुने कमावै सो उतरै पार। जन्म ना मरै ना आवै ना जाए, हर सेती ओरै समाए। आसा महला पंजवा, निज भगती सीलवंती नार। रूप अनूप पूरी आचार, जित ग्रह वसै सो ग्रह शोभावंता। गुरमुख पाई किने विरलै जनता, सुकरणी कामन गुरमिल हम पाई। जज काज पर थाए सुहाई रहाओ, जिचर वसी पिता के साथ। तिचर कंत बो फिरे उदास, कर सेवा सतपुरख मनाया। गुरयाणी घर मैं ता सर्ब सुख पाया। बत्ती सुलखणी सच संतत पूत, आज्ञाकारी सुगुण स्वरूप। इच्छ पूरे मरकंत स्वामी, सगल संतोखी देर जेठानी। सब परिवार है माहे श्रेष्ठ, मत्ती देवी देवर ज्येष्ठ। धन सो ग्रेहो जित प्रगटी आए, जन नानक सुखे सुख विहाए। आसा महला पंजवा, मता करो सो पकन ना देई। सील संयम कै निकट खलोई, वेश करे बहुरूप दिखावै। गृह बसन ना देई वख वख परमावै। घर की नायक घर वास ना देवै, जतन करो और जाए परे वै रहाओ। तुर की पेजी आई अमर, नौ खंड जीते सब थान थनंतर। तड़ तीर्थ ना छोड़ै जोग सन्यास, पढ़ था के सिमृत वेद अभ्यास। जह बैसों तह नाले बैसै, सगल भवन में सबल परवेसै। होछी शरण पया रहन ना पाई, कहो मीता हों कै पह जाई। सुन उपदेश सतगुर पै आया, गुर हर हर नाम मोहे मंत्र दृढ़ाया। निज कर वसिया गुण गाए अनंता, प्र मिलियो नानक पै अचिंता। कर मेरा एह नायक हमारी, एह अमर हम गुर की ए दरबारी। रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, प्रथमे मता जे पत्री चलावो। द्वितीय मता दोय मानक पहुंचावो। तृतीय मता किश करो उपाया, मैं सब की छोड़ प्रभ तुही ते आया। महा आनंद अचिंत सहजाया, दुश्मन दूत मोहे सुख पाया। रहाओ सतगुर मौका दियो आ उपदेश, जियो पिंड सब हर का देश। जो किश करी सो तेरा तान, तू मेरी ओट तू है दीवान। तुदनो छोड़ जाइए प्रभ कै तार, आन ना बिया तेरी संसार। तेरे सेवक किसकी कान, सगत पूला फिर बेबान। तेरी वड्याई कही ना जाए, जह कह राख लह गल लाए। नानक दास तेरी सरनाई, प्रभ राखी पैज वजी वाधाई। आसा महला पंजवा, परदेश चाग सब दे को आया। वस्त अनूप सुनी लाभाया, गुण रास बन पल्लै यानी। देख रतने मन लपटानी, सावा पारी द्वारे आए। वखर काडो सौदा कराए रहाओ, साहे पठाया साहे पास। अमोल रतने अमोला रास, विष्ट सुभाई पाया मीत। सौदा मिलिया निश्चल चीत, पौ नहीं तस्कर पौ ना पानी। सहज विहाजी सहज लै जानी, सत कै खटिया दुख नहीं पाया। सही सलामत कर लै आया, मिलिया लाहा पै आनंद। तन सा पूरे बख्शिंद, एहो सौदा गुरमुख किने विर लै पाया। सहली खेप नानक लै आया। आसा महला पंजवा, गुण अवगन मेरो कछ ना बिचारो। नै देखियो रूप रंग सिंगारो, चज आचार किश बिद नहीं जानी। बहा पकर परे से जयानी, सुन बो सखी कंत हमारो। की अलो खसमाना, कर मस्तक धार राख्यो कर अपना। क्या जाने हो लोका जाना। रहाओ
सुहाग हमारो अब हुण सोहयो, कंत मिलयो मेरो सब दुख जोहयो। आंगन मेरा सोबा चंद, निस्बासर प्रे संग आनंद, वस्त्र हमारे रंग चलूल, सगलिया भरण सोभा कंठ फूल, प्रे पेखी दृष्ट पाए सगल निधान, दुष्ट दूकी चूकी कान, सद खुशियां सदा रंग माने, नौ निद नाम ग्रह मह त्रिपताने, कहो नानक जो प्रै सिंगारी, थिर सुहागन संग पतारी, आसा महला पंजवा। दान दे कर पूजा करना, लैत देत उन मुकर परना, जित दर तुम है ब्राह्मण जाना, तित दर तू ही है पछताना, ऐसे ब्राह्मण डूबे पाई, निरापराध चितवै बुरियाई रहाओ, अंतर लोभ फिर हलकाए, निंदा करै सिर पार उठाए, माया मूठा चेतै नाही, भरमे पूला बहुती राही, बाहर बेख करै कनेरे, अंतर बिखिया उतरी घेरे, अवर उपदेसै आप ना बूझै, ऐसा ब्राह्मण कही ना सीजै, मूर्ख बामण प्रभु समाल, देखत सुनत तेरा।

दुख रोग भय गतंते मन निर्मल हर हर गुण गाए भय आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए तपत बुझी गुरसबदी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर सीतर मिलियो सह सुभाए रहाओ तावत रहे एक एक बुझिया आए बसे अब नहीं चल थाए जगतो दारण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दोख परे मेरे पछ अब पकड़े नहीं।

बिगड़ रूप मन में अभमान, सोहने स्वरूप सुजान बिचखनो, अत गर्भ मोहे फाकी तू रहाओ, अत सूची तेरी पाक साल, कर इशनान पूजा तिलक लाल, गली गर्भ मुख गोवै ज्ञान, सब बिद खोई लोभ सुवान, कापर पहरै पुगै भोग, आचार करै शोभा मै लोग, चोवा चंदन सुगंध विस्तार, संगी खोटा क्रोध चंडाल, अवर जोन

वेमो ताजा वे प्रवाहो नानक दास कहो गुरवाहो आसा महला पंजवा हर रोड़ होश रस माता घर मैं वस्त बाहर उठ जाता सुनी ना जाई सच अमृत काथा रार करत झूठी लग गाथा रहाओ वजो साहेब का से बिरानी ऐसे गुनैशा देव प्राणी तेस्यो लूक जो सद ही संगी कामना आवै सो फिर मंगी कहो नानक प्रभ दीन दयाला ज्यो पावै त्यों कर प्रतपाला आसा महला पंजवा जी प्राण तन हर को नाम इहा उहा उन संग काम बिन हर नाम अवर सब थोरा तृप्तिया गावै हर दर्शन मन मोरा रहाओ भगत भंडार गुरबाणी लाल गावत सुनत कमावत निहाल चरण कमल स्यों लागो मान सतगुर तूठै कीनो दान नानक कौ गुर दीख्या दीन प्रभ अबनासी घट घट चीन आसा महला पंजवा आनंद बिनोद परे पुरतारिया अपना कार्य आप सवारिया पूर समग्री पूरे ठाकर की भरपुर धार रही सोभ जा की रहाओ नाम निदान।

पर पूरा प्रगट मार्ग दिखाया। जाप ताप कश युक्त न मोरी, गुरु नानक शरणागत तोरी। आसा महला पंजवा ते पदे दो, हर रस पीवत सद ही राता। आन रसा खिन मैं ले जाता, हर रस के माते मन सदा आनंद। आन रसा मैं व्यापै चिंद, हर रस पीवै अलमस्त मतवारा। आन रसा सब हो चेरे रहाओ, हर रस की कीमत कही ना जाए। हर साधु हर सुमाए, लाख करोरी मिले ना के। हे जिसे प्राप्त तिस ही दे, नानक चाख पए बिस्माद। नानक गुरते आया साध, ईत ऊत कत छोट ना जाए। नानक गीदा हर रस माहे, आसा महला पंजवा। काम क्रोध लोभ मोह मिटावै, छुटकै दुरमत अपनी तारी। होए निमाणी सेव कुमावै, ता प्रीतम होवै मन प्यारी। सुन सुंदर साधु बचन उधारी, दुख भूख मिटै तेरो सहसा। सुख पावै तू सुख मन नारी। रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा, आत्म सुध बिख त्यास निवारी। दासन की होए दा दासरी, ता पावै सो बाहर द्वारी। इही आचार इही ब्योहारा, आग्या मान भगत होए तुम्हारी। जो एहो मंत्र कमावे नानक, सो भौजल पार उतारी। आसा महला पंजवां दो पदे, पही प्राप्त मानुख दे हुरिया। गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै ना काम। मिल साध संगत पज केवल नाम, सरंजाम लाग भव जल तरन कै। जन्म बिरथा जात रंग माया कै, रहाओ जप तप संजम तरम ना कुमाया। सेवा साधना जान्या हर राया, कहो नानक हम नीच करमा। शरण परे की रखो शर्मा, आसा महला पंजवा। तुझ बिन अवर नाही मैं दूजा, तू मेरे मन माही। तू साजन संगी पर मेरा, काहे जी डराही। तुमरी ओर तुम्हारी आसा, बैठत उठत सोबत जागत। विसर नाही तू सास गिरासा, रहाओ राख राख सरन प्रभ अपनी। अग्न सागर विकराला, नानक के सुखदाते सतगुरु। हम तुमरे बाल गोपाला, आसा महला पंजवा। हर जन लीने प्रभु छड़ाए, प्रीतम स्यो मेरो मन मान्या। ताप मुआ बिख खाए, रहाओ पाला ताऊ कछु ना व्यापै। राम नाम गुण गाए, डाकी कोचित कछु ना लागै। चरण कमल शरण आए, संत प्रसाद पए कृपाला। होए आप सहाए, गुण निदान नित गावै नानक। सहसा दुख मिटाए, आसा महला पंजवा। औख दिखायो हर को नाओ, सुख पाए दुख बिन सिया थाओ। ताप गया बचन गुरपूरे, अंध पयासा मिटे विसूरे। रहाओ जी जंत सगल सुख पाया, पार ब्रह्म नानक मन ध्याया। आसा महला पंजवा। बांशत नाही सो बेला आई, बिन हुक्मै क्यों बुझै बुझाई। ठंडी ताती मिट्टी खाई, ओहना बाला बूढ़ा पाई। रहाओ नानक दास शरणाई, गुरप्रसाद पौ पार पराई। आसा महला पंजवा। सदा सदा आया तुम परगास, सा संगत हर चरण निवास। राम नाम नित जप मन मेरे, सीतल सांस सदा सुख पावै। किल विख जाहे सबे मन तेरे, रहाओ कहो नानक जाके पूर्ण कर्म। सतगुर भेटे पूर्ण पार ब्रह्म, दूजे करके चौतीस। आसा महला पंजवा। जाका हर स्वामी प्रबेली, पीड़ गई फिर नहीं दुहेली। रहाओ कर कृपा चरण संग मेली, सुख सहज आनंद सुहेली। साध संग गुण गाया तोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा महला पंजवा।
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮਤ ਮਦ ਸਰ ਇਹ ਖੇਲਤ ਸਭ ਜੂਐ ਹਾਰੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਵਾਰੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਭਾਰੇ ਮਿਲਤ ਸੰਗ ਪਇਓ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਗੁਰਪੂਰੈ ਲੈਖਿਨ ਮੈਂ ਤਾਰੇ ਰਹਾਉ ਸਭ ਕੀ ਰਿਣ ਹੋਏ ਰਹਿ ਮਨੁਆ ਸਗਲੇ ਦਿਸੈ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਸਭ ਮੱਧੇ ਰਵਿਆ ਮੇਰਾ ਠਾਕਰ ਦਾਨ ਦੇ ਸਭ ਜੀ ਸਮਾਰੇ ਏਕੋ ਏਕ ਆਪ ਇਕ ਇਕ ਏਕ ਹੈ ਸਗਲਾ ਪਾਸਾਰੇ ਜਪ ਜਪ ਹੋਏ ਸਗਲ ਸਾਧ ਜਨ ਏਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਬਹੁਤ ਉਧਾਰੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਸਾਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕਉ।

राज मिलक जोबन गृह शोभा रूपवंत जोवानी बहुत दर्ब हस्ती अर घोड़े लाल लाख बयानी आगे दरगे काम न आवे छोड़ चला अभिमानी काहे एक बिना चित लाई है उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हर त्याई है रहाओ। महाबचित्र सुंदर।

का छोड़ चलिया एक दिहाड़े। कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने। उपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने। नांगा आयो नांगो जासी, जो हस्ती खा किसान। संत सज्जन सुनो सामीता, झूठा हो पासारा। मेरी मेरी का कर डूबे, खप खप मोए गवारा। गुरमिल नानक नाम ते आया, साच नाम निस्तारा। राग आसा कर पंजवा, महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ब्रह्म सोई सगल जगत तंद अंध, को जागे हर जन। महामोहनी मगन प्रे प्रीत प्राण, को त्यागे विरला। चरण कमलया नूप हर संत मंत, को लागे साधु। नानक साधु संग, जागे ज्ञान रंग, वड़भागे कृपा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। और आगे आसा कर शेवा, महला पंजवा। जो तुद पावे सो परवाना, सुख सहज मन सोई। करण कारण समरथ अपारा, अवर नाही रे कोई। तेरे जन रसक रसक गुण गावे, मसलत मता स्यान पजन की। जो तू करै करावे रहाओ, अमृत नाम तुम्हारा प्यारे। साध संग रस पाया, तृप्त अगाए सही जन पूरे। सुख निदान हर गाया, जा कौ टेक तुम्हारी स्वामी। ता कौ नाही चिंता, जा कौ दया तुम्हारी होई। से सह पले भगवंता, परम मोह त्रोह सब निकसे। जब का दर्शन पाया, वर्तन नाम नानक सच कीना। हर नामे रंग समाया, आसा महला पंजवा। जन्म जन्म की मल तोवे पराई, अपना कीता पावे। इहा सुख नहीं दरगै ढोई, जमपुर जाए पचावे। निंदक अहला जन्म गवाया, पहुंचना साके काहू बात। आगे ठौर ना पाया रहाओ, किरत पया निंदक बपरे का। क्या ओ करे बिचारा, तहा बिकूता जय कोई ना रखे। ओ किस पै करे पुकारा, निंदक की गत कत हू नाही। खसम एवे भाणा, जो जो निंद करे संतन की। त्यों संतन सुख माना, संता टेक तुम्हारी स्वामी। तू संतन का सहाई, कहो नानक संत हर राखे। निंदक दिए रोड़ाई, आसा महला पंजवा। बाहर तोए अंतर मन मैला, दोए ठौरे अपने खोए। इहा काम क्रोध मोहे व्यापिया, आगे मुसमुस रोए। गोविंद भजन की मत है होरा, वर्मी मारी साफ न मरे। नाम न सुनई डोरा रहाओ, माया की किरत छोड़ गवाई। भक्ति सार ना जाने, वेद शास्त्र को तरकन लागा। तत् योग ना पिछाने, उगर गया जैसा खोटा टबुआ। नदर सिराफा आया, अंतर जामी सब किस जाने।

सब जग बौराया ना मिले सुख पाइए। क्या कहिए किस आग सुनाइए, जे कहना सो प्रभ जी पास, सब कुछ कीता तेरा वरत है सदा सदा तेरी आस। जे देहे वड़ियाई ता तेरी वड़ियाई, ए त्यो तुझे ते आओ, नानके प्रभ सदा सुखदाते, मैं तान तेरा एक नाओ। आसा महला पंजवां, अमृत नाम थुमारा ठाकर, एहो महाराज जने पियो, जन्म जन्म चूके पह पारे, दुर्त बनास्यो परम बियो। दर्शन पेखत मैं जियो, सुनकर वचन तुम्हारे सतगुर, मन तन मेरा ठार थियो रहाओ। तुमरी कृपा ते पयो साध संग, एहो काज तुम आप कियो, दिड़ कर चरण गहे प्रभ तुमरे, सहजे बिखिया पही खियो। सुख निदान नाम प्रभ तुमरा, एहो बनासी मंत्र लियो, कर कृपा मोहे सतगुर दीना, ताप संताप मेरा बैर गियो। तन सो मानस देही पाई, जित प्रभ अपने मिल लियो, तन सो कलयुग साध संकीर्तन गाइए, नानक नाम आधार हीओ। आसा महला पंजवां, आगे ही ते सब किश हुआ, यवर के जाने जाना, भूल चूके अपना बारक बख्शिया, पार ब्रह्म भगवाना। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहे दीन कौ राख लिया, काटिया रोग महा सुख पाया, हरे अमृत मुख नाम दिया रहाओ। अनक पाप मेरे पर हरिया, बंधन काटे मुक्त पहे, अंध कूप महा कोरते, बहा पकर गुर काड लिए। निरपव पय सगल पव मिटिया, राखे राखण हारे, ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे, कार्ज सगल सवारे। गुण निदान साहिब मन मेला, शरण पया नानक सोहेला। आसा महला पंजवां, तू विसरै ता सब को लागू, चीत आवै ता सेवा, अवरना को दूजा सूजै, साचे अलख्या पेवा। चीत आवै ता सदा दयाला, लोगन क्या विचारे, बुरा भला को किसनो कहिए, सगले जीत तुम्हारे रहाओ। तेरी टेक तेरा आधारा, हाथ दे तू रखै, जिस जानी ऊपर तेरी कृपा, तिस को बेपना को उपख है। ओहो सुख ओहा वड़ियाई, जो प्रभ जी मन पाणी, तू दाना तू सद मेहरवाना, नाम मिले रंगमाणी। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड़ियाई, कोई ना ना जाने मेरा। आसा महला पंजवां, कर कृपा प्रभ अंतर जामी, साह संग हर पाई है, खोल के वार दिखा ले दर्शन, पुनरप जन्म न आई है। मिलो प्रीतम स्वामी अपने, सगले दुख हरौरे, पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या, ता कह संग तरौरे रहाओ। महा उद्यान पावक सागर पहे, हरक सोग मैं बसना, सतगुर पेट पया मन निर्मल, जप अमृत हर रसना, तन तन थाप कियो सब अपना, कोमल बंधन बांधिया। गुर प्रसाद पहे जन्म मुक्ते, हर हर नाम आराध्या, राख लिए प्रभ राखन हारे, जो प्रभ अपने पाणे, जियो पिंड सब तुमरा दाते, नानक सद गुरबाणी।

काम क्रोध अहंकार गाखरो संयम कौन छुट्योरी। सुर नर देव असुर त्रै गुनिया सगलो पवन लुट्योरी। दावा यगन बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी। ऐसो समरथ वर्ण ना साका ताकि उपमा जात ना कहे ओरी। काजर कोठ में पई नकारी निर्मल वर्ण बने ओरी। महामंत्र गुरु हृदय बसियो अचरज नाम सुनोरी। कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई। प्रेम भक्त नानक सुख पाया साधु संग समाई। एको ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर सतवा महला पंजवा। लाल चोलना तैं तन सोहया सुरजन पानी ता मन मोहया। कमन बनीरी तेरी लाली कमन रंग तू पई गुलाली। रहाओ तुम ही सुंदर तुम्हें सुहाग तुम कर लालन तुम कर भाग। तू सतवंती तू प्रधान तू प्रीतम पानी तू ही सुर ज्ञान। प्रीतम पानी ता रंग गुलाल कहो नानक शुभ दृष्ट निहाल। सुन री सखी ए हमरी काल प्रभु आप सिंगार सुवर्ण हार। रहाओ दूजा आसा महला पंजवा। दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मोय मिली हदूर। चुका निहोरा सखी सहेरी परम गया गुर पिर संग मेरी। रहाओ निकट आन प्रे से तरी कान कड़न ते छूट परी। मंदिर मेरा सब दो जारा आनंद बिनोदी खसम हमारा। मस्तक भाग मैं पिर घर आया थिर सुहाग नानक जन पाया। आसा महला पंजवा। साच नाम मेरा मन लागा लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा। बाहर सूत सगल स्यो मौला अलिप्त रहो जैसे जल मैं कौला। रहाओ मुख की बात सगल स्यो करता जी संग प्रभ अपना धरता। दीस आवत है बहुत पीहाला सगल चरण की हो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया अंतर बाहर एक दिखाया। आसा महला पंजवा। पावत रलिया जोबन बलिया नाम बिना माटी संगरलिया। कान कुंडलिया बस्त्र उडलिया से सुखलिया मन गर्बलिया। रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक छतरिया हर भगत बनाले तरन गडलिया। रूप सुंदरिया अनक स्त्रिया हर रस बिनो सब स्वाद फिकरिया। माया शलिया बिकार बिखलिया शरण नानक प्रपुरख दयालिया। आसा महला पंजवा। एक बगीचा पेड़ घन करिया अमृत नाम तहां मैं फलिया। ऐसा करो विचार ज्ञानी जाते पाइये पद निर्बानी। आस पास बिखुआ के कुंटा बीच अमृत है पाई। रे रहाओ सिंचन हारे एक माली खबर करत है पात पत डाली। सगल बनस्पत यान जड़ाई सगली फूली निफल ना काई। अमृत फल नाम जिन गुरते पाया नानक दास तरी तिन माया।

हुकम बूझ रंग रस माने सतगुर सेवा महा निर्वाणे जिन तू जाता सो ग्रस्त उदासी प्रवाण नामृता सोई निर्वाण जा को मिलियो नाम निधाना पंडित नानक ताका पुरख जाना आसा।

शास्त्र वेद पाप पुण्य विचार नरक स्वर्ग फिर अवतार ग्रस्त में चिंत उदास अहंकार कर्म करत जी को जंजार प्रभ कृपा ते मन वसे आया नानक गुरमुख तरी तिन माया साध संग हर कीर्तन गाई है एहो अस्थान गुरु ते पाई है रहाओ दूजा आसा महला पंजवा घर में सुख बहर फन सुखा हर सिमरत सगल बिनासे दुखा सगल सुख जा तू चित आवै सो नाम जपै जो जन तुद पावै रहाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा हर हर जपत तह दुख डेरा हुक्म बूझै सोई परवान सास सब जा का निशान गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया पणत नानक मेरे मन सुख पाया आसा महला पंजवा जहां पठावो तै तै जाई जो तुम देहो सोई सुख पाई सदा चेरे गोविंद गुसाई तुमरी कृपा ते तृप्त्या गाई रहाओ तुमरा दिया पैनो खाई तौ प्रसाद प्रभ सुखी बलाई मन तन अंतर तुझे ते आई।

मूर्ख मुग्ध अज्ञान अविचारी, नाम तेरे की आसमन धारी। जप तप संजम कर्म ना साधा, नाम प्रभु का मन अरादा। किशु ना जाना मत मेरी थोरी, बिनमत नानक ओट प्रभ तोरी। आसा महला पंजवां, हर हर अखर।

हर माला और अंतर धार है, जन्म मरण का दुख निवार है, हृदय संभाल मुख हर हर बोले, सो जन इत उत कत न डोले, कहो नानक जो राचे नाए, हर माला ता कै संग जाए, आसा महला पंजवा, जिसका सब किश तिसका होए, तिस जन लेपना व्यापै कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जोगश करे सोई पल जन कै, अत निर्मल दास की जुगता रहाओ, सगल त्याग हर सरणी आया, तिस जन कहां व्यापै माया, नाम निदान जाके मन माहे, तिसको चिंता सुपने नाहे,

प्रभ की प्रीत सद सोभावंत, प्रभ की प्रीत सब मिटी है चिंत, प्रभ की प्रीत एहो भव जल तरै, प्रभ की प्रीत जमते नहीं डरै, प्रभ की प्रीत सगलो उधार है, प्रभ की प्रीत चलै संगार है, आपो कोई मिले ना भूलै, जिस कृपाल तिस साध संग कूलै, कहो नानक तेरै कुर्बान, संत ओट प्रभ तेरा तान, आसा महला पंजवां, भूपत होए कै राज कमाया, कर कर अनर्थ बिहाजी माया, संचत संचत थैली कीनी, प्रभ उसते डार अवर कौ दीनी, काच गगरिया अंब मझरिया, गर्भ गर्भ उवाहू मैं परिया, रहाओ निरपव होयो भया निहंगा, चीतना आयो करता संगा, लश्कर जोड़े किया संबाहा, निकस्या फूकता होए गयो स्वाहा, ऊचे मंदर महल अरानी, हस्त घोड़े जोड़े मन पानी, वड परवार पूत अरतिया, मोहे पचे पच अंधा मुआ, जिने उपाहा तिने बिनाहा, रंगरसा जैसे सुपनाहा, सोई मुक्ता तिस राजमाल, नानक दास जिस खसम दयाल, आसा महला पंजवा, इन स्यों प्रीत करी कनेरी, जो मिलिए तो वदै वधेरी, गल चमड़ी जो छोड़ै नाही, लाग छटो सतगुर की पाई, जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलियो वजी वधाई, रहाओ ऐसी सुंदर मन कौ मोह, बाट काट करे बन बन जो है, मन तन लागे हुए कै मीठी, गुरप्रसाद मैं खोटी डीठी, अगर उसके वड़े ठगाऊ, छोड़े नाही बाप ना माऊ, मेली अपने उनले बांधे, गुर कृपा ते मैं सगले साधे, अब मोरे मन पया आनंद, पहु चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया, आसा महला पंजवां, आठ पहर निकट कर जाने, प्रभ का किया मीठा माने, एक नाम संतन आधार, होए रहे सब की पगशार।

वर्तन जाकै केवल नाम, अनद रूप कीर्तन विश्राम। मित्र सत्र जाकै एक समान, प्रभ अपने बिन अवर ना जानै। कोट कोट अग कट नहारा, दुख दूर करन जी के दातारा। सूर बीर बचन के बली, कौला बपरी संती शली। ताका संग बांछै सुरदेव, अमोग दर्श सफल जा की सेव। कर जोड़ नानक करे अरदास, मोहे संत है टहल दीजै गुणतास। आसा महला पंजवा, सगल सुख जप एक नाम, सगल धर्म हर के गुणगाम। महापवित्र साधका संग, जिस पेड़त लागे प्रभ रंग। गुरप्रसाद ओ आनंद पावे, जिस सिमरत मन होए प्रगासा। ताकि गत में तो कहन ना जावे, रहाओ वर्त नेम मज्जन तिस पूजा। वेद पुराण तिन सिमरत सुनीजा। महापुनीत जाका निर्मल थान, साध संगत जाकै हर हर नाम। प्रगट्यो सो जन सगले भवन, पतित पुनीत ताकी पगरेन। जाको पेट्यो हर हर राय, ताकी गत में तो कथन ना जाए। आठ पहर कर जोड़ते आवाओ, उन साधा का दर्शन पावाओ। मोहे गरीब को लिहोर लाए, नानक आए पै सरनाए। आसा महला पंजवा, आठ पहर उद के सुनानी। सद ही भोग लगाए सुगयानी, बिरथा काहू छोड़े नाही। बहुर बहुर तिस लागे पाई, साल ग्राम हम

वैकुंठ जहां का चवर सभी ऊपर झूलै ता का धूप सदा प्रफुलै काट काट संपट है रे जाका अपग सभा संग है सादा आरती कीर्तन सदा आनंद महिमा सुंदर सदा बेअंत जिसे प्राप्त तिस ही लहना संत चरण ओ आयो सरना हाथ चढ़ो हर साल गे राम कहो नानक गुर की नो दान आसा महला पंजवा पंच पदा जेह पेंड लूटी परिहारी सो मार्ग संतन दूरारी सतगुर पूरे साच कहया नाम तेरे की मुक्ते बिथी जम का मार्ग दूर रहया रहाओ जह लालच जागाती काट दूर रही ओ जनते बाट जह आवटे बहुत घन साथ पार ब्रह्म के संगी साध चित्र गुप्त सब लिखते लेखा भगत जना कौ दृष्ट ना पेखा कौ नानक जे सतगुर पूरा वाजे ता कै अरहद तूरा आसा महला पंजवा दो पदा साधु संग सिखायो नाम सर्व मनोरथ पूर्ण काम बुझ गई तृष्णा हर जसे अगाने जब जब जीवा सारंग पाने करन करावन सरन परया गुर प्रसाद सहज कर पाया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ लाल जवेहर भरे भंडार तोट ना आवै जप निरंकार अमृत शब्द पीवै जन कोए नानक ता की परम गत होए आसा कर सतवां महला पंजवां हर का नाम हृदय नित ध्याई संगी साथी सगल तराई गुर मेरे संग सदा है नाले सिमर सिमर ते सदा समाले रहाओ तेरा किया मीठा लागै हर नाम पदार्थ नानक मांगै आसा महला पंजवा साधु संगत तरिया संसार हर का नाम मन आधार चरण कमल गुरदेव प्यारे पूजै संत हर प्रीत प्यारे रहाओ जां कै मस्तक लिखिया भाग कहो नानक ता का थिर सोहाग आसा।

तपत हरी पलो पयो प्रे कहया मान्या सुख सहज इस घर का जानिया रहाओ। हौ बंदी प्रे खिजमतदार ओह अविनाशी अगम्या पार ले पखा प्रे चलो पाए पा गए पंच दूत लावे। ना मैं कुल ना सोभावंत क्या जाना क्यों पानी कंत मोहे अनी मोहे अनाथ गरीब ने मानी कंत पकर हम कीनी रानी। जब मुख प्रीतम साजन लागा सुख सहज मेरा तन सोहागा कहो नानक मोरी पूर्ण आसा सतगुर मेली प्रभ गुणतासा।

उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे भाई रहाओ। पाए ठगौली सब जग जोहया ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया गुरमुख नाम लगे से सोहया वर्त नेम कर थाके पुनः चरना तट तीर्थ पवे सब तरना से उबरे जे सतगुर की सरना माया मोहे सबो जग बादा हमें पचय मनमुख मूर आखा गुरु नानक बहा पकर हम राखा आसा महला पंजवा सर्व दुख जब बिसरे स्वामी इहा उहा कामना प्राणी संत तृप्तासे हर हर त्याए कर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख प्रभ तुमरी रिजाए रहाओ। संग होवत कौ जानत दूर सोजन मरता नित नित चूर जिन सब किश दिया तिस चितवत नाहे महाबिख्या मैं दिन रहन जाहे। कहो नानक प्रभ सिमरो एक गत पाई है गुर पूरे टेक आसा महला पंजवा नाम जपत मन तन सब हरिया कल मल दोग सगल पर हरिया सोई दिवस भला मेरे भाई हर गुण गाए परम गत पाई रहाओ। सा जना के पूजे पैर मिटे उपद्रय मन ते बैर गुर पूरे मिल झगर चुकाया पंच दूत सब वसगत आया जिस मन वसया हर का नाम नानक ते सुपर कुर्बान आसा महला पंजवा गाव लेहे तू गावन हारे जी पिंड के प्राण आधारे जा की सेवा सर्व सुख पावे अवर काहू पह भव ना जावे सदा आनंद आनंदी साहेब गुण निधान नित नित जापिए बलिहारी ते संत प्यारे जिस प्रसाद ब्रह्मन वासी है रहाओ। जा का दान निखूटे नाही भली पांत सब सहे समाही जा की बख्शना मेटै कोई मनवा साई है साचा सोई सगल समग्री ग्रह जा के पूर्ण प्रभ के सेवक दुख ना चूर्ण ओट गही निरपौ पद पाई है सास सास सो गुणित गई है दूर ना होई कतहू जाई है नजर करे ता हर हर पाई है अरदास करी पूरे गुरपास नानक मंगे हर तन रास आसा महला पंजवा प्रथमे मिटिया तन का दुख मन सल का होवा सुख कर कृपा गुर दीनो नाओ बल बल ते सतगुर को जाओ। गुर पूरा पायो मेरे भाई रोग सोग सब दुख विनाशे सतगुर की शरणाई रहाओ। गुर के चरण हृदय वसाए मन चिंतत सगले फल पाए अग्न बुझी।

मान बंधन काटो सेवक कर राखे अमृत बानी रसना चाखे वड़े भाग पूज गुर चरना सगल त्याग पाई प्रभ सरना गुर नानक जा को भया दयाला सोजन हो वासदा निहाला आसा महला पंजवा सतगुर साचे।

चतराई सियाण पाक तै कामना आई है, तुठा साहेब जो देवै सोई सुख पाई है। जे लख कर्म कमाई है किश पवै ना बंदा, जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंदा। आसा महला पंजवा सर्व सुखा मैं पालिया, हर जेवड़ ना कोई गुर तुठे ते पाई है सा साहब सोई। बलिहारी गुर अपने सा सतकुरबाना, नाम ना विसरो एक खिन चसा एहो की जैदाना। रहाओ पागट सच्चा सोए है जिस हर धन अंतर, सो छूटै महाजाल ते जिस गुर शब्द निरंतर। गुर की महिमा क्या कहा गुर बिबेक सतसार, ओह आद जुगादि जुगह जुग पूरा परमेसर। नाम ते आवो सद सदा, हर हर मन रंगे जियो प्राण धन गुरु है नानक कै संगे। आसा महला पंजवा साई अलख्या पार, पोरी मनवसै दुख दर्द रोग माए मैंडा हब नसै। हाउ मन्या कुर्बान साई अपने, होवे अंधकणा मन तन जापने। रहाओ बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धनी, सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी। नैन पसंदो सोए पेख मुस्ताक पई, मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई। बेद कतेब संसार हब्बा हूं बाहरा, नानक का पात साहो दिसै जाहरा।

तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ, तू सबना के नाथ तेरी सृष्ट सब रहाओ। सदा सहाय संत पेखे सदा हजूर, नाम बिहुनड़िया सिमरन में सूर विसूर। दास दास तन पाए मिटिया तिना गौण, विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौन। जैसे पास

पाओ दर्शन खोज खोज आवो ब्रह्मादिक सनकादक सनक सनंदन सनातन संत कुमार तिन कौ महल दुलभावो अगमय अगमय अगाध बोध कीमत परे ना पावो ताकि शरण सतपुरख की सतगुर पुरख ते आवो भयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर काट्यो बंद गरावो कहो नानक जो साध संग पावो कहो नानक जो साध संग पायो तो फिर जन्म ना आवो आसा महला पंजवा अंतर गावो बाहर गावो गावो जाग सवारी संग चलन कौ तोसा दीना गोविंद नाम के ब्योहारी अवर बिसारी बिसारी नाम दान गुरपुर दियो मैं इहो आधारी रहाओ दुखन गावो सुख पी गावो मार्ग पंथ समारी नाम दृढ़ गुरमन में दिया मोरी तसा बुजारी दिन पी गावो रैनी गावो गावो सास सास रस नारी सत संगत में विश्वास होए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक कहो एहो दान देहो प्रभ पावो संतरे निर तारी श्रवणी कथा नैन दर्श पेखो मस्तक गुर चरनारी एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर दसवा महला पंजवा जिसनों तू असर कर मानै ते पाहुन दो दाहा पुत्र कलत्र ग्रह सगल समग्री सब मिथ्या असनाहा रे मानु क्या करे है हाहा दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी एक राम भजन लै लाहा रहाओ जैसे बस्त्र देह उडाने दिन दोए चार पोराहा पीत ऊपरे केतक ताई है अंत ओर को आहा जैसे अंब कुंड कर राखियो परत सिंध गल जाहा आव गया गया पार ब्रह्म की उठ जासी मोहत चसाहा अरे मन लेखे चाल लेखे बैसै लेखे लेंदा साहा सदा कीर्त कर नानक हर की उबरे सतगुर चरण ओटाहा आसा महला पंजवा अपुष्ट बाते पई सिजरी दूत दुष्ट सजनई अंधकार मैरतन प्रगासियो मलीन बुद्ध हशनई जाओ कृपा गोबिंद पई सुख संपत हर नाम फल पाए सतगुर मिलई रहाओ मोहे कृपन को कोई ना जानत सगल पवन प्रगटई संग बैठनो कही ना पावत हुन सगल चरण सेवई आड़ आड़ को फिरत ढूंढते मन सगल त्रिसन बुझ गई एक बोल पी खबतो नाही साध संगत सीत लई एक जीही गुण कमन मखाने अगम अगम अगमई दास दास दास को करियो जन नानक हर शरणई।

खोजत खोजत खोज बिचारियो तत नानक हो जाना रे सिमरत नाम निधान निर्मोलक मन माणक पतियाना रे। आसा महला पंजवा दो पदे गुर प्रसाद मेरा मन वसिया जो मांगो सो पावो रे नाम रंग एहो मंत्र पताना बहुर नकत हूं तावो रे। हमरा ठाकर सब ते ऊंचा रहन दिन सो तिस गावो रे खिन मैं थापो थापन हारा तिस ते तुझे डरावो रे रहाओ। जब देखो प्रभ अपना स्वामी तो अवरै चीत ना पावो रे नानक दास प्रभया पहराया प्रंपो मेट लिखावो रे।

हो, कृपा पाए सहजाए दरसाए, अब रातिया गोविंद स्यों, संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए, गुर ज्ञान मंदर लाए, रहसाए नहीं आए, सहजाए मन निदान पाए, सब तजी मने की काम करा, चिर चिर चिर चिर भया, मन बहुत प्यास लागी, हर दर्शनों दिखावो, मोहे तुम बतावो, नानक दीन शरण आए गल लाए, आसा महला पंजवा, को बिखमगार तोरै, आस प्यास तो हो।

गुण गोविंद गावो, आंदनो प्रभति आवो, प्रम्पीत जीत मिटावो, निद नाम नानक मोरै, आसा महला पंजवा। काम क्रोध लोभ त्याग, मन सिमर गोविंद नाम, हर भजन सफल काम। रहाओ तज मान मोह विकार मिथिया, जप राम राम राम, मन संतना कै चरण लाग। प्रभ गोपाल दीन दयाल, पतत पावन पार ब्रह्म, हर चरण सिमर जाग। कर भगत नानक पूर्ण भाग, आसा महला पंजवा। हरख सोग बैराग आनंदी, खेलरी दिखायो रहाओ। खिनहु पै निरपै खिनहु, खिनहु उठतायो, खिनहु रस भोगन खिनहु, खिनहु तजायो। खिनहु जोग ताबो पूजा, खिनहु परमायो, खिनहु कृपा साधु संग, नानक हर रंग लायो। राग आसा महला पंजवा, कर सतारवा आसावरी, इको अंकार सतगुर प्रसाद। गोबिंद गोबिंद कर हां, हर हर मन प्यार हां, गुर कया सोचित धर हां, आनस्यो तोर फेर हां, ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ। पंकज मोसर हां, पग नहीं चले हर हां, गहड्यो मूड नर हां, अन ना उपाव कर हां। तौ निकसै सरन पैरी सखी, थिर थिर चित थिर हां, बन ग्रिव समसर हां, अंतर एक पिर हां, बाहर अनेक तर हां। राजन योग कर हां, कहो नानक लोग या लोगीरी सखी, आसावरी महला पंजवा। मनसा एक मान हां, गुर स्यो नेत ध्यान हां, दृढ़ संत मंत ज्ञान हां, सेवा गुर चरान हां, तो मिलिया गुर कृपान में।

तो चूकी सगल कान लैनो जिस मथान हा पै पावक पार प्राण हा निज कर तिस थान हा हर रस रसै मान हा लाथी तिस पुखान हा नानक सह समायो रे मना आसावरी महला पंजवा हर हर हर गुनीहा जपिय सह तुनिहा साधु रसन पनीहा शूटन बिद सुनिहा पाइये वडपुनी मेरे मना रहाओ खोजे जन मुनिहा सर्व का प्रभ तनिहा दुलभ कल दुनिहा दुख बिनासनी हा प्रपूर्ण आसनी मेरे मना मन सो सेविय हां अलख अपेविय हां ता स्यो प्रीत कर हां बिनस ना जाए मर हां गुरते जाने हां नानक मन मान्या मेरे मना आसावरी महला पंजवा एका ओट गहो हां गुर का शब्द कहो हां आज्ञा सत सहो हां मने निधान लहो हां सुख समाइय मेरे मना रहाओ जीवत जो मरे हां दुत्तर सो तरे हां सब की रेन होए हां निरपो कहो सोए हां मिटे अंदेसिया हां संत उपदेसिया मेरे मना जिस जन नाम सुख हां तिस निकट ना कदे दुख हां जो हर हर जस सुने हां सबको तिस मन्ने हां सफल सो आया हां नानक प्रपाया मेरे मना आसावरी महला पंजवा मिल हर जस गाइये हां परम पद पाइये हां वा रस जो बिदे हां ता को सगर सिद्धे हां अन दिन जागया हां नानक वट भागया मेरे मना रहाओ संत भगत होइए हां दुरमत खोइए हां दस रेन होए हां व्यापै दुख ना कोए हां भगता शरण पर हां जन्म ना कदे मर हां अस्त्र से भय हां हर हर जिन जप लय मेरे मना साजन मीत तू हां नाम दृढ़ाए मूहा तिस बिन नाहे कोए हां मने अराद सोए हां निमख ना विसरे हां तिस बिन क्यों सरे हां गुर को कुर्बान जाऊ हां नानक जपे नाओ मेरे मना आसावरी महला पंजवा कारण करन तू हां अवर ना सुजै मूहा करे सो होइए हां सह सुख सोइए हां धीरज मन पए हां प्रभ कै दर पए मेरे मना रहाओ साधु संग में हां पूर्ण संज में हां जब ते छुटे आप हां तब ते मिटे ताप हां कृपा धारिया हां पात्रख बनवारिया मेरे मना एहो सुख जानिए हां हर करे सो मानिया हां मंदा नाहे कोए हां संत की रेन होए हां आपे जिस रखे हां हर अमृत सो चखे मेरे मना जिसका नाहे कोए हां तिसका प्रभु सोए हां अंतर्गत बुझे हां सबके सबके शिव तिस सुजे हां पत तो उधार लेहो हां नानक अरदास एहो मेरे मना आसावरी महला पंजवा एक तुका ओए परदेसिया हां सुनत संदेसिया हां रहाओ जा स्यो रच रहे हां सब को तज गए हां सुपना ज्यो पए हां हर नाम जिन लए हर तज अन लगे हां जन मैं मर भगे हां हर हर जन लहे हां जीवत से रहे हां जिसे कृपाल होए हां नानक भगत सोए। एको अंकार सतगुर प्रसाद राग आसा महला नावा बिरथा कहो कौन स्यो मन की लोभ ग्रस्यो दसहु दिस्तावत आसा लाग्यो धन की रहाओ सुख कह हेत बहुत दुख पावत सेव करत जन जन की द्वारे द्वार स्वान ज्यो डोलत नै सुधराम भजन की मानस जन्म्या कारथ खोवत लाजना लोक हसन की नानक हर जस क्यों नहीं गावत कुमत बिना सह तन की राग आसा महला पहला अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद
उत्तर आप घट सरवरण आवै बकै न बोलै हर गुण गावै जल आकाशी सुन समावै रस सत झोल महारस पावै ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे भरपुर धार या सब ठावरे रहाओ सच व्रत नेम ना काल संतावै सतगुर शब्द करो जलावै गगन निवास समाध लगावै पारस परस परम पद पावै सच मन कारण तत् बिलोवै सुबर सरमर मैलन धोवै जय सिंह राता तै सो होवै आपे करता करे सो होवै गुर हिव शीतल अग्न बुझावै सेवा सुरत पूज चढ़ावै दर्शन आप सहज कर आवै निर्मल बाणी नाद बजावै ज्ञान अंतर ज्ञान महारस सारा तीर्थ मज्जन गुर विचारा अंतर पूजा थन मुरारा ज्योति ज्योत मिलावन हारा रस रसिया मते कै पाए तख्त निवासी पंच समाए कार कमाई खसमर जाए अवगत नाथ ना लिखिया जाए जल मैं उपजै जल ते दूर जल मैं ज्योतरिया भरपूर किस नेड़े किस आखा दूर नित गुण गावा देखा दूर अंतर बाहर अवरना को ज्योतिष पावै सोफन होए सुन पार्थर नानक कह विचार निर्मल नाम मेरा आधार आसा महला पहला सब जप सब तप सब जतराई उजड़ पर मैं राहे ना पाई बिन बूझे को थाए ना पाई नाम बिहुने माथे शाई साज धनी जग आए बिनासा छूटस प्राणी गुरमुख दासा रहाओ जग मोहे बांधा बहुती आसा गुरमति एक पय उदासा अंतर नाम कमल परगासा तिनको नाही जम की त्रासा जग त्रे जित कामन हितकारी पुत्र कलत्र लग नाम विसारी बिरथा जन्म गवाया बाजी हारी सतगुर सेवे करनी सारी बारह मैं कह कहाए अंदरों मुक्त लेप कदे न लाए माया मोह गुर सब जलाए निर्मल नाम सद हृदय त्याए तावत रखै ठाक रहाए सिख संगत कर्म मिलाए गुरबिन पूलो आवै जाए नदर करे संजोग मिलाए रूड़ो कहो ना कहया जाई या कथ कथो ने कीमत पाई सब दुख तेरे सुख रजाई सब दुख मेटे सच नाई कर बिन वाजा पग बिन ताला जे शब्द बुझै ता सच निहाला अंतर साच सबे सुख नाला नदर करे राखे रखवाला तिर भवन सूजै आप गवावै बाणी बुझै सच समावै शब्द विचारे एक लिवतारा नानक तन सवार नहारा आसा महला पहला लेख असंख लिख लिख मान मन मान्या ऐसा सुरत वखान कथनी बदनी पड़ पड़ पार लेखा संखा लेखा पार ऐसा साचा तू एको जान जमन मरना हुक्म पछाण रहाओ माया मोहे जग बादा जमकाल बंदा छूटे नाम समाल गुर सुखदाता अवर ना पाल हालत पालत निभि तुद नाल शब्द मरै ता एक लिवलाए अचर चरै ता परम चुकाए जीवन मुक्त मन ना मसाए गुरमुख होए ता सच समाए जिन तर साजी गगन आकाश जिन सब थापी थापो थाप सर्व निरंतर आपे आप किसे ना पूछे पूछे बक्से आप तू पुर सागर मानक हीर तू निर्मल सच गुणी गहीर सुख मान पेटै गुरपीर एको साहेब एक वजीर जग बंदी मुक्ते हो मारी जग ज्ञानी विरलाया चारी जग पंडित विरला विचारी बिन सतगुर पेटे सब फिर अहंकारी जग दुखिया सुखिया जन कोए जग रोगी भोगी गुण रोए जग उपजै बिन सह पत खोए गुरमुख होवै बूझै सोए महंगो मोल पारिया फार अटल छल गुरमती धार पाए मिलै पावै पैकार नानक नीच कह विचार आसा महला पहला
एक मरे पंचे मिलर होवे, हमें जाय शब्द मल धोवे, समझ सूझ सहज कर होवे, बिन पूजे सगली पथ खोवे। कौन मरे कौन रोवे ओही, करण कारण सब सहसर तो ही रहाओ। मुए कौ रोवे दुखोए, सो रोवे जिस बेदन होए, जिस बीती जाने प्रभ सोए, आपे करता करे सो होए। जीवन मरना तारे तरना, जय जगदीश परम गत सरना, हम बलिहारी सदगुरु चरना, गुर बोहिथ शब्द पै तरना, निरपो आप निरंतर ज्योत, बिन नामे सूतक जगशोत। दुर्मत बिन सै क्या कह रोत, जन मुवे बिन पग सरोत, मुवे कहो सच रोवे मीत, त्रैगुण रोवे नीता नीत। दुख सुख पर हर सहज सोचीत, तन मन सौ पौ कृष्ण प्रीत। पीतर एक अनेक असंख, कर्म धर्म बहुसंख असंख, बिन पै भक्ति जन बिरंथ, हर गुण गावे मिल परमारंथ। आप मरे मारे पी आप, आपो पाए थापो थाप, सृष्टि उपाई ज्योति तू जात, शब्द विचार मिल नहीं प्रात। सूतक अगन पखे जा खाए, सूतक जल थल सभी खाए। नानक सूतक जन्म मरी जय, गुर प्रसादी हर रस पी जय। राग आसा महला पहला, आप विचारे सो परखे हीरा, एक दृष्ट तारे गुरपुरा, गुर माने मनते मन तीरा। ऐसा सहो सराफी करे, साची नजर एक लिवतर रहाओ। पूंजी नाम निरंजन सार, निर्मल साजरता पैकार, सिमत सहज कर गुर करतार। आसा मनसा शब्द जलाए, राम नारायण कह कहाए, गुरते वाट महल कर पाए। कंचन काया ज्योता नूप, त्रिपवन देवा सगर स्वरूप, मैं सोतन पल्ले साचा खूट। पंच तीन नव चार समावे, तारण गगन कल तार रहावे, बाहर जा तो उल्ट परावे। मूर्ख होए न आखी सूजे, जेवा रस नहीं कया बूजे, बेका माता जग सो लूजे। उत्तम संगति उत्तम होवे, गुण कौतावे अवगुण धोवे, बिन गुर सेवे सहज ना होवे। हीरा नाम जिवे हर लाल, मन मोती है तिसका माल, नानक परखै नजर निहाल। आसा महला पहला, गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान, गुरमुख मैली मैल पछान, गुरमुख सुरत शब्द निशान। ऐसे प्रेम भक्ति विचारी, गुरमुख साचा नाम मुरारी रहाओ। अहनिस निर्मल थान सुथान, तीन पवन ने केवल ज्ञान। साचे गुरते हुक्म पछान, साचा हरख नाही ते सोग, अमृत ज्ञान महारस भोग। पंच समाई सुखी सब लोग, सगली जोत तेरा सब कोई, आपे जोड़ बिछोड़े सोई, आपे करता करे सो होई। टाहे ओ सारे हुक्म समावे, हुक्मे वरतै जो तिस पावै, गुर बिन पूरा कोई ना पावै। बालक बिरद ना सुरत प्राण, पर जोगन बूढ़ा अभमान। बिन नामे क्या लै सनदान, जिसका अंतन सहज न जाना, परम पुलाना फिर पछताना। गल फाही बौरा बौराना, बूढ़त जग देखिया तो डर भागे, सतगुर राखे सेवट भागे, नान गुर की चरणी लागे। आसा महला पहला।

गुरमुख राम नाम तृप्ता से खुइत पावो से हरे रहाओ। काम क्रोध मन मोह शरीरा लव लोभ अहंकार सो पीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा। अंतर नावन साच पछाण अंतर की गत गुरमुख जाने साच शब्द बिन मैल ना पछाण। निरंकार मैं आकार समावे अगल कला साई टकावे सो नर गर्भ जोन न आवे। जहां नाम मिले तै जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ। गुर सेवा ते आप पछाता अमृत नाम वस्या सुखदाता अंदर बाणी ना मेरा ता। मेरा प्रभ लाए ता को लागे हो मैं मारे सब दे जागे एथे उथे सदा सुखिया गए। मन चंचल बिद नाही जाने मन मुख मैला शब्द ना पछाने गुरमुख निर्मल नाम वखाने। हर जियो आगे करी अरदास साधु जन संगत होए निवास। केले वेख दो काटे हर नाम परगास कर बीचार आचार पराता सतगुर बचनी एको जाता नानक राम नाम मन राता। आसा महला पहला मन मैंगल सक देवाना बन खंड माया मुहे हैराना। ए त्युत जाहे काल के चापे गुरमुख खोजल है कर आपे बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा। सिमराओ राम नाम यत निर्मल अवर त्यागो हम मैं कौरा रहाओ। एहो मन मुग्ध कहो क्यों रहसी बिन समझे जमका दुख सहसी आपे बक्से सदगुर मिले काल कंटक मारे सच पेले। एहो मन कर्मा एहो मन धर्मा एहो मन पैता ते जन्मा सागत लोभी एहो मन मूड़ा गुरमुख नाम जपै मन रूड़ा। गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख त्रिभवन सोजी होई। एहो मन जोगी भोगी तपता पै गुरमुख चीने हर प्रव्या पै। मन बैरागी हो मैं त्यागी घट घट मनसा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाख दर कर महली हर पत रख। एहो मन राजा सूर संग्राम एहो मन निरपो गुरमुख नाम मारे पंच अपने वस किए हो मैं ग्रास एक तथाए किए। गुरमुख राग स्वाद्यंत त्यागे गुरमुख एहो मन भक्ति जागे अनहद सुन मान्या शब्द विचारी आत्म चीन पै निरंकारी। एहो मन निर्मल दर कर सोई गुरमुख भगत पाओ तन होई अह निस हर जस गुर प्रसाद घड़ घड़ सो प्रभ आ जुगाद। राम रसायन एहो मन माता सर्व रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दास दासा। आसा महला पहला तन बिनसै तन का को कहियै बिन गुर राम नाम कतल हैयै। राम नाम तन संग सखाई अहनस निर्मल हर लिवलाई। राम नाम बिन कवन हमारा सुख दुख समकर नाम ना छोड़ो आपे बख्श मिलावन हारा रहाओ। कनक कामनी हेत गवारा दुबदा लागे नाम विसारा जिस तू बख्शे नाम जपाए दूत ना लाग सके गुण गाए। हर गुरदाता राम गोपाला ज्यो भावे त्यो रख दयाला गुरमुख राम मेरा मन पाया रोग मिटे दुख ठाक रहाया। अवर ना औखद तंत ना मंता हर हर सिमरन किल विख हंता तू आप लावे नाम विसार तू आपे राखे कृपा तार। रोग परम भेद मन दूजा गुर बिन परम जपै जप दूजा आद पुरख गुर दर्शना देखै विण गुर शब्द जन्म के लेखै देख अचरज रहे बिस्माद घट घट सुर नर सहि समाद। भरपुर तार रहे मन माही तुम संसार अवर को नाही जाकी भक्त हित मुख नाम संत भगत की संगत राम। बंधन तोरे सहि त्यान छूटै गुरमुखार गुर ज्ञान ना जम दूत दुख तिस लागे जो जन राम नाम लिव जागे। भगत वचल भगता हर संग नानक मुक्त पै हर रंग आसा महला पहला एक तुगी। गुर सेवे सो ठाकर जान दुख मिटे सच शब्द पछाने। राम जपो मेरी सखी सखैनी सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी रहाओ। बंधन मात पिता संसार बंधन सुत कन्या अरनार
बंधन कर्म धर्म हो किया। बंधन पोतो कलत मन बिया, बंधन किरखी करे किरसान। हो मैं डन सह राजा मंगे दान। बंधन सबदा अन विचारी, तिप्त नाही माया मोह पसारी। बंधन शासन चैतन जाए, बिन हर भगत न पवी थाए। बंधन भेदबाद अहंकार, बंधन बिन सह मोह विकार। नानक राम नाम शरणाई, सतगुरु राखे बंधना पाई। राग आसा महला पहला, अष्टपदियां करती जा एको ओंकार। सतगुर प्रसाद जिन सिर सोहन पट्टियां, मांगी पाए संदूर। से सरकाती मुनियां, गल विच आवै धूड़। महलां अंदर होंदियां, हुण बहन ना मिलन हदूर। आदेश बाबा आदेश, आद पुरख तेरा अंत ना पाया। कर कर देखै वेस रहाओ। जदो सियां वी आहियां, लाड़े सोहन पास। ही डोली चढ़ आईया, दंद खंड कीते रास। उपरो पानी वारी है, चले चिमकन पास। एक लख लहन बैठिया, लख लहन खड़िया। गरी शोहारे खांदिया, मान से जड़िया। तीन गल सिलका पाईया, तुटन मोसरिया। तन जो बंदो वैरी होए, जिनी रखे रंग लाए। दूता नो फरमाया, ले चले पत गवाए। जे तिस पावे दे वड्याई, जे पावे दे सजाए। अगों दे जे चेती है, तां कायत मिले सजाए। साहा सुरत सवाई गवाईया, रंग तमा सह चाहे। बाबर वाणी फिर गई, कोयर ना रोटी खाए। इक ना वक्त खुवाई है, इक ना पूजा जाए। चौके बिन हिंदवाणिया, क्यों टिके कड़े नाए। राम न कबहू चेते, हुण कहण न मिले खुदाए। एक घर आवे अपने, एक मिल मिल पुछे सुख। एक ना एहो लिखिया, बैबै रोवे दुख। जो तिस पावे सोथी है, नानक क्या मानुख। आसा महला पहला, कहां सो खेल तबेला कोड़े। कहां पेरी सहनाई, कहां सो तेग बंद गा ढेरड़। कहां सो लाल कवाई, कहां सो आरसिया मोबंके। ऐथे दिसै नाही, एहो जग तेरा तू गोसाई। एक कड़ी मैं थापो थापे, जर वंड देवे पाई रहाओ। कहां सो करदार मंडो मेला, कहां सो बंकसराई। कहां सो सेज सुखाली कामण, जिस वेख नींद ना पाई। कहां सो पान तंबोली हर मां, होया शाही माई। इस जर कारण कणी मगुती, इन जर कणी खुवाई। पापा बाजो होवे नाही, मुया साथ ना जाई। जिसनो आप खुवाए करता, खुसले चंग्याई। कोटी हूं पीर वर्ज रहाए, जा मीर सुनिया ताया। थान मुकाम जले बिज मंदर, मुछ मुछ कोयर रुलाया। कोई मुगल ना होवा अंधा, किने ना परचा लाया। मुगल पठाना पई लड़ाई, रण में तेग बगाई। ओनी तुपकतान चलाई, ओनी हस चढ़ाई। जिनकी चीरी दरगह फाटी, तिन्ना मरना पाई। एक हिंदवाणी अवर तुरकाणी, पटियाणी ठकराणी। एक ना पेरन सिर खुर पाटे, एक ना वस मसाणी। जिनके बंके करी ना आया, तिन क्यों रैण विहानी। आपे करे कराए करता, किसनो आख सुनाई है। दुख सुख तेरा पाना होवे, किसथे जाई रुवाई है। हुक्मी हुक्म चलाए विकसै, नानक लिखिया पाई है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा काफी महला पहला। कर अठवां अष्टपदिया, जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा। कूड़ कमावे आदमी, बंद है कर बारा। जागो जागो सूते हो, चले अवन जारा रहाओ। नीत नीत कर बांधी है।

मामूल है। तू उत्तम हो नीच सेव कांडिया, नानक नदर करे हो मिले सचवांडिया। आसा महला पहला, आवन जाना क्यों रह क्यों मेला होई, जन मरण का दुखण निसै साधोई। बिन नामे क्या जीवना फिट त्रिग चतराई, सतगुर साधना सेवया हर भगतना पाई रहाओ। आवन जावन तौर है पाइये गुरपूरा, राम नाम तन रास दे बिन सह परम पूरा। संत जना को मिल रह तन तन जस गाए, आद पुरख परंपरा गुरमुख हर पाए। नटुए संग बनाया बाजी संसारा, खिन पल बाजी देखिए उजरत नहीं बारा। हम मैं चौपड़ खेलना झूठे अहंकारा, सब जग हारे सोजना गुरशब्द विचारा। ज्यो अंदले हथ टोहनी हर नाम हमारे, राम नाम हर टेक है निस दौत सवार। ज्यो तू राखे त्यों रहा हर नाम अधारा, अंत सखाई पाया जन्म द्वारा। जन्म मरण दुख मिटिया जप नाम मुरारे, नानक नाम ना विसरे पूरा गुरतारे। आसा महला तीजा, अष्टपदियां कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सास्त वेद सिमरत सर तेरा, सुरसरी चरण समाणी। साखा तीन मूल मत रावे तू ता सर्वडाणी। ताके चरण जपै जन नानक बोले अमृत बाणी। रहाओ तेतीस करोड़ी दास तुम्हारे, रिद सिद्ध प्राण आधारी। ताके रूप ना जाही लखणे क्या करे आख विचारी। तीन गुणा तेरे जुग ही अंतर, चारे तेरिया खानी। कर्म हुए ता परम पद पाई है कथे कथ कहानी। तू करता किया सब तेरा, क्या को करे प्राणी। जा को नजर करे तू अपनी साई साई समाणी। नाम तेरा सब कोई लेत है, जेती आवन जानी। जा तुद पावे ता गुरमुख बूजे, होर मनमुख फिरे ए आनी। चारे वेद ब्रह्मे कह दिए पड़ पड़ करे विचारी। ताका हुक्म न बूजे बप्पड़ा, नरक सुरग अवतारी। जुगे जुगे के राजे किए गावे करे अवतारी। तिन पी अंत न पाया ताका क्या करे आख विचारी। तू सच्चा तेरा किया सब साचा, देह ता सच वखाणी। जा कहो सच बुझावे।

मेले मिलन हार नानक आखने आखी है जे सुन तरे प्या। आसा महला तीजा सतगुर ते गुणी उपजै जा प्रभ मिलै सोए सहजे नाम त्याई है ज्ञान प्रगट होए। ए मन मत जाने हर दूर है सदा वेख हदूर सद सुनदा सद वेखदा शब्द रहा भरपूर रहाओ गुरमुख आ पछाणिया तिन्नी एक मन त्याया सदा रवै पिर अपना सच्चे नाम सुख पाया। ए मन तेरा को नहीं कर वेख शब्द विचार हर सरनाई भज पाओ पाए मुख द्वार। शब्द सुनिए शब्द बुझिए सच रह लिवलाए शब्द हमें मारिए सच

पेटियो पूरा सतगुरु साचा प्रभ स्यो ने साध तेरे की जाचना विसरना सास गिरास जो तुद पावै सो भला तेरे पाने कारज रास सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ भेटे परमानंद आसा महला पंजवा बिरहड़े कर चौथा शंता की जात एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पार ब्रह्म प्रभ सिमरिए प्यारे दर्शन को बल जाओ जिस सिमरत सुख जिस सिमरत दुख भी सरै प्यारे सो क्यों तजना जाए एहो तन वेची संत पै प्यारे प्रीतम दे मिलाए सुख सिंगार बिख्या के फीके ता छोड़े मेरी माए काम क्रोध लोभ तज गए प्यारे सतगुर चरणी पाए जो जन राते राम

दोष कर्मा अपनिया जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर जना। तदै तार कला।

गुर शरणाए बाणी राम नाम सुनी सिद्ध कार्य सब सुहाए राम रोमे रोम रोम रोमे मैं गुरमुख राम ते आए राम राम नाम ते आए पवित होए आए तिस रूप ना रेख्या काई रामो राम रव्या कट अंतर सब तृष्णा भूख गवाई मन तन शीतल सिंगार सब होवा गुरमत राम प्रगासा नानक आप अनुग्रह किया हम दासन दासन दासा जिनी रामो राम नाम विसारिया से मन मुख मूड़िया भागी राम तिन अंतरे मोह व्यापै खिन खिन माया लागी राम माया मल लागी मूड़ भया भागी जिन राम नाम नहीं पाया अनेक कर्म करे अभिमानी हर रामो नाम चुराया महाबिखम जम पंथ दुहेला कालूखत मोह अंधियारा नानक गुरमुख नाम ते आया ता पाए मोख द्वारा रामो राम नाम गुरु राम गुरमुखे जाने राम एहो मनु आखिन उपयाली भरम दा इकत कर आणै राम मन इकत कर आणै सब गत मित जाणै हर रामो नाम रसाए जन की पैज रखै राम नामा प्रहलाद उधार तराए रामो राम रमो रमूचा गुण कहते अंत ना पाया नानक राम नाम सुन पीने रामे नाम समाया जिन अंतरे राम नाम वसै तिन चिंता सब गवाया राम सब अर्था सब धर्म मिले मन चिंदिया सो फल पाया राम मन चिंदिया फल पाया राम नाम ते आया राम नाम गुण गाए दुरमत कबुद गई सुध होई राम नाम मन लाए सफल जन्म शरीर सब होआ जित राम नाम प्रगासिया नानक हर पज सदा दिन राती गुरमुख निज करवासिया जिन सरदा राम नाम लगी तिन दूजे चित ना लाया राम जे धरती सब कंचन कर दी जै बिना मैं अवर ना पाया राम राम नाम मन पाया परम सुख पाया अंत चलदियां नाल सखाई राम नाम तन पूंजी संची ना डूबे ना जाई राम नाम इस जुग मैं तुल्हा जमकाल लेण ना आवै नानक गुरमुख राम पिछाता कर कृपा आप मिलावै रामो राम नाम सत्ते सत गुरमुख जानिया राम सेव को गुरसेवा लागा जिन मन तन अर्प चढ़ाया राम मन तन अर्पया बहुत मन सर दिया गुरसेवक पाए मिलाए दीनानाथ जिया का दाता पूरे गुरते पाए गुरु सिख सिख गुरु है एको गुर उपदेश चलाए राम नाम मंत हिरदय देवे नानक मिलन सुभाए एको ओंकार सतगुर प्रसाद आसा संत महला चौथा कर दूजा हर हर करता दुख बिनासन पतत पावन हर नाम जियो हर सेवा पाई परम गत पाई हरि उत्तम हर हर काम जियो हरि उत्तम काम जपिए हर नाम हर जपिए अस्थिर होवै जन्म मरण दोवै दुख मेटे सहजही सुख सोवै हर हर कृपा तारो ठाकरो हर जपिए आत्म राम जियो हर हर करता दुख बिनासन पतत पावन हर नाम जियो हर नाम पदार्थ कल जग उत्तम हर जपिए सतगुर पाए जियो गुरमुख हर पढ़िए गुरमुख हर सुनिए हर जपत सुनत दुख जाए जियो हर हर नाम जपया दुख बिनसिया हर नाम परम सुख पाया सतगुर ज्ञान बलिया कट चानन अज्ञान अंधेर गवाया हर हर नाम तिन्नी आराध्या जन्मस्तक तुर लिख पाए जियो हर नाम पदार्थ कल जग उत्तम हर जपिए सतगुर पाए जियो हर हर मन पाया परम सुख पाया हर लाहा पल निर्वाण जियो हर प्रीत लगाई हर नाम सखाई भ्रम चूका आवन जान जियो आवन जाना भ्रम पौ पागा हर हर हर गुण गाया जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे हर हर नाम समाया जिन हर त्याया तुर भाग लिख पाया तिन सफल जन्म प्रवान जियो हर हर मन पाया परम सुख पाया।

एको ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा शंत कर चौथा हर अमृत पिने लोयना मन प्रेम रतना राम राजे मन राम कसवटी लाया कंचन सोविना गुरमुख रंग चलूलिया मेरा मन तनो पिना जन नानक मुस्क चकोलिया सब जन्म तन तन्ना हर प्रेम बाणी मन मारिया अणिया ले अणिया राम राजे जिस लागी पीर पिरम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखिए मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हार जगद तर तरिया हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपुरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासिया जब अंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सतसंगा दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभर राया राम राजे हाउ मांगाऊ शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वचल हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम तराया आसा महला चौथा गुरमुख टूंड टूंडेंदिया हर सज्जन लदा राम राजे कंचन काया कोट गढ़ विच हर हर सिद्धा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विद्धा तुरभाग वड्डे हर पाया नानक रस गुद्धा पंथ दसावा नित खड़ी मंद जोबन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चाली मेरा मन तन नाम आधार है हौ मैं बिख जाली जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलिया बनवाली गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिरी विशुन्ने राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पिने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मन्ने हौ मूर्ख कारे लाइया नानक हर कमे गुर अमृत पिनी देहुरी अमृत बुर के राम राजे जिन्ना गुरबाणी मन पाईया अमृत शक शके गुर तुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इके आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे गुर सतगुर सच्चा शाहो है सिख दे हर रासे तन तन वन जारा वन जहै गुर शाहो साबासे जन नानक गुर तिन्नी पाया जिन तुर लिखत लिलाट लिखासे सच शाहो हमारा तू तनी सब जगत वन जारा राम राजे सब भांड तुद साजया विच वस्त हर थारा जो पावे भांडे विच वस्त सा निकले क्या कोई करे विचारा जन नानक हर बख्सिया हर भगत भंडारा हम क्या गुण तेरे विथरा स्वामी तू अपरे अपारो राम राजे हर नाम सलाह है दिन रात एहा आस आधारो हम मूर्ख किशु ना जानहा क्यों पावे पारो जन नानक हर का दास है हर दास बनिहारो ज्यो पावे त्यों राख लै हम शरण प्रभ आए राम राजे हम पूल विगाड़े दिन सरात हर लाज रखाए हम बारक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए आसा महला चौथा जिन मस्तक तोर हर लिखिया तिन्ना सतगुर मिलिया राम राजे अज्ञाना देरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हर लद्दार तन पदार्थो फिर बहुना चलिया जन नानक नाम आरा दिया आराधार मिलिया जिनी ऐसा हर नाम ना चेत्यो से काहे जगे आए राम राजे एहो मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरथा सब जाए हुन वत्ते हर नाम ना बीजियो अगै भुखा क्या खाए मन मुखा नो फिर जन्म है नानक हर पाए तू हर तेरा सब को सब तो दियो पाए राम राजे किश हाथ किसै दे किश नाही सब चले चलाए जिन तू मिल है प्यारे से तुद मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुर भेटिया।

क्या कीजै, हर करता सब किश जानदा, सिर रोग हथ दीजै, जिन्ना नानक गुरमुख हिरदा सुध है, हर भगत हर लीजै, आसा महला चौथा, जिन अंतर हर हर प्रीत है, ते जन सुगण सियाणे राम राजे, जे बारों पुल चुक बोल दे, पी खरे हर पाणे, हर संतानो होर थाओ नाही, हर मान निमाणे, जन नानक नाम दीबान है, हर तान सताने, जिथे जाए बह मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे, गुरसिखी सो थान पालिया, लै तूर मुख लावा, गुरसिखा की काल थाए पई, जिन हर नाम त्यावा, जिन नानक सतगुर पूजया, तिन हर पूज करावा, गुरसिखा मन हर प्रीत है, हर नाम हर तेरी राम राजे, कर सेवै पूरा सतगुरु, भुख जाए लह मेरी, गुरसिखा की भुख सब गई, तिन पिछे हुर खाए कन्हेरी, जन नानक हर पुन बीजया, फिर तोट ना आवै हर पुन केरी, गुरसिखा मन वाधाइया, जिन मेरा सतगुर डिठा राम राजे, गुरसिखा मन वाधाइया, जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजे, कोई कर गल सुनावै हर नाम की, सो लगै गुरसिखा मन मिठा, हर दर गै गुरसिख पै नाई है, जिन्ना मेरा सतगुर तुठा, जन नानक हर हर होया, हर हर मन बुठा, आसा महला चौथा, जिन्ना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु, तिन हर नाम दृढ़ावै राम राजे, तिसकी तृष्णा भुख सब उतरै, जो हर नाम ते आवै, जो हर हर नाम ते आए दे, तिन जम नेण न आवै, जन नानक हर कृपा कर, नित जपै हर नाम तरावै, जिनी गुरमुख नाम ते आया, तिन्ना फिर बिघन न होई राम राजे, जिनी सतगुर पुरख मनाया, तिन पूजे सब कोई, जिनी सतगुर प्यारा सेवया, तिन्ना सुख सद होई, जिन्ना नानक सतगुर पेटिया, तिन्ना मिलिया हर सोई, जिन्ना अंतर गुरमुख प्रीत है, तिन हर रखण हारा राम राजे, तिन की निंदा कोई क्या करे, जिन हर नाम प्यारा, जिन हर सेती मन मानिया, सब दुष्ट चख मारा, जन नानक नाम ते आया, हर रखण हारा, हर जुग जो भगतो पाया, पैज रखदा आया राम राजे, हर नाक्ष दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया, अहंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम देओ मुख लाया, जन नानक ऐसा हर सेविया, अंत लए छडाया, आसा महला चौथा, शंत कर पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरे मन परदेसी वे

कतहु ना तावो शरण पावो करना मैं प्रभ करमया। सम्राथ अगाथ अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो, कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार लेहो। अपराधी मतहीन निर्गुणा नाथ नीच, साठ कठोर कुलहीन व्याप्त मोह कीच, मल भरम कर्म अहं ममता मरण चीत ना आवै, बंता विनोद आनंद माया ज्ञान ता लपटावै। खिसै जोबन बदै जरुआ दिन हारे संग मीच, बिनवंत नानक आस तेरी शरण साधु राख नीच। परमे जन्म अनेक संकट महाजोन, लपट रहयो तहे संग मीठे भोग सोन। भ्रमत पार अगांत आयो बहु परदेसै तायो, आवे ओढ़ धारी प्रमरारी सर्व सुख हरनायो। राखन हारे प्रभु प्यारे मुइते कछु ना होवा हो ना, सुख सहजानंद नानक कृपा तेरी तरै पौन। नाम तारी को धारे भगत संसा कौन, जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण। सुन श्रवण बाणी पुरख ज्ञानी मन निधाना पावहे, हर रंग राते प्रभ दाते राम के गुण गावहे। बसद गागद बन राज कलमा लिखण कौ जय होए पवन, बेअंत अंत न जाए पाया गही नानक चरण सरण। आसा महला पंजवा पुरख पते भगवान, ताकी शरण गही निरपो पे प्राण चिंता सगल लही। मात पिता सुत मीत सुरजन इष्टबंध पजाणिया, गह कंठ लाया गुर मिलाया जस बिमल संत बखाणिया। बेअंत गुणिया नेक महिमा कीमत कछु ना जाए कही, प्रभ एक अनक अलख ठाकर ओट नानक तिस गही। अमृत बन संसार सहाई या पय राम नाम उरहार, बिहके दिवस गए। गत परम मोह बेकार बिनसे जोने आवन सब रहे, अग्न सागर पय शीतल साध अंचल गए रहे। गोविंद गोपाल दयाल सम्राथ बोल साधु हर जय जय। नानक नाम ते आए पूर्ण साध संग पाई परम गते, जय देखो ते संग एको रव रहया, घट घट वासी आप गर लैकने लहया। जल थल महियल पूर पूर्ण कीट हस्त समानिया, आद अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया। ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुणनिध जन कहया, सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहया। दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे, चरण कमल संग प्रीत करमल पाप टरे। दुख भूख दर दर नाठे प्रगट मग दिखाया, मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया। हर देख दर्शन इच पुन्नी कुल संभूहा सब तरे, दिन सरैण आनंद अंदन सिमरंत नानक हर हरे। आसा महला पंजवा शंत कर सतवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। शुभ चिंतन गोबिंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक कड़ी कर कृपा भगवंत शंत। पिनी रैनड़िए चमकन तारे जागे संत जना, मेरे राम प्यारे राम प्यारे सदा जागे, नाम सिमरै आंदेनो चरण कमल ध्यान हिरदय प्रभ बिसर नाही एक खेनो। तज मान मोह बेकार मन का कलमला दुख जारे, बिनवंत नानक सदा जागे हरदास संत प्यारे। मेरी सेजड़िए आडंबर बनिया मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया। प्रभ मिले स्वामी सुखै गामी चाव मंगल रस परे, अंग संग लागे दुख भागे प्राण मंत्र सब हरे। मन इच्छ पाई प्रभ ते आई संजोग साहा शुभ गणिया, बिनवंत नानक मिले श्री धर सगल आनंद रस बनिया। मिल सखिया पुछे कौ कंतनी साणी, रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी।
गुण गूढ़ गुप्त अपार करते निगम अंत ना पावहे, भगत पाए त्याए स्वामी सदा हर गुण गावहे। सगल गुण सुग्यान पूर्ण अपने प्रपाणी, बिरवंत नानक रंग राती प्रेम सही सुमाणी। सुख सोहिलड़े हर गावन लागे, साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन भागे। सुख सहज सरसे हर नाम रहसे, प्रव्याप कृपा तहारिया। हर चरण लागे सदा जागे, मिले प्रभ बनवारिया। शुभ दिवस आए सहज पाए, सगल नित प्रभ पागे। बिनवंत नानक शरण स्वामी सदा हर जन तागे। आसा महला पंजवा, उठ मंज वटाउड़िया तैं क्या चिर लाया, मोहलत पुनड़िया कित कूल लवाया।

माल जोबन छोड़ वैसी रहो पैनन खाया, नानक कमाणा संग जुलिया। नह जाए किरत मिटाया, फाथो मिर्ग जिवै पेख रहन चंद्रायण। सुखो दुख पए नित पाप कमायण, पापा कमाने छड़े नाही लै चले कत गलावया। हर चंदौरी देख मूठा, कूड़ से जा रावया। लब लोभ अहंकार माता, गर भया समायण। नानक मिर्ग अग्ञान बिनसे न मिटै अवन जायण। मिठै मख मवा क्यों लय उडारी, हस्ती गर्त पया क्यों तरिया तारी। तरन दुहेला पया खिन मैं, खसम चेतना आयो। दुखा सजाई गणत नाही, किया अपना पायो। गुजा कमाणा प्रगट होवा, ईत उतै खुआरी। नानक सतगुर बाज मूठा, मन मुखो अहंकारी। हर के दास जीवे, लग प्रभ की चरणी। कंठ लगाए लिए ते ठाकर सरणी। बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना, आप नाम जपाया। सा संगत आप होवाया, आप जग तराया। राख लिए रखण हारे, सदा निर्मल करणी। नानक नरक न जाहे कबहू, हर संत हर की सरणी। आसा महला पंजवा, वंज मेरे आलसा हर पास बेनंती। रावो सवा परणा, प्रभ संग सोहंती। संगे सोहंती कंत स्वामी, दिन सरैणी रावी है। सा साच तार जीवा, प्रपेख हर गुण गावी है। बिरहा लिजाया दर्श पाया, आम्यो दृष्ट सिंचंती। बिनवंत नानक मेरी इच्छ पुन्नी, मिले जिस खोजंती।

को निर्जास। वस्तु अंदर वस समावै, दूजी होवै पास। साहिब सेती हुक्म ना चलै, कही बने अरदास। कूड़ कमाणे कूड़ो होवै, नानक सिफत विगास।

आना करे कम आण ना सकै रास, जे एक अद चंगी करे दूजी पीवे रास। पौड़ी चाकर लगै चाकरी जे चलै खसमै पाए, हुरमत तिसनो अगली ओ वजो पे दूना खाए। खसमै करे बराबरी फिर गैर ते अंदर पाए, वजो गवाए अगला मोहे मोहे पाणा खाए। जिस दा दिता खावना तिस कही ऐसा वास, नानक हुक्म ना चलई नाल खसम चलै अरदास। श्लोक महला दूजा।

नानक सेवक कांडी है जे सेती खसम समाए पौड़ी नानके अंत न जापनी हर ताके पारा वार आप कराए साखती फिर आप कराए मार। एक ना गली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिसियार आप कराए करे आप हों कैस्यों करी पुकार नानक करना जिन किया।

दो तो के एक ओंकार सदगुर प्रसाद आसा श्री कबीर जियो के चौपदे एक तो के सनक सनंद अंत

आओ तन कर मटकी मन माहे बिलोई, इस मटकी में शब्द संजोई। हर का बिलोवना मन का बिचारा, गुर प्रसाद पावे अमृत धारा। कहो कबीर नजर करे जे मीरा, राम नाम लग उतरे तीरा। आसा बाती सूकी तेल निखूटा, मंदल ना बाजै नट पै सूता। बुझ गई अगन नानक सो धुआं, रव रहया एक अवर नहीं दुआ। रहाओ टूटी तंत ना बजै रबाब, भूल बिगाड़ो अपना काज। कथनी बदनी कहन कहावन, समझ परी तो बिसरियो गावन। कहत कबीर पंच जो चूरे, तिनते नाहीं परम पद दूरे। आसा सुत अपरा

जे अत क्रोभ करे कर ताया ता पी चीत न राख समाया चिंत पवन मन परयो हमारा नाम बिना कैसे उतर सपारा देह बिमल मत सदा शरीरा सहज सहज गुण रवै कबीरा आसा हज हमारी गोमती तीर जहां बसै पीतंबर पीर वाहो वाहो क्या खूब गावता है हर का नाम मेरे मन पावता है रहाओ नारद सारद करै खवासी पास बैठी बीबी कबला दासी कंठे माला जेवा राम सहंस नाम लै लै करो सलाम कहत कबीर राम गुण गावो हिंदू तुर्क दो समझावो आसा श्री कबीर जियो के पंच पदे नौ दो तुके पंज एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाती तोरे मालनी पाती पाती जियो जिस पाहन कौ पाती तोरे सो पाहन निर्जियो पूली मालनी है ओ सतगुर जागता है दे ओ रहाओ ब्रह्म पाती बिसंडारी फूल शंकर दे ओ तीन देव प्रतख तोरे करे किसकी से ओ पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी दे कै छाती पाओ जे एह मूर्त साची है तो गण नहारे खाओ पात पहत अर लापसी कर करा का सार भोग नहारे भोगया इस मूर्त के मुखशार मालन पुली जग पुलाना हम पुलाने नाहे कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर हर राय आसा बारह बरस बालपन बीते बीस बरस कछ तप ना कियो तीस बरस कछ देवन पूजा फिर पछताना बिरद पयो मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर सोख भुजंग बलियो रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे लूणे खेत हथ वार करे आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी राखत मुक्त फिरे चरण शीस कर कंपन लागे नैनी नीरिया सार बह जेहवा बचन शुद्ध नहीं निकसै तबरे धर्म की आस करे हर जियो कृपा करे लिव लावे लाहा हर हर नाम लियो गुर प्रसादी हर तन पायो अंते चलद्या नाल चलियो कहत कबीर सुनो रे संतो अंतन कछुए लै ना गयो आई तरब गोपाल राय की माया मंदिर छोड़ चलियो आसा काहू दीने पाट पटंबर काहू पलंग निवारा काहू गरी गोदरी नाही काहू खान परारा अहे रखवाद ना कीजै रे मन सो किरत कर कर

तारा राम राय सो दूलो पायो अस बड़ भाग हमारा। सोर नार मुन जन कौत के आए कोड़ ते तीसो जाना, कह कबीर मोए ब्याह चले है पुरख एक भगवाना। आसा सास की दुखी ससर की प्यारी, जेठ के नाम डराओ रे सखी सहेली ननद गहेली, देवर कै ब्रह जराओ रे। मेरी मत बौरी मैं राम बिसारे ओ, किन बिद रहन रहो रे। सेजा रम तो नैन नहीं पेखो, एहो दुख कासो कहो रे रहाओ। बाप साहब का करै लड़ाई, माया सदमतवारी, बड़े भाई कै जब संग होती तबो ना प्यारी। कहत कबीर पंच को झगरा, जगत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधया, मैं राम रमत सुख पाया। आसा हम कर सूत तने नित ताना, कंठ जने तुम्हारे, तुम तो वेद पढ़ो गायत्री गोविंद हृदय हमारे। मेरी जेहबा बिसन नारायण, हृदय बसै गोविंदा, जम द्वार जब पूस बवरे तब क्या कैस मुकंदा रहाओ। हम गोरु तुम ग्वार गुसाई, जन्म जन्म रखवारे, कबहू ना पारो तार चरायो कैसे खसम हमारे। तू बामन मैं का सीत जुल्हा, बूजो मोर ज्ञाना, तुम तो जाचे भूपत राजे हर सौ मोर त्याना। आसा जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समान, साच कर हम गांठ दीनी छोड़ परम निधान। बाबा माया मोह हित कीन, जिन ज्ञान रतन हरलीन रहाओ। नैन देख पतंग उर्जै पास ना देख आग, काल फासना मुग्ध चेतै कनक कामन लाग। कर विचार बिकार पर हर तरन तारन सोए, कह कबीर जग जीवन ऐसा दुती नाही कोए। आसा जो मैं रूप किए बहु तेरे, अब फुन रूप ना होई, तागा तंत साज सब थाका राम नाम बस होई।

तृष्णा गागर फूटी, काम चोलना पया है पुराना, गया परम सब छूटी। सर्वभूत एक कर जानिया, चूके बाद बिबादा, कह कबीर मैं पूरा पाया, पहे राम प्रसादा। आसा रोजा तरह मनावे अल्लाह, स्वादत जी संघार है, आपा देख अवर नहीं देखे, काहे को चख मार है। काजी साहेब एक तो ही मैं तेरा, सोच विचार ना देखे, खबर ना करे दीन के बौरे, ताते जन्मया लेखे रहाओ। साजक ते बखाने अल्लाह।

पहल हो बिचारी, हिंदू तुर्क दुहू मह एक कह कबीर पुकारी, आसा ते पदा एक तुगा।

या आराम बड़े मैं तनक लहोरिया रहाओ। तन पर एकै संग बसेरा, सेज एक पै मिलन दुहेरा। तन सुहागन जो पी पावै, कह कबीर फिर जन्म न आवै। आसा श्री कबीर जियो के दो पदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हीरा हीरा बेद पवन मन, सहजे रहा समाई। सगल जोत इन हीरे बेदी, सतगुर बचनी मैं पाई। हर की कथा अनाहत बानी, हंस होए हीरा ले पछानी रहाओ। कहे कबीर हीरा अस देखियो, जग में रहा समाई। गुप्ता हीरा प्रगट पायो, जब गुरगम दिया दिखाई। आसा पहली क्रूप कुजात को लखनी, साहुरे पे ये बुरी। अब की स्वरूप सुजान सुलखनी, सहजे उदर तरी। पली सरी मुई मेरी पहली बरी, जुग जुग जीवाओ मेरी अब की तरी रहाओ। कहो कबीर जब लहरी आई, बड़ी का सुहाग टर्यो। लहरी संग पहिया मेरा, जेठी और तर्यो। आसा मेरी बहुरिया को तनिया नाओ, ले रखियो राम जनिया नाओ। इन मुंडिया न मेरा घर तुंदरावा, बिटवे राम रमऊआ लावा रहाओ। कहत कबीर सुनो मेरी माई, इन मुंडियन मेरी जात गवाई। आसा रहो रहोरी बहुरिया, कुंगट जिन काडे, अंत की बार लहेगी ना आडे रहाओ। कुंगट कांड गई तेरी आगे, उनकी गैल तुहे जन लागे। कुंगट काडे की यह बड़ाई, दिन दस पांच बहु पले आई। कुंगट तेरो तो पर साचे, हर गुण गाए कूदे अर नाचे। कहत कबीर बहु तब जीते, हर गुण गावत जन्म बतीते। आसा

जो तन चीरा अंग न मोरो, पिंड परे तो प्रीत न तोरो, हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुम्हें सो कंत नार हम सोई। कहत कबीर सुनो रे लोई, अब तुमरी प्रतीत न हुई आसा। कोरी को कहूं मर्म न जाना, सब जग आनत ना होता ना रहाओ। जब तुम सुन ले वेद पुराना, तब हम इतनक पसरे ताना। तरने आकाश की कर गए बनाई, चंद सूरज दो साथ चलाई। पाई जोर बात एक कीनी, तै तांती मन माना, जो लाहे कर अपना चीना, कट ही राम पिछाना। कहत कबीर कार गह तोरी, सुते सुत मिलाए कोरी आसा। अंतर मैल जे तीर्थ नावे, तिस बैकुंठ ना जाना। लोक पतीने कछु ना होवे, ना ही राम एना। पूजो राम एक ही देवा, साचा नावन गुर की सेवा रहाओ। जल कै मज्जन जे गत होवे, नित नित मेंढक नावे। जैसे मेंढक तैसे ओए नर, फिर जो नी आवे। मनो कठोर मरै बानारस, नरक ना बांचिया जाई। हर का संत मरै हाड़म्बे, ता सगली सैन तराई। दिन सनारैन वेद नहीं शास्त्र, तहां बसै निरंकारा। कह कबीर नरत सहते आवो, बावरिया संसारा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा बाणी श्री नाम देव जी की। एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखो तत सोई। माया चित्र विचित्र बिमोहत, बिरला बूझै कोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत सहंस, जैसे ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग अरफेन बुदबुदा, जल ते भिन्न ना होई। एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन ना होई। मिथ्या भरम अर सुपन मनोरथ, सत पदार्थ जानिया। सुकृत मनसा गुरु उपदेसी, जागत ही मन मानिया। कहत नाम देव हर की रचना, देखो हृदय विचारी। घट घट अंतर सर्व निरंतर, केवल एक मुरारी। आसा आनी ले कुंभ, भराई ले उदक। ठाकर कौ स्नान करो, बयालीस लख जी जल मैं होते। बीठर पहला काय कराओ।

आनीले दूध रिदाईले खीरंग। ठाकर कौ नैवेद करो, पहले दूध बिटारियो बछरा है, बीठल पहला काय कराओ। इबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थांथन अंतर नामा प्रणवै, पूर रहो तू सर्व मही। आसा मन मेरो गज, जेहबा मेरी काती, मप मप काटो जम की फासी। कहा करो जाति, कह करो पाती, राम को नाम जपो दिन राती रहाओ। रंग नरंगो सीमन सीवो, राम नाम बिन करी ना जीवो, भगत करो हर के गुण गावो, आठ पहर अपना खसम ते आवो। सोने की सोई रुपए का तागा, नामे का चित हर सो लागा। आसा साप कुंच छोड़ बिख नहीं छाड़, उदक माहे जैसे बग ध्यान मांड। काहे कौ की जय ध्यान जप।

गुरु उपदेश पहला संतां कै प्रसाद नामा हर पेटला आसा बाणी श्री रविदास जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद मृग मीन परिंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश पंच दोखिया साध जा मैं ताकी केत कयास माधो अविद्या हितकीन विवेक दीप मलीन रहाओ त्रिगत जोन अचेत संभव पुन पाप्या सोच मानुखा अवतार दुर्लभ तिही संगत पोच जी जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाए काल फासा बद लागे कछ ना चलाए उपाय हर अवदास दास उदास तज ब्रह्म तपन तप गुर ज्ञान भगत जन पै हरन परमानंद करो निदान आसा संत तुझी तन संगत प्राण सतगुर ज्ञान जान है संत देवा देव संत ची संगत संत कथा रस संत प्रेम माजै दीजै देवा देव रहाओ संत आचरण संत चो मार्ग संत च ओलग ओलगणी और एक मांगो भगत चिंता मन जनी लिखावो असंत पापी सन रविदास भणे जो जाने सो जान संता नंता यंत्र नाही आसा तुम चंदन हम एरंड बापरे संग तुम्हारे बासा नीच रूख ते ऊच पय है गंध सुगंध निवासा माधव सतसंगत शरण तुम्हारी हम अवगुण तुम उपकारी रहाओ तुम मुखतूल सुपेद सुपियल हम बपरे जस कीरा सतसंगत मिल रही है माधव जैसे मदप मखीरा जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमारा राजा राम की सेवना कीनी कह रविदास चमारा आसा कहा पयो जव तन पयो छिन छन प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन तुझे चरण अरबिंद पवन मन पान करत पायो पायो रामैया तन रहाओ संपत विपत पटल माया तन ता मैं मगन होतना तेरो जन प्रेम की जेवरी बांध्यो तेरो जन कह रविदास शूट बो कमन गुण आसा हर हर हर हर हर हर हरे हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ हर के नाम कबीरो जागर जन्म जन्म के काटे कागर निमत नाम देव दूध पी आया तव जग जन्म संकट नहीं आया जन रविदास राम रंग राता इउं गुर प्रसाद नरक नहीं जाता माटी को पुत्रा कैसे नचत है देखै देखै सुनै बोलै दौर्यो फिरत है रहाओ जब कश पावे तब गर्भ करत है माया गई तब रोवन लगत है मन बच क्रम रस कसै लुभाना बिरस गया जाय कहूं समाना कह रविदास बाजी जग भाई बाजी गर सो मोहे प्रीत बने आई आसा बाणी भगत धन्ने जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने तन मन तन नहीं धीरे लालच बिख काम लुब्ध राता मन बिसरे प्रभीरे रहाओ बिख फल मीठ लगे मन बौरे चार विचार ना जानिया गुणते प्रीत बड़ी अनपाती जन्म मरण फिर तान्या जुगत जान नहीं हृदय निवासी जलत जल जम फंद परे बेख फल संच भरे मन ऐसे परम पुरख प्रमन बिसरे ज्ञान प्रवेश गुरे धन दिया ध्यान मान मन एक मये प्रेम भगत मानी सुख जान्या तृप्ता गाने मुक्त पए जोत समाए समानी जाके अछली प्रपहचान्या धन है तर पाया तरनी तर मिल जा संत समान्या महला पंजवा गोविंद गोविंद।

हो मन लिंगा आठ दाम कोशी परो होयो लाखिंगा रहाओ। बुनना तनना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा नीच कुला जोला हरा पयो गुनी गहीरा। रविदास टोवंता टोर नीत तिन त्यागी माया प्रगट होवा साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया ओहो कर कर सुनिया हिरदे वसिया पार ब्रह्म भगता मैं गनिया। एह बिद सुन कै जाटरो उठ भगती लागा मिले प्रतख गुसाइया। तन्ना वडभागा रे चित चेत सकी ना दयाल दमोदर बिबै ना जान सकोई। जे तावै ब्रह्मंड खंड कहो करता करे सो होई रहाओ। जननी केरे उदर उदुक मह पिंड किया दस द्वारा दे आहार अग्न में राख ऐसा खसम हमारा। कुम्मी जल माहे तन तिस बाहर पंख खीर तिन नाही। पूर्ण परमानंद मनोहर समय देख मन माही। पाखण कीट

आसा सेख फरीद जीओ की बाणी एको अंकार सतगुर प्रसाद दिलो मोहब्बत जिन सही सचिया जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया रते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम ते पोए भारतीये रहाओ आप लिए लड़ लाए दर दर वेस से तिन धन जने दी माओ आए सफल से पर्वत गारिया पार अगम बेअंत तू जिना पछाता सच चुम्मा पैर मूह तेरी पने खुदाए तू बख्शंदगी सेख फरीद ऐ खैर दी जय बंदगी आसा बोले सेख फरीद प्यारे अल्लह लगे एहो तन हो सी खाक निमाणी गौर करे आज मैं लावां सेख फरीद टाक मकुंजड़ियां मनोम चिंदड़ियां रहाओ जे जाना मर जाइए घुम ना आईए झूठी दुनिया लग ना आप वजाइए बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए जो गुर दसै वाट मुरीदा जोलिए शैल लगंदे पार गोरी मन तीरिया कंचन मन्ने पासे कलवत चीरिया सेख है आती जग ना कोई थिर रया जिस आसन हम बैठे केते बैस गया कतक कूंजा चेत डाओ सावन बिजलियां सियाले सोहंदियां पिर गल बाहड़ियां चले चलन हार विचारा ले मनो गंडें दिया शे मां तुड़न दिया हिक खिनो जिमी पुछे असमान फरीदा खेवट किन गए जालन गोरा नाल उलामे जी सहे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंग गुर प्रसाद राग गुजरी महला पहला चौप दे कर पहला तेरा नाम करी चन नाठिया जे मन उरसा होए करनी कुंगू जे रल कट अंतर पूजा होए पूजा की चै नाम ते आई है बिन नावे पूजना होए रहाओ बाहर देव पखाली है जे मन तो वह कोए झूठ लह जियो मन जिये मोख पयाना होए पशु मिले चंगे आईया खड़ खावे अमृत दे नाम विहुने आदमी त्रिग जीवन कर्म करे नेड़ा है दूर ना जाने आओ नित सारे संभाले जो देव ऐसो खावना कहो नानक साचा है गुजरी महला पहला नाभ कमल ते ब्रह्मा उपजे वेद पड़े मुख कंठ सवार ताको अंतना जाई लखना आवत जात रहे गोबार प्रीतम क्यों बिसरे मेरे प्राण आधार जाकी भगत करे जन पूरे मुन जन सेवै गुर विचार रहाओ राव सस दीपक जाके त्रिपवन एका ज्योत मुरार गुरमुख होए सो अहिरस निर्मल मन मुख रहण आधार सिद्ध समाध करे नित झगरा दोह लोचन क्या हेरै अंतर ज्योत सब तुन जागै सतगुर चगर नवेरै सुर नर नाथ बेअंत जोनी साचै महले अपारा नानक सहज मिले जग जीवन नदर करो निस्तारा राग गुजरी महला तीजा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग अवेहा जीवना जित हर प्रीत ना पाए जित कम हर विसरै दूजे लगे जाए ऐसा सतगुर सेवी है मना जित सेव है गोविंद प्रीत उपजै अवर विसर सब जाए हर सेती चित गह रह जरा का पौ ना हो वही जीवन पदवी पाए रहाओ
ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਉਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਉਪਜਿਆ, ਵੇਖ ਜੈਸੀ ਭਗਤ ਬਣੀ, ਆਪ ਸੇਤੀ ਆਪ ਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵਾ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਈ, ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੂੜੈ ਕੀ ਪਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੈ, ਤਾਂ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਿਆ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਆਗੈ ਜੀਉ ਧਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਚਿਤ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਹਰ ਕੀ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਈਐ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਹਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ ਹੈ, ਹਰ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭੀਜੈ, ਇਹਾ ਸੇਵ ਬਣੀ ਜੀ ਓ ਰਹਾਓ। ਹਰ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਤ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਹਰ ਕੀ ਮੈਂ ਭੂਖ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੈ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਸਾਕ ਅੰਤ ਹੋਏ ਸਿਖਾਈ, ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਰਾਸ ਕੂੜੀ ਹੈ, ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਧਨ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਚਾਲੈ, ਜਹਾਂ ਹਉ ਜਾਉ ਤਹਿ ਜਾਈ, ਸੋ ਝੂਠਾ ਜੋ ਝੂਠੇ ਲਾਗੇ, ਝੂਠੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਹੋਵਾ, ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਜੁਗ ਮਾਹੇ

हर का तन मनो सब हर कै वस है शरीर रहाओ। भगत जना को सरदा आप हर लाई, विचे ग्रस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर स्यों बन आई, तब जो किश करे सो मेरे हर प्रभाई। जित कारे काम हम हर लाए, सो हम करे जो आप कराए। जिनकी भगत मेरे प्रभ भाई, ते जन नानक राम नाम लिवलाई। गुजरी महला पंजवा, चौप दे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे रे मन चितवै उद्यम, जा अहर हर जियो परया। सैल पत्थर मैं जनते उपाए, ता कर इसका गह कर तरिया। मेरे माधव जी सत संगत मिले से तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया। सूके कष्ट हरिया रहाओ, जनन पिता लोक सुत बनता। कोई न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संवाहे ठाकरो। काहे मन पौ करिया, उड़े उड़िया वैसा कोसा। तिस पाछे बचरे शरिया, उन कमन खलावै कमन चुगावै। मन में सिमरन करिया, सब निधान दस अठ सिधान। ठाकुर कर तल धरिया, जन नानक बल बल सदबल जाइए। तेरा अंतना पारा वरिया। गुजरी महला पंजवा, चौप दे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किरिया चार करे खट करमा, इतरा ते संसारी। अंतर मैल न उतरे हो मैं, बिन गुर बाजी हारी। मेरे ठाकर रख ले वो कृपा धारी, कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी। रहाओ शास्त वेद सिमरत सब सोदे, सब एका बात पुकारी। बिन गुर मुक्त ना को उपावै, मन वेखो कर बिचारी। आठ साठ मज्जन कर इसनाना, भ्रम आए तर सारी। अनक सोच करै दिन राती, बिन सतगुर अंधियारी। तावत तावत सब जगत आयो, अब आए हर द्वारी। दुरमत मेट बुद्ध परगासी, जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी महला पंजवा, हर तन जाप हर तन ताप, हर तन भोजन पाया। निमख ना बिसराओ मन ते हर हर, साध संगत मैं पाया। माई खाट आयो घर पूता, हर तन चलते हर तन बैसै। हर तन जागत सूता रहाओ, हर तन इशनान हर तन ज्ञान। हर संग लाए ध्याना, हर तन तुल्हा हर तन बेड़ी। हर हर तार पुराना, हर तन मेरी चिंत विसारी। हर तन लाया धोखा, हर तन ते मैं नवनिध पाई। हाथ चरयो हर थोका, खावो खर्चो तोट न आवै। हलत पलत कै संगे लाद खजाना, गुरु नानक को दिया। एहो मन हर रंग रंगे, गुजरी महला पंजवा। जिस सिमरत सब किले विख नासै, पितरी होए उधारो। सो हर हर तुम सधी जापो, जां का अंत न पारो। पूता माता की आसीस, निमख न बिसराओ तुम कहो हर हर। सदा भजहो जगदीश रहाओ, सतगुर तुम कहो होए दयाला। संत संग तेरी प्रीत, कापड़ पत परमेश्वर राखी। भोजन कीर्तन नीत, अमृत पीवो सदा चिर जीवो। हर सिमरत अनद अनंता, रंग तमासा पूर्ण आसा। कबह ना व्यापै चिंता, पवर तुम्हारा एहो मन होवो। हर चरणा हो कौला, नानक दास उन संग लपटायो। ज्यों बूंदे चातरक मौला, गुजरी महला पंजवा। मता करे पछम कै ताई, पूर्व ही लै जात।
ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪੋ ਥਾਪ ਨਹਾਰਾ ਆਪਣ ਹਾਥ ਮਤਾਂਤ ਸਿਆਣਪ ਕਾਹੂ ਕਾਮਨਾਯਾਤ ਜੋ ਅਨਰੂਪਿਓ ਠਾਕਰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੀ ਉਹ ਬਾਤ ਰਹਾਓ ਦੇਸ ਕਮਾਵਨ ਧਨ ਜੋੜਨ ਕੀ ਮਨਸਾ ਬੀਚੇ ਨਿਕਸੇ ਸਾਸ ਲਸਕਰ ਨੇਵ ਖਵਾਸ ਸਭ ਤਿਆਗੇ ਜੰਪਰੀ ਉਠ ਸਿਦਾਸ ਹੋਇਆ ਨਨ ਮਨ ਹਠ ਕੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆਪਸ ਕਉ ਜਾ ਨਾਤ ਜੋ ਅਨਿੰਦ ਨਿੰਦ ਕਰ ਛੋਡਿਓ ਸੋਈ ਫਿਰ ਫਿਰ ਖਾਤ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਪਏ ਕਿਰਪਾਲਾ ਤੇ ਜਨਕੀ ਕਾਟੀ ਫਾਸ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗ੍ਰਸਤ ਉਦਾਸ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਿਨ ਜਨ ਜਪਿਓ ਤਿਨਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਬਿਖ ਮਮਤਾ ਇਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹਟੇ ਹਰ ਜਸ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਗਾਇਓ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਭਇਓ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਰਹਾਓ ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਓ ਸੋਈ ਪਲ ਮਾਨੈ ਐਸੀ ਭਗਤ ਕਮਾਨੀ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਸਭ ਏਕ ਸਮਾਨੇ ਜੋ ਜੁਗਤ ਨੀਸਾਨੀ ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਥਾਈ ਆਨ ਨਕਤ ਹੂੰ ਜਾਤਾ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਰੰਗ ਰਵਿਓ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਭੈ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ ਗੋਪਾਲਾ ਤਾਂ ਨਿਰਭੈ ਕਹਿ ਕਰ ਆਇਆ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟੇ ਖਨ ਭੀਤਰ ਨਾਨਕ ਸਹਿ ਸਮਾਇਆ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਸ ਮਾਨੁਖ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੁਖ ਭਰਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਅਰਾਧਿਆ ਤਿਨ ਪਉ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਗੁਰ ਹਰ ਬਿਨ ਕੋ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਦੁਖ ਕਾਟੈ ਪ੍ਰਭ ਤਜ ਅਵਰ ਸੇਵਕ ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਿਤ ਮਾਨ ਮਹਤ ਜਸ ਘਟੈ ਰਹਾਓ ਮਾਇਆ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਸਹਿਨ ਸਾਕ ਕਿਤਹੀ ਕਾਮਨਾ ਆਇਆ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਨੀਚ ਕੁਲ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੰਗਮਨ ਵਾਇਤ ਫਲ ਪਾਇਆ ਲਾਖ ਕੋਟ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਬਿੰਜਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬੂਜੀ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਕੋਟ ਉਜੀਆ ਰਾ ਬਸਤਾ ਗੋਚਰ ਸੂਜੀ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰ ਆਇਆ ਪੈ ਪੰਜਨ ਹਰ ਰਾਇਆ ਸਾਧ ਕੇ ਚਰਨ ਤੂਰ ਜਨ ਬਾਂਛੈ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਹੋ ਪਾਇਆ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੰਚ ਪਦਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਵੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਥਮੇ ਗਰਭ ਮਾਤਾ ਕੈ ਵਾਸਾ ਊਹਾਂ ਛੋੜ ਧਰਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਚਿੱਤਰਸਾਲ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਮੰਦਰ ਸੰਗ ਨ ਕਛ ਹੂੰ ਜਾਇਆ ਅਵਰ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਲੋਭ ਲੱਭੀ ਗੁਰਪੂਰੈ ਦੀਓ ਹਰਨਾਮਾ ਜੀ ਕੋ ਇਹਾ ਵਸਤ ਫੱਬੀ ਰਹਾਓ ਇਸ਼ਟਮੀਤ ਬੰਧ ਪਸੁਤ ਭਾਈ ਸਗਮਬੰਤਾ ਰਚ ਹਸਿਆ ਜਬ ਅੰਤੀ ਅਵਸਰਿਆ ਬਣਿਓ ਹੈ ਉਨ ਪੇਖਤ ਹੀ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਕਰ ਕਰ ਅਨਰਥ ਬਿਹਾਜੀ ਸੰਪੈ ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਦਾਮਾ ਪਹਾੜੀ ਕਾ ਉਹ ਪਹਾੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਰ ਸਗਲ ਪਇਓ ਬੇਰਾਨਾ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਰਥ ਸੰਭਾਹੇ ਗਹੁ ਕਰ ਕੀਨੇ ਮੇਰੇ ਜਬ ਤੇ ਹੋਈ ਲਾਮੀ ਤਾਈ ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮ ਸੁਖ ਰਾਜਾ ਨਾਮ ਕੁਟੰਬ ਸਹਾਈ ਨਾਮ ਸੰਪਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਈ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਪਦੇ ਕਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਕੀਆ ਨਿਵਾਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਨ ਬੁਝਾਈ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰੜਾਇਆ ਬਿਨਸਨਾ ਆਵੈ ਜਾਈ ਹਰ ਜਪ ਮਾਇਆ ਬੰਧਨ ਟੂਟੇ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਛੂਟੇ ਰਹਾਓ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਮਾਤਾ ਹਰ ਸੋਗ ਦੋਹ ਮਾਹੇ ਨਿਰਾਲਾ ਕਰਨੈ ਹਰ ਪਛਾਤਾ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਥ ਇਨਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਗਲ ਜੁਗਤ ਬਣ ਆਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲਾ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੋ ਪਦੇ ਕਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
पतत पवित्र लिए कर अपने सगल करत नमस्कारो। वर्ण जात को पूछे नाही बाछे चरण रवारो। ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो सगल श्रेष्ठ को तनी कही जय जन को अंग निरारो रहाओ। साध संग नानक बुद्ध पाई हर कीर्तन आधारो। नाम देव त्रिलोचन कबीर दास रो मुक्त पयो चमयारो। गुजरी महला पंजवा है नाही को बूझन हारो। जान कवन पता शिव बिरंच यार सगन मोहन जानो गहना सकाहे गता। प्रभ की अगम अगाध कथा सुनिया अवर अवर बिद बुचिया बकन कथन रहता रहाओ। आपे भगता आप स्वामी अपन संगरता नानक को प्रभ पूर रहे हुए पेख्यो जतर कथा। गुजरी महला पंजवा मता मसूर तो अवर स्यानप जन को कछु ना आयो। जह जह अवसर आए बनयो है तहां तहां हर त्यायो। प्रभ को भगत वच्छल बिरदायो करे प्रतपाल बार की न्याई जन को लाड लड़ायो रहाओ। जप तप संजम कर्म धर्म हर कीर्तन जन गायो। शरण पर्यो नानक ठाकर की अपैदान सुख पायो। गुजरी महला पंजवा दिन रातियां रादो प्यारो निमख ना की जय ढीला। संत सेवा कर पावनी लाई है त्याग मान हर ठीला। मोहन प्राण मान रंगीला बास रहो हियर कै संगे पेख मोहयो मन लीला रहाओ। जिस सिमरत मन होत आनंदा उतरे मनोह जंगीला। मिलबे की महिमा वर्ण ना साकौ नानक परे परीला। गुजरी महला पंजवा मन जोगी शास्त्रक कहावत सब कीने बस अपन ही। तीन देव अर कोड़ते तीसा तिन की हैरत कछ ना रही। बलवंत व्याप रही सब मही अवर न जान सको मरमा गुर कृपा ते लही रहाओ। जीत जीत जीते सब थाना सगल पवन लपटही। कहो नानक साते भागी ओए चेरी चरण गही। गुजरी महला पंजवा दोए कर जोड़ करी बेनंती ठाकरे अपना त्याया। हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया। ठाकर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाओ। मिलवर नारी मंगल गाया ठाकर का जयकार। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिन सब का किया उधार। गुजरी महला पंजवा मात पिता भाई सुत बंदप तिनका बल है थोरा। अनक रंग माया के पेखे किछ साथ ना चल पोरा। ठाकर तुझ बिन आहे ना मोरा मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही मैं आहयो तुमरा तोरा रहाओ। बल बल बल बल चरण तुम्हारे इहां उहां तुम्हारा जोरा। साध संग नानक दर्श पायो।

मन को एह उपदेश दरड़ावै सह सहज गुण गाई साजन है सो संत सहाई जिस भेटे टूटे माया बंद बिसरना कब हूं जाई रहाओ करत करत अनक बहु भांति नीकी ए ठहराई मिल साधु हर जस गावे नानक भवजल पार पराई गुजरी महला पंजवा खिन मैं थाप था पनहारा कीमत जाए ना करी राजा रंक करै खिन पीतर नीचे जो तरी त्याई अपनो सदा हरी सो जन देसा ताका कहां करिए जा मैं करी रहाओ तुमरी टेक पूरे मेरे सतगुर मन सरन तुम्हारे परी अचेत याने बारक नानक हम तुमरा खो तार करी गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माही चरण कमल रिदमाए समाए तै परमा देरा नाही ठाकुर जा सिमरा तू ताही कर कृपा सरप्रत पालक प्रभ को सदा सलाही रहाओ सास सास तेरा नाम समाराओ तुम ही को प्रभ आही नानक टेक पई करते की होर आस बेडानी लाही गुजरी महला पंजवा कर कृपा अपना दर्श दीजै जस गावो निस्यार पोर केस संग दास पग चारो एह मनोरथ मोर ठाकुर तुझ बिन बिया ना होर चित चित वो हर रस न्यारा दो निरखो तुमरी ओर रहाओ दयाल पुरख सर्व के ठाकर बिनो करो कर जोर नाम जपै नानक दास तुमरो उधर से आखी फोर गुजरी महला पंजवा ब्रह्म लोक अर रुद्र लोक आई इंद्र लोक ते ताए साध संगत को जोहे ना सकै मल मल धोवे पाए अब मोहे आए परयो शरणाए गुहज पाव को बहुत पर जा रहे मोको सदगुर दियो है बताए रहाओ सिद्ध साधक अर जख किन्नर नर रही कंठ उर जाए जन नानक अंग किया प्रभ करता जा कै कोट ऐसी दास आए गुजरी महला पंजवा आप जस मिटै होवे जग कीर्त उंदर गै बैसन पाई है जम की त्रास नास होए खिन मैं सुख अंध सेती कर जाई है जाते काल न बिरथी जाइए आठ पहर सिमरो प्रभ अपना मंत्र सदा त्याइए रहाओ मोहे सरन दीन दुख भंजन तू देह सोई प्रभ पाइए चरण कमल नानक रंग राते हर दास पैज रखाइए गुजरी महला पंजवा विश्वंपर जियन को दाता भगत परे भंडार जाकी सेवा निफल ना होवत खिन मैं करे उधार मन मेरे चरण कमल संगराज सगल जी जाको वारा दै ताहू को तू जाच रहाओ नानक शरण तुम्हारी करते तू प्रभ प्राण आधार होए सहाय जिस तू राखै तिस कहां करे संसार गुजरी महला पंजवा जन की

जी बहुते पेख करे पिखिया को केते उधर परन कहताई बिन हर भगत नाही सुख प्राणी बिन गुर गर्भ ना जाई ऐ जी काल सदा सिरी उपर ठांडे जन्म जन्म वहराई साचे शब्द रते से बाचे सतगुर बूझ बुझाई गुर सरनाई जोहे ना साके दूत न सके संताई अवगत नाथ।

पिता मेरो बड़ो तनी अगमा, उसतो कमन करी जय करते, पेख रहे बिस्मा रहाओ। सुखियन में सुखिया तू कही है, दातन सर दाता, तेजन में तेजवंशी कही है, रसियन में राता, सूरन में सूरा तू कही है, भोगन में भोगी, ग्रस्त्र में तू बड़ो ग्रस्ती, जोगन में जोगी, करतन में तू करता कही है, आचारन में आचारी, साहन में तू साचा साहा, वापारन में वापारी, दरबारन में तेरो दरबारा, शरण पालन टीका, लक्ष्मी केतक गनी ना जाइए, गाना सको सिका, नामन में तेरो प्रभ नामा, ज्ञानन में ज्ञानी, जुगतन में तेरी प्रभ जुगता, इशनानन में इशनानी, सिद्धन में तेरी प्रभ सिद्धा, कर्मन सिर कर्मा, आज्ञा मैं तेरी प्रभ आज्ञा, हुक्मन सिर हुक्मा, ज्यो बोलावे त्यो बोले स्वामी, कुदरत कमन हमारी, सा संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी, गुजरी महला पंजवा, घर चौथा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद, नाथ नर हर दीन बंधव, पतत पावन देव, पै त्रास नास कृपाल गुंडद, सबर स्वामी सेव, हर गोपाल गुर गोबिंद, चरण सरण दयाल केशव, तार जग पव सिंध रहाओ, काम क्रोध हरण मद मोह दहन, मुरार मन मकरंद, जन्म मरण निवार धरणी तार, पत राख परमानंद, जलत अनक तरंग माया, गुर ज्ञान हर रिद मंत, शेद अहम बुद्ध करना मैं, चिंत मेट पुरख्यानंत, सिमर समर्थ पल मुहूर्त, प्रभ ध्यान सह समाद, दीन दयाल प्रसन्न पूर्ण, जाची है रज साध, मोह मिथन दुरंत आसा, बासना बेकार, रख धर्म परम बिदार मंते, उदर हर निरंकार, तनाड आड़ पंडार हर निद, होत जिना ना चीर, खल मूड खल मुग्ध मूड कटाक श्री तर, पय गुणमा तीर, जीवन मुक्त जगदीश जप मानो, तार रिद प्रतीत, जी दया मया सर्वत्र, रमण परमहंस रीत, देत दर्शन सरवण हर जस, रसन नाम उचार, अंग संग भगवान प्रसन्न, प्रभ नानक पतत उदार, गुजरी की वार महला तीजा, सकंदर ब्रह्म की वार की तुनी गावनी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्लोक महला तीजा, एहो जगत ममता मोवा, जीवन की बिद नाहे, गुर कै पाणे जो चा

कलयुग में नाम निदान भक्ति खटिया, हरि उत्तम पद पाया, सतगुर सेव हर नाम मन वसाया, अंद नाम पियाया, विचे ग्रह गुरबचन उदासी, हों मैं मोह जलाया, आप तरिया कुल जगत तराया, तन जने दी माया, ऐसा सतगुर सोई पाए, जिस तुर मस्तक हर लिख पाया, जन नानक बलिहारी गुरे अपने विटों, जिन भ्रम पुला मार्ग पाया। महला तीजा, त्रै गुण माया वेख पुले, जो देख दीपक पतंग पजाया, पंडित पुल पुल माया वेखै, दिखा किने केहो आन चढ़ाया, दूजे पाए पड़े नित बिखया, नामों दईए खुआया, जोगी जंगम सन्यासी पुले, ओना अहंकार बहु गर्भ वधाया, शादन भोजन ना लही सत पिखया, मन अठ जन्म गवाया, एतड़िया विचों सो जन समदा, जिन गुरमुख नाम ते आया, जन नानक किसनों आख सुनाई है।

कड़ी मोहतन है विसरा नानक रवि है नित पौड़ी सूर बीरवर याम किन ना होड़ी है फौ सतानी हाठ पंचा जोड़ी है दस नारी अवधूत देन चमोड़ी है जिन जन लैन रलाए एहो इना लोड़ी है त्रै गुण इनकै वस किन ना मोड़ी है परम कोट माया खाई कहो कित बिद तोड़ी है गुरपुरा आराध बिखम दल फोड़ी है हौ तिस अगै दिन रात रहा कर जोड़ी है श्लोक महला पंजवां किल विख सबे उतरन नीत नीत गुण गाओ कोट कले साई उपजै नानक बिसरै नाओ महला पंजवां नानक सतगुर भेटे पूरी होवै जुगत हसंदियां खेलंदियां पैनंदियां खावंदियां विचे होवै मुकत पौड़ी सो सतगुर तन तन जिन परमगढ़ तोड़िया सो सतगुर वाहो वाहो जिन हरस्यों जोड़िया नाम निदानिया खुट गुर दे दारुओ महारोग बिकराल उतने बिदारुओ पाया नाम निदान बहुत खजानिया जिता जन्मया पार आप पछानिया महिमा कही ना जाए गुर समर्थ देव गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अरम अपरंपरा लाखा पेव सलोक महला पंजवा उद्यम करेंद्या जियो तू कमावद्या सुख पुंच ते आए दया तू प्रभु मिल नानक उतरी चिंत महला पंजवा शुभ चिंतन गोबिंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम ना विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत पौड़ी तेरा कीता होए ता काहे डरपिय जिस मिल जपिय ना हो तिस जियो अर्पिय आया चित निहाल साहेब बेसुमार तिसनो पोहे कवन जिस वल निरंकार सब किश तिसकै वस ना कोई बाहरा सो भगता मन उठा सच सुमहरा तेरे दास त्यायन तुद तू रखण वालिया सिर सबना समर्थ नजर निहालिया सलोक महला पंजवां काम क्रोध मद लोभ मोह दुष्ट बासना निवार राख ले हो प्रभ अपने नानक सदबलिहार महला पंजवां खांदियां खांदियां मोह कठा पै नंदियां सब अंग नानक त्रिग तिन्ना दा जीविया जिन सच ना लगो रंग पौड़ी ज्यों ज्यों तेरा

कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रग राई। गुजरी श्री नामदेव जी के पदे, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जौ राज देहे ता कमन वडाई, जो भीख मंगावै ता क्या कट जाई। तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण, बहुर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब तैं उपाई भरम भुलाई, जिस तू देवै तसै बुझाई। सतगुर मिलै तां से सजाई, किसहौ पूजो दूजा नजर न आई। एकै पाथर की जय पाओ, दूजे पाथर धरियै पाओ। जे ओह देओ तां ओह पी देवा, कहे नाम देओ हम हर की सेवा। गुजरी कर पहला, मलै ना लाछै पार मलो। परम लियो बैठो री आई, आवत किने ना पेखियो, कमने जाने री बाई। कौन कहे किन बूझी है, रमैया या कुल री बाई। रहाओ ज्यो आकाश है पंखिया लो, खोज निरखियो ना जाई। ज्यो जल माजै मछलो, मार्ग पेखणो ना जाई। ज्यो आकाश है कड़ुवलो, मृग तृष्णा भरिया। नामे चे स्वामी बीठलो, जिनती ने जरिया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे, करती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दूता बछरै थनो बिटारियो, फूल पवर जलमीन बिगारियो। माई गोबिंद पूजा कहां लै चरावो, अवरना फूलिया नूपन पावो। रहाओ मैं लागर बेरे है भयंगा, बिखे अमृत बसै एक संगा। धूप दीप नहीं बेदै बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा। तन मन अर्पाओ पूज चरावो, गुरप्रसाद निरंजन पावो। पूजा अर्चा आहे ना तोरी, कह रविदास कमन गत मोरी। गुजरी श्री त्रिलो

अंत काल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बेसवा जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो मंदिर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरै।

गुजरी श्री जयदेव जियो का पदा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद परमाद पुरख मनोपमंग सत आद भावरतंग परमद पुतंग परकृत परंग जद चिंत सर्वगतंग केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयंग ना दनोत जा स्मरणेन जन्म जराद मरण भयंग रहाओ इच्छ सजमाद परा भयंग जस स्वस्थ सुकृत कीर्तंग भव भूत भाव समग्यंग परमंग प्रसन्न मिदंग लोभाद दृष्ट पर गिरहंग जद विद आचरणंग तज सकल दोहकृत दुर्मति पज चक्कर तर सरणंग हर भगत निज नेह केवला हृद कर्मणा बचसा जोगेन किंग जगेन किंग दानेन किंग।

हमरा मन मोहयो गुर मोहन, हम बिस्म भई मुख लागे, सगली रहन सोई अंधियारी, गुर किंचित कृपा जागे। जन नानक के प्रभ

चले कित गली, हर के संत बतावो मार्गो, हम पीछे लाग चली रहाओ। प्रे के बचन सुखाने ही अरे, ए चाल बनी है भली, लटरी मदरी ठाकर पाई, ओह सुंदर हर ढोल मिली। एको प्रेयो सखिया सब प्रे की, जो पावे पिरसा भली। नानक गरीब क्या करे बिचारा, हर पावे तितराहे चली। देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है, गुरमुख रंग चलू लै राती, हर प्रेम पीनी चोली है रहाओ। हाँ फिरो दीवानी आवल बावलो, तिस कारण हर ढोली है। कोई मिले मेरा प्रीतम प्यारा, हम तिसकी गुलगुली है। सतगुर पुरख मनावो अपना, हरे अमृत पी झोली है। गुर प्रसाद जन नानक पाया, हर लादा देह टोली है। देव गंधारी अब हम चली ठाकर पैहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार।

ठाकर प्रभ तुमरी तिस राखो कृपा तार, जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो लाज मुरार। देव गंधारी हर गुण गावे हों तिस बरिहारी, देख देख जीवा साध गुर दर्शन, जिस हृदय नाम मुरारी रहाओ। तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी, हम क्यों कर मिले जूठारी। हमरे जिए होर मुख होर होत है, हम कर्महीन कूड़ेयारी। हमरी मुंदर नाम हर स्वामी, हृदय अंतर दुष्ट दुष्टारी। जो पावे त्यों राखो स्वामी, जन नानक शरण द्वारी। देव गंधारी हर के नाम बिना सुंदर है नकटी, जो बेसवा के घर पूत जमत है, तिस नाम परयो है त्रगटी रहाओ। जिनके हृदय नाहे हर स्वामी, ते बिगड़ रूप बेरगटी। ज्यो निगुरा बहु बाता जाने, ओहो हर दर गह है प्रष्टि। जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी, तिन्ना साध जना पग चकटी। नानक पतत पवित मिल संगत, गुर सत गुर पाछ शुकटी। शक्का एक देव गंधारी महला पंजवां, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। माई गुरचरणी चित लाइय, प्रभ होए कृपाल कमर पर गासे, सदा सदा हर त्याय रहाओ। अंतर एको बाहर एको, समय एक समाई है, घट अवघट रविया सब ठाई। हर पूर्ण ब्रह्म दिखाई है, उस्त कर है सेवक मुन केते। तेरा यंत्र कतहू पाई है, सुखदाते दुख भंजन स्वामी, जन नानक सदबल जाई है। देव गंधारी माई होन हार सो होई है, राच रहे ओ रचना प्रभ अपनी, कहां लाभ कहां खोई है रहाओ। कह फूले आनंद बिखे सोग, कब हसनो कब रोई है, कब हूं मैल भरे अभिमानी, कब साधु संगत होई है। कोई न मिटे प्रभ का किया, दूसर नाही अलोई है। कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जे प्रसाद सुख सोई है। देव गंधारी माई सुनत सोच पै डरत, मेर तेर तजो अवमाना, शरण स्वामी की परत रहाओ। जो जो कह सोई पल मानो, नाहिन का बोल कर दो निमख।

बिसरत जाई हौ मरत, सुखदाई पूर्ण प्रभ करता मेरी बहुत अयान पजरत। निर्गुण कुरूप कुलीन नानक हौ, आनंद रूप स्वामी भरत। देव गंधारी मन हर कीर्त कर सदहू, गावत सुनत जबत उधार है, बरन्या बरना सबहू रहाओ। जहते उपजो तही समान्यो, जहते उपजो तही समायो, एह बिद जानी तब हूं, जहां जहां एह देही धारी, रह ना पायो कब हूं। सुख आयो पै परम बिनासे, कृपाल हुए प्रभ जब हूं, कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ, सा संग तज लब हूं। देव गंधारी मन जो अपने प्रभ पावो, नीचो नीचो नीचो अत नाना, होए गरीब बुलावो रहाओ। अन के अडंबर माया के बरथे, तासो प्रीत कटावो, ज्यो अपनो स्वामी सुख मान है, ता मैं शोभा पावो। दासन दास रेण दासन की, जन की टैल कमावो, सर्व सुख वडियाई नानक, जीवो मुखो बुलावो। देव गंधारी प्रभ जी तो प्रसाद भ्रम डारियो, तुमरी कृपा ते सबको अपना, मन में यह विचारियो रहाओ। कोट प्राद मिटे तेरी सेवा, दर्शन दुख उतारियो, नाम जपत महा सुख पायो, चिंता रोग बिदारियो। काम क्रोध लोभ झूठ निंदा, साधु संग बिसारियो। माया बंद काटे कृपा निद, नानक आप उधारियो। देव गंधारी मन सगल सियान परही, करण करावन हर स्वामी, नानक ओट गही रहाओ। आप मेट पै सरनाई, एह मत साधु कही, प्रभ की आज्ञा मान सुख पाया, परमा देरा लही। जान परवीन स्वामी प्रभ मेरे, शरण तुम्हारी यही। खिन मैं था पो था पनहारे, कुदरत की मना पही। देव गंधारी महला पंजवां, हर प्राण प्रभु सुखदाते, गुर प्रसाद काहूं जाते रहाओ। संत तुम्हारे तुमरे प्रीतम, तिनको काल ना खाते, रंग तुम्हारे लाल पय है, राम नाम रसमाते, महा किरबख कोट दोख रोगा, प्रभ दृष्ट तुहारी हाते। सोवत जाग हर हर हर गाया, नानक गुर चरण पराते। देव गंधारी पंजवां, सो प्रभ जत कत पेख्यो नैनी, सुखदाई जियन को दाता, अमृत जा की बैणी रहाओ। अज्ञाना देरा संति काटिया, जीदान गुर दैनी, कर कृपा कर लीनो अपना, जलते शीतल होनी। कर्म धर्म किश उपजना आयो, नहीं उपजी निर्मल करनी, छाड़ सियान पसंजम नानक, लागो गुर की चरणी। देव गंधारी पंजवा, हर राम नाम जप लाहा, गत पावे सुख सहज आनंदा, काटे जम के फाहा रहाओ। खोजत खोजत खोज बिचारियो, हर संत जना पया, तिना प्राप्त हो निदाना, जिनके कर्म लिखा। सेवड पागी से पतवंते, से ही पूरे सहा, सुंदर सुगड़ स्वरूप ते नानको, जिन हर हर नाम विसाहा। देव गंधारी पंजवा, मन कहे अंकार अफारा, दुर्गंध पवित्र अपावन पीतर, जोधी सहसो शारा रहाओ। जिन किया ते सिमर प्राणी, जियो प्राण जन तारा, तिसह त्याग अवर लपटावै, मरजन मैं मुद गवारा। अंध कोंग गोंग पिंगल मतहीना, प्रभ राखो रखन हारा, करन करावन हार समरथा, क्या नानक जंत बिचारा। देव गंधारी पंजवा, सो प्रभ नेरे हूं ते नेरे, सिमरत आए गाए गुण गोबिंद, दिन रहन सांझ सवेरे रहाओ। उधर देह दुलब साधु संग, हर हर नाम जपे रह, करी ना मोहत ना चसा बिलंबो, काल नितै नित हेरै। अंध बिलाते काडो करते, क्या नाही करते रह।
नाम आधार दीजे नानक कहो आनंद सुख घनेर शके दो। देव गंधारी पंजवा मन गुरमिल नाम आराध्यो सुख सहज आनंद मंगल रस जीवन का मूल बाध्यो रहा कर कृपा।

पयो अनुग्रह मिट्यो मोर्चा, अमोल पदार्थ ला दियो, बलिहारे नानक लख बेरा, मेरे ठाकर अगम्यागा दियो। देव गंधारी पंजवा, माई जो प्रभ के गुण गावे, सफल आया जीवन फल तां को, पार ब्रह्म लिबलावे। रहाओ सुंदर सुगड़ सूर सो बेता, जो साधु संग पावे, नाम उचार करे हर रसना, बहुन न जो नीत आवे, पूर्ण ब्रह्म रव्या मन तन मह, आना दृष्टि आवे। नरक रोग नहीं होवत जन संग, नानक जिस लड़ लावे, देव गंधारी पंजवा, चंचल सुपने ही उर जायो। इतनी ना बुझे कबहू, चलना बिगल पयो संग मायो। रहाओ कुसम रंग संग रस रचिया, बिखिया एक उपायो, लोभ सुने मन सो कर माने, बेग तहां उठतायो। फिरत फिरत बहुत श्रम पायो, संत द्वारे आयो, करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी, नानक लियो समायो। देव गंधारी पंजवा, सर्व सुखा गुर चरना, कालमल डारन मनै सुधारन, ए आसर मोय तरना। रहाओ पूजा अर्चा सेवा बंदन, एह टहल मोहे करना, बिकसै मन होवै परगासा, बहुर ना गर्भै परना, सफल मूर्त परसौ संतन की, एह त्याना तरना। पयो कृपाल ठाकर नानक, पर्यो साध की सरना। देव गंधारी महला पंजवा, अपने हर पै बिनती कही है, चार पदार्थ अनंद मंगल निद, सुख सहज सिद्ध लहिए। रहाओ मान त्याग हर चरनी लागो, तिस प्रभ अंचल गही है, आंच ना लागे अग्न सागर ते, शरण स्वामी की अही है। कोट प्रात महा अकिरत कान, बहुर बहुर प्रभ सही है, करना मैं पूर्ण परमेश्वर, नानक ते शरण ही है। देव गंधारी पंजवा, गुर के चरण हृदय प्रवेशा, रोग सोग सब दुख बिनासे, उतरे सगल कलेसा। रहाओ जन्म जन्म के किल बिखनासे, कोट मजन इशनाना, नाम निधान गावत गुण गोबिंद, लागो सहित्याना। कर कृपा अपना दास कीनो, बंधन तोर निरारे, जप जप नाम जीवा तेरी बाणी, नानक दास बलिहारे। शके तेन देव गंधारी महला पंजवा, माई प्रभ के चरण निहारो, करो अनुग्रह स्वामी मेरे, मन ते कहो न डारो। रहाओ साधु तूर लाई मुख मस्तक, काम क्रोध बिख जारो, सब ते नीच आत्म कर मानो, मन में ओ सुख धारो। गुण गावे ठाकरे अब नासी, कलमल सगले चारो, नाम निधान नानक दान पाव।

सुंदर ध्यान धादर रैनी जी प्रांते प्यारा रहाओ। शास्त्र वेद पुराण अवलोके सिमरत तत् विचारा, दीना नाथ प्राण पथ पूर्ण पावजल उदर नहारा। आद जुगाद भगत जन सेवक ताकी बिखै आधारा, तिन जन की धूर बांछै नित नानक।

प्रेम रसाने जाको उपजी छोड़ न कतहू जाता रहाओ। बैठत हर हर सोबत हर हर हर रस भोजन खाता अठ सठ तीर्थ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता। सफल जन्म हर जन का उपजया जन कीनो सौत बेदाता सगल समूह लै उदरे नानक पूर्ण ब्रह्म पछाता। देव गंधारी महला पंजवा माई गुरबिन ज्ञान ना पाई है अनक प्रकार फिलत बिललाते मिलत नहीं गोसाई है रहाओ। मोह रोग सोग तन बांधो बोझो नी परमाई है टिकट ना पावे बिन सतसंगत किस आगे जाई रुआई है। करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाई है संकट घोर कटे खिन भीतर नानक हर दर्श समाई है। देव गंधारी।

आओ दोएकर जोड़ करी बेनंती पार ब्राह्मण त्याया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन कहो बल जाइए जो सबना करे उधार एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवगंधारी महला पंजवा अपने सतगुर पै बिनो कहया पै कृपाल दयाल दुख भंजन मेरा सगल अंधेसरा गया रहाओ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा ओ गुण अवगुण सब सहया कर मस्तक तार साज निवाजे मोए दुष्ट जो खया पारे उपकारी सर्व सुधारी सफल दर्शन सहजया कहो नानक निर्गुण कहो दाता चरण कमल उर धरिया देव गंधारी महला पंजवा अनाथ नाथ प्रभ हमारे सरने आयो राख नहारे रहाओ सर्व पाप राख मुरारे आगे पाछे अंति वारे जब चितवाओ तब तुहारे उन समार मेरा मन साधारे सुन गावो गुर बचनारे बल बल जाओ सादर सारे मन में राखो एक या सारे नानक प्रभ मेरे करण हारे देव गंधारी महला पंजवा प्रभ

लागो जन चरणी निस्बासर दर्स पावा, तन मन अर्प करो जन सेवा रसना हर गुण गावा। सास सास सिमरो प्रभ अपना संत संग नित रहिया, एक आधार नाम तन मोरा अनद नानक एहो लइया। राग देव गंधारी महला पंजवा घर तीजा, एको अंकार सतगुर प्रसाद। मीता ऐसे हर जियो पाए, छोड़ ना जाई सधी संगे अंदन गुर मिल गाए रहाओ। मिलियो मनोहर सर्व सुखैना, त्याग न कत हूं जाए। अनक अनक भांत बहु पेखे, प्रे रोम ना समसर लाए। मंदर भाग शोभ द्वारे, अनहद रुण चुन लाए। कहो नानक सदा रंग माणे, गृह प्रे थीते सद थाए। देव गंधारी पंजवा दर्शन, नाम कौ मन आचे। भ्रम आयो है सगल थान रे, आहे परयो संत पाछ रहाओ। किस हों सेवी किस आराधी, जो दिष्ट सो गच्छ। साध संगत की सरणी परिय, चरण रेन मन बंछ। जुगत ना जाना गुण नहीं कोई, महादुत्र माया छ। आए पयो नानक गुर चरणी, तो उतरी सगल दुराछ। देव गंधारी पंजवा अमृता प्रे बचन तुहारे, अत सुंदर मन मोहन प्यारे। सबहू मद निरारे रहाओ, राज ना चाहो मुक्त ना चाहो। मन प्रीत चरण कमलारे, ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदरा, मोहे ठाकर ही दरसारे। दीन द्वारे आयो ठाकर, शरण परयो संत हारे। कहो नानक प्रभ मिले मनोहर, मन सीतर बिगसारे। देव गंधारी महला पंजवा, हर जप सेवक पार उतारियो। दीन दयाल पए प्रभ अपने, बहुड़ जन्म नहीं मारियो। रहाओ साध संगम गुण गावे हर के, रत्न जन्म नहीं हारियो। प्रभ गुण गाय बिखै बंतरिया, कुले समूह उदारियो। चरण कमल बस्यारिद पीतर, सास ग्रास उचारियो। नानक उठ गही जगदीशर, पुनः पुनः बलिहारियो। राग देव गंधारी महला पंजवा, कर चौथा एको अंकार सतगुर प्रसाद। करत फिरे बन पेख, मोहन रहत निरार रहाओ। कथन सुनावन गीत नीके गावन, मन में तरते गार। अत सुंदर बहु चतर सियाने, विद्या रसनाचार। मान मोह मेर तेर बिबरजत, एहो मार्ग खंडे तार। कहो नानक तिन पव जल तरियले, प्रभ कृपा संत संगार। राग देव गंधारी महला पंजवा, कर पंजवा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मैं पेख्योरी उचा, मोहन सबते उचा। आना

ज्यों बैसंतर काष्ट मझार, बिन संजम नहीं कार्य सार। बिन गुर ना पावै गो, हर जी को द्वार। मिल संगत तज अभमान, कहो नानक पाए है परम निधान। देव गंधारी पंजवा, जानी ना जाई ता की गात रहाओ। कह पे खारो हाँ कर चतराई, बिस्मन बिस्मे कहन कहात। गण गंधर्व सिद्ध अर साधक, सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादक।

दुख रोग ना पौ ब्यापै जिनी हर हर त्याया संत प्रसाद तरे पवजल पूर्व लिखिया पाया वजी वधाई मनसा ते आई मिलिया पुरख्या पारी बिनवंत नानक सिमर हर हर इच्छ पुनी हमारी बिहागड़ा महला पंजवां कर दूजा एको अंकार सतनाम गुरप्रसाद वद सुख रह निड़िए प्रे प्रेम लगा घट दुख नींदड़िए परसौ सदा पगा पग तूर बांछो सदा जाचो नाम रस बैरागनी प्रेरंग राती सहज माती महा दुर्मत त्यागनी गह पुजा लीनी प्रेम पीनी मिलन प्रीतम सच मगा बिनवंत नानक तार किरपा रहो चरण संग लगा मेरी सखी सहेलड़ियो प्रभ कै चरण लगे मन प्रे प्रेम कणा हर की भगत मंगे हर भगत पाई प्रभ ते आईए जाए मिलिए हर जना मान मोह विकार तजिए अर्प तन तन एहो मना बड पुरख पूर्ण गुण संपूर्ण प्रभ प्रीत हर हर मिल पगे बिनवंत नानक सुन मंत्र सखिए हर नाम नित नित नित जपै हर नार सुहागणे सब रंग माणे रांड ना बैसई प्रभ पुरख चराणे न दुख पावै प्रभ ते आवै तन ते वट पागिया सुख सहज सोवै किल बिख खोवै नाम रस रंग जागिया

तित ग्रह सोहलड़े कोड़ नंदा मानता नु रव रहया प्रमानंदा हर कंत अनंत दयाल श्री तर गोविंद भक्तो धारणो प्रभ कृपा तारी हर मुरारी पैसिंद सागर तारणो जो सरन आवै तिस कंठ लावै एहो बिरद स्वामी संदा बिनवंत नानक हर कंत मिलिया सदा केल करंदा बिहागड़ा महला पंजवा हर चरण सरोवण तै करो निवास मना कर मज्जन हर सरे सब किल विख नास मना कर सदा मज्जन गोविंद सज्जन दुख अंधेरा नासे जन्म मरण ना होए तिस कौ कट्टे जमके फासे मिल साध संगे नाम रंगे तहां पूर्ण आसो बिनवंत नानक धार कृपा हर चरण कमल निवासो तह अनद बिनोद सदा अनहद चुनकारो राम मिल गावे संत जना प्रभ का जय करो राम मिल संत गावे खसम पावे हर प्रेम रस रंग पिनिया हर लाभ पाया आप मिटाया मिले चिरी विछुनिया गह पुजा लीने दया कीने प्रभ एक अगम्या पारो बिनवंत नानक सदा निर्मलो सच शब्द रुण चुनकारो सुन वट भागिया हरे अमृत बाणी राम जिनको कर्म लिखी तिसरदै सुमानी राम अकथ कहानी तिन्नी जानी जसिया प्रभ कृपा करे अमृतिया फिर नाम हुआ कल कले साधु हरे हर शरण पाई तज ना जाई प्रभ प्रीत मंतन पाणी बिनवंत नानक सदा गाई है पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत पए किश कहन ना जाई राम जिस ते उपजियाड़ा तिन लिया समाई राम मिल ब्रह्म ज्योति ओत पोती उदक उदक समाया जल थल महियल एक रविया न दूजा दृष्टाया बन त्रैण त्रिपावन पूर पूर्ण कीमत कहन ना जाई बिनवंत नानक आप जाने जिन एह बणत बनाई बिहागड़ा महला पंजवा खोजत संत फिरै प्राण आधारो राम तान तन खीन पया बिन मिलत प्यारे राम प्रमिलो प्यारे मया तारे कर दया लड़ लाए लीजिय देह नाम अपना जपो स्वामी हर दर्श पे खे जीजिय समर्थ पूर्ण।

जप तप वर्त कीने पेखन कहो चरना राम, तप्त नाकत बुझै बिन स्वामी सरना राम। प्रभ शरण तेरी काट बेरी संसार सागर तारी है, अनाथ निर्गुण कश ना जाना मेरा गुण अवगुण ना बिचारी है। दीन दयाल गोपाल प्रीतम समर्थ कारण करना, नानक चात्रक हर बूंद मांगै। जप जीवा हर हर चरना अमे सरोवर पियो, अमे सरोवरो पियो हर हर नाम राम। संतै संग मिलै जप पूर्ण कमा राम, सब काम पूर्ण दुख बदीर्ण हर निमुख मनो ना बिसरै। आनंद अंदन सदा साचा सर्व गुण जगदीसर, अगणत ऊचिया पार ठाकर अगम जाको धामा। बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूर्ण मिले श्री रंग रामा। कई कोटक जग फला सुन गावन हरे राम, हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम। हर नाम जपत सोहंत प्राणी ताकी महिमा कित गना, हर बिसर नाही प्राण प्यारे चितवंत दर्शन सद मना। शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभ ऊचक मिया पारे, बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारे। बिहागड़ा महला पंजवा शंत अनकाए रातड़िया, वड़ दुहेली राम पाप कमाउंदिया तेरा कोई ना बेली राम। कोई ना बेली होए तेरा सदा पछोता वहे, गुण गोपाल न जपै रसना फिर कदो से दे आवे। तार वार विशुने ने पाप जुड़ते जाम्बा गौने अकेली, बिनवंत नानक बिन नाम हर के सदा फिरत दुहेली। तू वल वंच लूक करै सब जाने जानी राम, लेखा तरम पया तिल पीड़े कानी राम। किरत कमाणे दुख सहो प्राणी अनक जोन परमाया, महामोहनी संग राता रतन जन्म गवाया। इक सहर के नाम बाजो आन का सियाणी, बिनवंत नानक लेख लिखिया परम मोहे लोभाणी। बीच ना कोई करे अकिरत कान विछड़ पया, आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया। पकड़े चलाया अपना कमाया महामोहनी रातिया, गुण गोविंद गुरमुख ना जपते जपया तप तो थम गल लातिया। काम क्रोध अहंकार मूठा खोए ज्ञान पछता पिया, बिनवंत नानक संजोग भूला हर जाप रसन ना जापया। तुझ बिन को नाही प्रभ राखण हारा राम, पतत उदाहरण हर बिरद तुम्हारा राम। पतत उदाहरण शरण स्वामी कृपा निदयाला, अंध कूप ते उदर करते सगल कट प्रतपाला। शरण तेरी कट महा बेड़ी एक नाम देह आधारा, बिनवंत नानक कर दे राखो गोबिंद दीन दयारा। सो दिन सफल गणया हर प्रभु मिलाया राम, सब सुख प्रगटया दुख दूर पराया राम। सुख सहज आनंद विनोद सदही गुण गोपाल नित गाई है, भज साध संगे मिले रंगे बहुड़ जोन ना ताई है। गह कंठ लाए सह सुभाए आदि अंकर आया, बिनवंत नानक आप मिलया बहुड़ कतू ना जाया। बिहागड़ा महला पंजवा शंत सुनो बिनंतिया, स्वामी मेरे राम कोट अपराध भरे पी तेरे चेरे राम। दुख हरण कृपा करन मोहन कल कलेसै भंजना, शरण तेरी रख ले हो मेरी सर्व मैं निरंजना। सुनत पेखत संग सब कै प्रभ नेर हूं ते नेरे, अरदास नानक सुन स्वामी रख ले हो करके चेरे। तू समरथ सदा हम दीन पिखारी राम,
माया मोहे मगन कढ लिहो मुरारी राम। लोभ मोहे बेकार बांधियो अनक दोख कमावने, अलिप्त बंधन रहत करता किया अपना पावने। कार्य अनुग्रह पतत पावन बहुजोन प्रमते हारी, बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण आधारी। तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोरी राम, पल है अकृत कना पूर्ण दृष्ट तेरी राम। अगाध बोध अपार करते मोहे नीच कछू ना जाना।

जो हर प्रभाव है सो थिया, सब करन तेरा कराया, सालाह हो हर सबना ते वड्डा, जो संत जना की पैज रखदा आया। श्लोक महला तीजा। नानक ज्ञानी जग जीता सब कोए, नामे कार्ज सिद्ध है, सहजे होए सो होए।

जी जंत सब तेरियां तू सब नारास जिसनो तू देह तिस सब किश मिलै कोई होर शरीक नाहीं तुद पास तू एको दाता सब सदा हर पै अरदास जिस दी तुद पावै तिस दी तू मन लै सो जन साबास सब तेरा चोज वरतदा दुख सुख तुद पास। श्लोक महला तीजा। गुरमुख सच्चै पावंदे दर सच्चै सच्चियार साजन मन आनंद है गुर का शब्द विचार अंतर शब्द वसाया दुख कटिया चानन किया करतार नानक रखन हारा रखसी अपनी कृपा धार। महला तीजा। गुर की सेवा चाकरी पै रचकार कमाए जिहा सेवै ते हो होवै जे चलै तसर जाए नानक सब किश आप है अवरना दूजी जाए। पौड़ी। तेरी वड़ियाई तू है जानदा तो जेवड़े अवरना कोई तो जेवड़ होर शरीक होवै ता आखी है तो जेवड़ तू है होई जिन तू सेव्या तिन सुख पाया होर तिस जी रिस करे क्या कोई तू पनन करन समरथ दातार है तुद अगे मंगनो हाथ जोड़ खली सब होई तुद जेवड़ दा तार मैं कोई नजर ना आवई तुद सब सहनो दान दिता खंडी वर पंडी पाताली पुरी सब लोई। सलोक महला तीजा। मन पर दीतना आईया सहज न लगो पाओ शब्द साध नाम पायो मन अठ क्या गुण गाए नान क्या या सो प्रवान है जे गुरमुख सच समाए। महला तीजा। अपना आपना पछाण है मूड़ा अवरा आख दुखाए मुंडे दी खसरत ना गईया अंधे विछड़ चोटा खाए सतगुर कै पह पान ना घड़ियो रह अंक समाए आंदन सहसा कदे ना चूकै बिन सबदे दुख पाए काम क्रोध लोभ अंतर सबला नित धंधा करत विहाए चरण कर देखत सुन थके देह मुके नेड़े आए सच्चा नाम न लगो मीठा जित नाम नाम निद पाए जीवत मरै मरै फुन जीवै तामो खंतर पाए तुर कर्म ना पायो प्राणी विण कर्मा क्या पाए गुर का शब्द समाल तू मूड़े गत मत शब्दे पाए नानक सतगुर तद ही पाए जा विचों आप गवाए। पौड़ी। जिसदे चित वसिया मेरा स्वामी तिसनो क्यों अंदेसा किसै गल्लै दा लोड़ी है हर सुखदाता सबना गल्ला का तिसनो त्याए दिया किम निमख घड़ी मो मोड़ी है जिन हर त्याया तिसनो सर्व कल्याण होए नित संत जना की संगत जाए बई है मोह जोड़ी है सब दुख भुख रोग गए।

माया का संबंध। नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्त अंध महला चौथा। अंधे चानन तां थीऐ जा सतगुर मिलै रजाए। बंधन तोड़ै सच वसै अज्ञाना दे राजाए। सब किश देखै तिसै का जिनकी आतन साज। नानक शरण करतार की करता रखै लाज। पौड़ी जदों आपे थाट किया बै करतै तदों पुछना सेवक बिया। तदो क्या को लेवै क्या को देवै जा अवरना दूजा किया। फिर आपे जगतो पाया करतै दान सबना को दिया। आपे से बनाईयन गुरमुख आपे अमृत पिया। आप निरंकार आकार है आपे आपे करे सोथिया। सलोक महला तीजा गुरमुख प्रभ सेवै सद साचा। अंदन सहज प्यार सदा आनंद गावै गुण साचे। अर्ध उर्ध उरतार अंतर प्रीतम वसिया। तुर कर्म लिखिया करतार नानकिया मिलाया नू आपे कृपा तार। महला तीजा कहया।

संध्या नानक संध्या करै मनमुखी जियो ना टिकै मर जमै होए खुवार महला तीजा प्रयो प्रयो करती सब जग फिरी मेरी प्यास ना जाए नानक सतगुर मिलया मेरी प्यास गई फिर पाया कर आए पौड़ी आपे तंत परम तंत सब आपे आपे ठाकर दास भया आपे दस अठ वर्ण उपाया नो आप ब्रह्म आप राज लया आपे मारे आपे छोड़े आपे बक्से करे दया आपा भुल न भुलै कभी सब सच तपावस सच थया आपे जिन्ना बुझाए गुरमुख तिन अंदरों दूजा भ्रम गया श्लोक महला पंजवां हर नाम ना सिमरै साध संग तै तन उड़ै खेह जिन कीती तसै ना जानी नानक फेटा लूनी देहे महला पंजवां घट वसै चरणार बिंद रसना जपै गोपाल नानक सो प्रभ सिमरिया तिस देही कौपाल पौड़ी आपे आपे अड़सठ तीर्थ करता आप करे इशनान आपे संयम वर्तै स्वामी आप जपाए नाम आप दयाल हुए पौखंड नो आप करै सबदान जिसनो गुरमुख आप बुझाए सो सदही दरगै पाए मान जिसदी पैज रखै हर स्वामी सो सच्चा हर जान श्लोक महला तीजा नानक बिन सतगुर भेटे जग अंध है अंधे कर्म कमाए शब्द स्यो चेतना लावई जित सुख वसै मन आए तामस लगा सदा फिराए एहनिस जलत बिहाए जो तिस भावै सो थीऐ कहना किछु ना जाए महला तीजा सतगुरु फरमाया कारिए करे हो गुरु द्वारा होए कै सब संभाले हो साहिब सदा हजूर है भरमे के छौड़ कट कै अंतर जो तरे हो हर का नाम अमृत है दारू यो लाए हो सतगुर का पाणा चित रखो संजम सच्चा ने हो नानक हथै सुख है अंदर रख सी अगे हर स्यों केल करे हो पौड़ी आपे पार अठारे बनस्पत आपे ही फल लाए आपे माली आप सब सिंचै आपे ही मुए पाए आपे करता आपे भुगता आपे दे दिवाए आपे साहेब आपे है राखा आपे रहा सुमाए जन नानक वड्याई आखे हर करते की जिसनो तिल ना तमाए श्लोक महला तीजा मानस परिया आणिया मानस परिया आए जित पीते मत दूर होए बरल पवै विच आए अपना पराया ना पछाणी खसमो धक्के खाए जित पीते खसम विसरै दरगह मिलै सजाए झूठा मद मूल ना पीचई जेका पार वसाए नानक नदरी सब सच मद पाई है सतगुर मिलै जिस आए सदा साहेब कै रंग रहै महली पावै थाओ महला तीजा एहो जगत जीवत मरै जां इसनो सोजी होए जां तिन सवालिया तां सब रहया जगाए तां सिद्ध होए नानक नदर करे जे अपनी सतगुर मिलै सोए गुर प्रसाद जीवत मरै ता फिर मरण ना होए पौड़ी जिसदा कीता सब किश होवै जिसनो परवाह नाही किसै केरी हर जियो तेरा दिता सब को खावै सामो ताजी कड्डै तेरी जे तुदनो सा लाहे सो सब किश पावै जिसनो कृपा निरंजन केरी सोई साहो सच्चा वणजारा जिन वखर लद्या हर नाम तन तेरी सब तिसैनो सा लाहे संतो जिन दूजे भाव की मार विडारी ढेरी सलोक कबीरा मरता मरता जग मुआ मर पे ना जाने कोए
ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਬੌਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਿਆ

अग्गै जाए। ज्ञानी होए सो चेतन होए, अज्ञानी अंध कमाए। नानक एथै कमावै सो मिलै, अग्गै पाए जाए महला तीजा। तुर खसमै का हुकुम पया, बिन सतगुर चेत्या ना जाए। सतगुर मिलिया अंतर रव रहया, सदा रहया लिव लाए। दम दम सदा संभालदा, दम न बिरथा जाए। जन्म मरण का पहो गया, जीवन पदवी पाए। नानक एहो मर्तबा तिसनो दे, जिसनो कृपा करे रजाए पौड़ी। आपे दाना बीनिया, आपे प्रधाना, आपे रूप दिखालदा, आपे लाए ध्याना। आपे मोनी वरतदा, आपे कथै ज्ञाना। कौड़ा किसे न लगई, सब ना ही पहना। उस्तत बरना सकी सत कुरबाना, सलोक महला पहला। कली अंदर नानका, जिन्ना दा अवतार। पुत जनूरा ती जनूरी, जोरू जिन्ना दा सिकदार महला पहला। हिंदू मूले पूले अखुटी जाही, नारद कया से पूज कराही। अंधे गुंगे अंध अंधार, पाथर ले पूजे मुद गवार। ओहे जे आप डुबे, तुम कहां तरन हार पौड़ी। सब केहो तेरा वस है, तुम सच्चा साहो। भगत रते रंग एक कै, पूरा वे साहो। अमृत भोजन नाम हर, राज राज जन खाहो। सब पदार्थ पाईयन सिमरन सच लाहो। संत प्यारे पार ब्रह्म, नानक हर अगमागा हो। श्लोक महला तीजा। सब किश हुक्मे आमदा, सब किश हुक्मे जाए। जे को मूर्ख आपो जाना, अंधा अंध कमाए। नानक हुक्म को गुरमुख बुझै, जिसनो कृपा करे रजाए। महला तीजा सो जोगी जुग सो पाए। जिसनो गुरमुख नाम प्राप्त होए, तिस जोगी की नगरी सब को वसै। भेखी जोग ना होए, नानक ऐसा विरला को जोगी। जिस कट प्रगट होए पौ

कार्यापण तामस बहुत अहंकारा किसन सदा अवतारी रूदा कित लग तरह संसारा गुरमुख ज्ञान रते जुगे अंतर चूकै मोह गुबारा सतगुर सेवा ते निस्तारा गुरमुख तरह संसारा साचै नर ते बैरागी पाए मुख द्वारा एको सच वरतै सब अंतर सबना करे प्रतपाला नानक इक्स बिन मैं अवर ना जाना सबना दीवान दयाला अवढांस महला तीजा गुरमुख सच संजम तत् ज्ञान गुरमुख साचै लगै ध्यान गुरमुख मन मेरे नाम संभाल सदा निभै चलै तेरे नाल रहाओ गुरमुख जात पात सच सोए गुरमुख अंतर सिखाई प्रभ होए गुरमुख जिसनो आप करे सो होए गुरमुख आप वडाई देवै सोए गुरमुख शब्द सच करनी सार गुरमुख नानक परवार साधार वढांस महला तीजा रसना हर साध लगी सहि सुभाए मन तृप्तिया हर नाम ते आए सदा सुख साचै शब्द विचारी अपने सतगुर विटों सदा बलिहारी रहाओ अखी संतोखियां एक लिव लाए मन संतोखिया दूजा पाओ गवाए देह शरीर सुख होवै शब्द हर नाए नाम परमल हृदय रया समाए नानक मस्तक जिस वड भाग गुर की बाणी सहज बैराग वढांस महला तीजा पूरे गुरते नाम पाया जाए सच्चा शब्द सच समाए ए मन नाम निधान तू पाए अपने गुर की मन लहर जाए रहाओ गुर कै शब्द विचों मैल गवाए निर्मल नाम वसै मन आए परमे पूला फिर संसार मर जन्मै जम करे खुवार नानक सेवट भागी जिन हर नाम ते आया।

गुर का शब्द कमाए। हुक्म मन ता हर मिले ता विचों हमें जाए रहाओ। हमें सब शरीर है, हमें उपत होए, हमें वड्डा गुबार है। हमें विच बुझ न सके कोए, हमें विच भगत ना हो वही। हुक्म ना बुझिया जाए, हमें विच जियो बंद है, नाम वसै मन आए। नानक सतगुर मिले हमें गई ता सच वसया मन आए। सच कमावे सच रहे, सच्चे सेव समाए। वडहंस महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सेज एक एको प्रभ ठाकर गुरमुख हर रावे सुख सागर। मैं प्रभ मिलन प्रेम मन आसा गुर पूरा मिलावे मेरा प्रीतम। हाँ वार वार अपने गुरु कौ जासा रहाओ। मैं अवगण भरपूर शरीरे हाँ क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे। जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया से मैं गुण नाही। हाँ क्यों मिला मेरी माया हाँ कर कर थाका उपाप बहुतेरे। नानक गरीब राखो हर मेरे। वढ़ंस महला चौथा मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी। हाँ हर प्रभ छोड़ दूजे लोभानी। हाँ क्यों कर पिर कौ मिलो एयानी। जो पिर भावे सा सुहागण साई पिर कौ मिले सियाणी रहाओ। मैं विच दोस हाँ क्यों कर पिर पावा तेरे अनेक प्यारे। हाँ पिर चेतना आवा जिन पिर रावे आ सा भली सुहागण से मैं गुण नाही। हाँ क्या करी दुहागण नित सुहागण सदा।

जल थल महियल रहया भरपूरे, निकट वसै नाही प्रभ दूरे। जिसनो नजर करे सो त्याए, आठ पैर हर के गुण गाए। जी जंत सगले प्रतपारे, शरण पर्यो नानक हर द्वारे। वढ़ंस महला पंजवा, तू वरदाता अंतर जामी। सब मैं रावया पूर्ण प्रभ स्वामी। मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा, हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ। तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता तूरे। चरण कमल हृदय उरतारे, तेरे दर्शन को जाई बलिहारे। कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा। वढ़ंस महला पंजवा, साध संग हर अमृत पीजै। ना जियो मरै ना कबहू चीजै, वडभागी गुरपुरा पाई है। गुर कृपा ते प्रभु त्याई है रहाओ। हर रतन जवाहर हर माणक लाला, सिमर सिमर प्रपय निहाला। जात कत पेख साधु सरना, हर गुण गाए निर्मल मन करना। घट घट अंतर मेरा स्वामी उठा, नानक नाम पाया प्रभु।

जह चित आवै सो थान सुहावा, जित वेला विसरै तां लागै हवा। तेरे जी तू सधी साथी, संसार सागर ते कढ दे हाथी। आवन जाना तुम्ही किया, जिस तू राखै तिस दुख ना थिया। तू एको साहिब अवर ना होर, बिनों करै नानक कर जोर। बड़हंस महला पंजवा, तू जान आए ता कोई जाने, तेरा दिया नाम खाने। तू अचरज कुदरत तेरी बिस्मा रहाओ, तुझे आपे कारण आपे करना, हुक्मे जमण हुक्मे मरना। नाम तेरा मंत्र आधारी, नानक दास बख्शीश तुम्हारी। वडहंस

सच कमाई है। जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाई है। लिखे बाजो सुरत नाही बोल बोल गवाई है। जिथे जाए बहिया भला कहिए सुरत शब्द लिखाई है। काया कूड़ विगाड़ काहे नाई है। ता मैं कहया कहण जत जय कहाया अमृत हर का नाम।

सारंग ज्यों पग धरै ठिम ठिम आप आप संदूरै श्री रंग राती फिरै माती उद गंगा वाणी बिरवंत नानक दास हर का तेरी चाल सुहावी मदराड़ी बाणी। वढ़ंस महला तीजा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद अपने पिर कै रंग रती मुइये सोभावंती नारे सच्चे शब्द मिल रहिए मुइये पिर रावे पाए प्यारे सच्चे पाए प्यारी कंत सवारी हर हर स्यो न्यो रिचाया आप गवाया ता पिर पाया गुर कै शब्द समाया सा तन शब्द सुहावी प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी नानक सा तन मिल लई पिर आपे साचे साहे सवारी निर्गुण मंत्रिये पिर देख अधूरे राम गुरमुख जिनी रावया मुइये पिर रव रया पर पूरे राम पिर रव रया पर पूरे वेख अजूरे जुजुए को जाता तन बाली भोली पिर सहज रावै मिलिया करम विधाता जिन हरा चाखिया शब्द सुपाखिया हर सर रही परपूरे नानक कामण सा पिर भावै शब्दे रह हदूरे सुहागणी जाए पुछ।

जिन्हें आप गवाया तिन्हीं फिर पाया रंग सिंह रलिया माने सदा रंग राती सहजे माती अंधन नाम वखाणे कामन वड भागी अंतर लिव लागी हर का प्रेम सुभाया नानक कामन सहजे राती जिना सच सिंगार बनाया हमें मार मुइये तू चल गुर के पाए हर वर रावे सदा मुइये निकर वासा पाए नेकर वासा पाए शब्द बजाए सदा सुहागण नारी परली आला जुबन बाला अंधन कंध सवारी हर वार सुहागो मस्तक भागो सच्चे शब्द सुहाए नानक कामण हर रंग राती जा चले सतगुर पाए वडांस महला तीजा गुरमुख सब वा पार पला जे सहजे की जय राम अंधन नाम वखाणिए लाह हर रस पी जय राम लाह हर रस लीजय हर रा विजय अंधन नाम वखाणे गुण संग्रह अवगुण विकणे आपे आप पछाणे गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चा शब्द रस पी जय नानक हर की भगत निराली गुरमुख विरलै की जय गुरमुख खेती हर अंतर बीजी हर लीजै शरीर जमाए राम अपने घर अंदर रस पुंच तू लाहा लै परथाए राम लाहा परथाए हर मन वसाए तन खेती वापारा हर नाम ते आए मन वसाए बूझे गुर बिचारा मनमुख खेती वणज कर थाके तृष्णा भुख न जाए नानक नाम बीज मन अंतर सच्चा शब्द सुवाए हर वापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम गुरमती मन निज कर वसिया सच्चा शब्द बैरागो राम मुख मस्तक पागो सच बैरागो साच रते विचारी नाम बिना सब जग बौराना शब्दे हमें मारी साचे शब्द लाग मत उपजै गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिलै पौ पंजन हर रावै मस्तक भागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वढ्याई राम।

मन मेरिया जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे व्यापारा सतगुर सेव ने अपना अंतर शब्द अपारा अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौनद पाई मनमुख माया।

तू दुख भंजन सर्व सुख दाता, हम पाथर तरे तराया। सतगुर पेट राम रस पाया, जन नानक नाम उदारे। हर तारो कृपा कर, कृपा लिहो उबारे राम। वडहंस महला।

बेखम पयंगा अंत तरंगा गुरमुख पार लंघाए हर बोहित चाड़ बड़ पागी लंगाए गुर खेवट शब्द धराए आन दिन हर रंग हर गुण गावे हर रंगी हर रंगा जन नानक निर्वाण पद पाया हर उत्तम हर पद चंगा कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम तन प्रेम हर चाबक लाया राम तन प्रेम हर हर लाए चाबक मन जिने गुरमुख जीतिया अगड़ो गड़ावे शब्द पावे अप्यो हर रस पीतिया सुन सरवण बाणी गुर बखाणी हर रंग तुरी चढ़ाया महामार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंघाया कोड़ी तेजन दे हे राम पाइया राम जित हर प्रभ जापै सा तन तन तुखाइया राम जित हर प्रभ जापै सा तन सा बासै तुर पाया किरत जुड़ंदा चढ़ देहड़ कोड़ी बिखमन गाए मिल गुरमुख परमानंदा हर हर काज रचाया पूरा मिल संत जना जन आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वादाई वडहंस महला चौथा देहे तेज नड़ी हर नवरंगिया राम गुर ज्ञान गुरु हर मंगिया राम ज्ञान मंगी हर कथा चंगी हर नाम गत मित जानिया सब जन्म सफलो किया करता हर राम नाम खानिया हर राम नाम सलाहे हर जप हर भगत हर जन मंगिया जन कहे नानक सुनो संतो हर भगत गोविंद चंगिया देहे कंचन जीन सुमिन आराम जड़ हर हर नाम रतन आराम जड़ नाम रतन गोविंद पाया हर मिले हर गुण सोकने गुर शब्द पाया हर नाम ते आया वडभागी हर रंग हर बने हर मिले सुवामी अंतरजामी हर नव तन हर नवरंगिया नानक वखाण नाम जाने हर नाम हर प्रमंगिया कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम मन मैंगल गुर शब्द वस आया राम मन वसगत आया परम पद पाया सातन कंत प्यारी अंतर प्रेम लगा हर सेती कर सोह हर प्रभ नारी हर रंग राती सहजे माती हर प्रभ हर हर पाया नानक जन हरदास कहत है वडभागी हर हर त्याया देह कोड़ी जी जित हर पाया राम मिल सतगुर जी मंगल गाया राम हर गाए मंगल राम नामा हर सेव सेवक सेवकी प्रभ जाए पावे रंग महली हर रंग माने रंग की गुण राम गाए मन सुभाए हर गुरमति मन त्याया जन नानक हर कृपा तारी देह कोड़ी चढ़ हर पाया राग वडहंस महला पंजवा शंत कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद

रोवै कंत संभाल सदा गुण सार ना फिर मरै ना जाए गुरमुख जाता शब्द पछाता साचा प्रेम समाए जिने अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता कूड़ मुठी कूड़ियारे सुनियो कंत महेलियो पिर सेवो शब्द विचारे सब जग आप पायो न।

ज्ञान में होनी मुठी बिन शब्द पिर ना पायो जन्म गवायो रोवै उगणियारी झूठी पिर जग जीवन किसनो रोई है रोवै कंत विसारे सब जग आपो पायो नो आमन जान संसारे सो पिर सच्चा सद ही साचा है ना यो मरे ना जाए भूली फिरै तन एणिया रंड बैठी दूजे पाए रंड बैठी दूजे पाए माया मोहे दुख पाए आव कटै तन शीजै जो किश आया सब किश जासी दुख लागा पाए दूजै जमकाल ना सूजै माया जग लूजै लब लोभ चित लाए सो पर साचा सद ही साचा ना एहो मरे ना जाए एक रोवै त्रै विशुनिया अंधी ना जाने पिर नाले गुरप्रसादी साचा पिर मिले अंतर सदा समाले पिर अंतर समाले सदा है नाले मनमुख जाता दूरे एहो तन रुलै रुलाया काम ना आया जिन खसम ना जाता हदूरे नानक सातन मिले मिलाई पिर अंतर सदा समाले एक रोवै पिरै विशुनिया अंधी ना जाने पिर है नाले वढांस महला तीजा रोवै पिरै विशुनिया मैं पिर सचड़ा है सदा नाले जिन्नी चलन सही जानिया सतगुर सेवै नाम समाले सदा नाम समाले सतगुर है नाले सतगुर सेव सुख पाया सबदे काल मार साची वरतार फिर आवन जान ना होया सच्चा साहेब सच्ची नाई वेखै नजर निहाले रोवै पिरो विशुनिया मैं पिर सचड़ा है सदा नाले प्रभ मेरा साहेब शब्द ऊंचा है के मिला प्रीतम प्यारे सतगुर मिली ता सहज मिली पिर राखिया उरतारे सदा उरतारे नेहो नाल प्यारे सतगुर ते पिर दिसै माया मोह का कच्चा चोला तिद पैदै पग खिसै पिर रंग नहीं पिर रंग राता सो सच्चा चोला तित पैदै तिखा निवारे पर मेरा साहेब शब्द ऊंचा है क्यों मिला प्रीतम प्यारे मैं प्रभ सच पछाणिया होर भूली अवगणियारे मैं सदा रावे पिर अपना सचड़ै शब्द

अपने गुर कहो तन मन दीजै ता मन भीजै तृष्णा दुख निवारे मैं फिर सच पछाणिया होर भूली अवगण यारे सचड़ा आप जगत उपाया गुर बिन कोर अंधारो आप मिलाए आप मिलाए आपे दे प्यारो आपे दे प्यार।

हर नाम देवहो आधारे रहाओ। मनसा मार दुबदा सै सुमानी पाया नाम अपारा। हर रस चाख मन निर्मल होवा क्रिविख काटनु हारा। शब्द मराओ फिर जीवो सद ही ता फिर मरण ना होई। अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावै कोई। दात है दात रखी हथ अपने जिस पावै तिस देई। नानक नाम रते सुख पाया दरगह जा पैसे ही। सोरठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज तुन उपजे। गात्मा तो तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वसया नामे नाम समाए। बिन सतगुर सब जग बौराना मन मुखियन दा शब्द ना जाने। झूठे परम भुलाना रहाओ त्रै गुण माया परम भुलाया। हौ मैं बंधन कमाए जमन मरन शरी उपर उबो गर्भ जौन दुख पाए। त्रै गुण वरतै सगल संसारा हौ मैं विच पत खोई। गुरमुख होवै चौथा पद चीनै राम नाम।

आपे लेखने आप लिखारी आपे लेख लिखा मेरे मन जप राम नाम यो महा अनजन अनद हो।

सोई प्रभ जाना जिसनों दे सो पाए वस्ता नूपतगमा गोचर गुरपूरा लख लखाए जिन ए चाखी सोई जाना गुंगे की मठियाई रतन लुकाया लुकै नाही जे को रखे लुकाई सब किश तेरा तू अंतरजामी तू सबना का प्रभ सोई जिसनो दात करे सो पाए जन नानक अवर ना कोई। सोरठ महला पंजवां कर पहला ते तुके एको अंकार सतगुर प्रसाद किस हों जाची किस आरादी जा सब को कीता होसी जो जो दिसे वड़ा वडेरा सो सो खाकूरल सी निरपौ निरंकार पव खंडनो सब सुख नवने देसी हर जियो तेरी दाती राजा मानस बपड़ा क्या सा लाही क्या तिसका मोहताजा रहाओ जिन हर त्याया सब के तिसका तिसकी भूख गवाई ऐसा तन दिया सुखदात है निखुट न कभी जाई अनंद पया सुख सह सुमाने सतगुर मेल मिलाई मन नाम जप नाम आराध अनदिन नाम वखाणी उपदेश सुन साध संतन का सब चुकी कान जमाणी जिन कौ किरपाल होवा प्रभ मेरा से लागे गुर की बाणी कीमत कौन करे प्रभ तेरी तू सर्व जियां दयाल।

माधवे ऐसी देह बुझाई सेवो साध गहो उठ चरना न बिस्रय मुहत छसाई रहाओ। अरे मन मुगद्या चेत चंचल चेत तुम ऐसी हृदय ना आई प्राण पत त्याग अंतु रचिया उर्ज्यों संग बैराई। सोग ना व्यापै आप ना थापै साध संगत बुध पाई साकत का बकना इउ जानौ जैसे पवन चुलाई। कोट परादा शादे ओहे मनो कहना कछु ना जाई जन नानक दीन सरण आयो प्रभ सब लेखा रखो उठाई। सोरठ महला पंजवा पुत्र कलतर लोक ग्रह बनता माया सन बंदे ही अंत की बार को खरा ना होसी सब मिथ्या असनेही रे नर काहे पपोरो देही। उड़ जाए गो तुम बादरो एक पाजो राम स्नेही रहाओ तीन संगियां कर देही कीनी। जल कूकर पस में ही होए आमरो ग्रे मैं बैठा करण कारण बिसरोही। अनक पांत कर मणिये साजे काचे ताग परोही टूट जाए गो सूत पापरे फिर पाछा पछतोही। जिन तुम सिरजे सिरज सवारे तिस त्यावो दिन रह नेही जन नानक प्रभ कृपा धारी मैं सतगुर ओट गहे ही। सोरठ महला पंजवा गुर पूरा पेट्यो वट भागी मने भया परगासा कोई ना पहुंचन हारा दूजा अपने साहिब का परवासा। अपने सतगुर कै बलिहार आगे सुख पाछा सुख सहजा कर आनंद हमारे रहाओ। अंतर जामी करण हारा सोई खसम हमारा निरपो पै गुर चरणी लागे एक राम नाम आधारा। सफल दर्शन अकाल मूर्त प्रभ है पी हो बनहारा कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा। वड्डी वडे आई अचरज शोभा कारज आया रासे नानक कौ गुर पूरा भेट्यो सगले दुख बिनासे। सोरठ महला पंजवा सुखिए कौ पेखे सब सुखिया रोगी कै भाण सब रोगी करण करावन हार स्वामी अपना हाथ संजोगी।

संत संग जाका मन शीतल ओह जाने सगली ठंडी हाउ मैं रोग जाका मन व्यापत ओह जन्म मरे बिललाती ज्ञान अंजन जाकी नेत्री पढ़िया ता कौ सर्ब परगासा अज्ञान अंधेरै सूजिस नाही बहुड़ बहुड़ परमाता सुन बेनंती स्वामी अपने नानक एहो।

सोरठ महला पंजवा तन संतन का, तन संतन का मन संतन का किया। संत प्रसाद हर नाम ते आया सर्व कुशल तब थिया। संतन बिनो अवर ना दाता बिया जो जो शरण पर साधु की सो पार ग्रामी किया रहाओ। कोट पराध मिटे जन सेवा हर कीर्तन रस गाई है। इहां सुखिया गै मुख उजल जन का संग वड भागी पाई है। रसना एक अनेक गुण पूर्ण जन की केतक उपमा कही है। अगमा गोचर सद्य अविनाशी शरण संतन की लही है। निर्गुण नीच अनाथ अपराधी

एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर नाम वा भगत भंडार गुरु नानक सौपे फिर लेखा मूल नाम लया। सोरठ महला पंजवां चरण कमल स्यों जा का मन लीना से जन तृप्त अगाई गुणिया मोल जिस हृदय ना वसया ते नर तृष्णु त्रिखाई। हरिया राधे अरोग अनदाई जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाओ। जिह जन ओट गही प्रभ तेरी से सुखिए प्रभ सरने जिह नर बिसरिया पुरख विधाता ते दुखिया मैं गरने। जिह गुरमान प्रभु लिव लाई ते महा आनंद रस करया जिह प्रभु बिसार गुरते बेमुखाई ते नरक कोर मैं परया। जित को लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक सह पकड़ी संतन की हृदय पय मगन चरनारा। सोरठ महला।

हर जन को ही सुहावे, पेख निकट कर सेवा सतगुरु, हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ। अमलन स्यों अमली लपटायो, पूमन पूम प्यारी, खीर संग बार कह लीना, प्रभ संत ऐसे हितकारी। विद्या मैं विद्यंसी रचिया, नैन देख सुख पावै, जैसे रसना साध लुभानी, त्यों हर जन हर गुण गावै। जैसी पूख तैसी का पूरक, सगल कटा का स्वामी, नानक प्यास लगी दर्शन की, प्रभ मिलिया अंतर जामी। सोरठ महला पंजवां, हम मैले तुम यूजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकर दे सारा। तुम सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा, निर्गुणी आरे गुण नहीं कोई, तुम दान दे हो मेरवाना। तुम करो भला हम भलो ना जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख विदाते, तुम राखो अपने बाला। तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचे, कहो नानक हम एह हवाला, राख संतन कै पाछे। सोरठ महला पंजवां, कर दूजा। मात गर्भ मैं अपन सिमरन दे, तह तुम रखन हारे, पावक सागर अथाह लहर मैं तारो तारन हारे। माधव तू ठाकुर सिर मोरा, इहा उहा तुहारो तुहरा रहाओ। कीते कहो मेरे सम्मान, करन हार तरन जाने, तू दाता मांगन कहो सगली, दान दे प्रभ पाने। खिन मैं अवर खिन मैं अवरा, अचरज चलत तुम्हारे, रूडो गूडो गहर गंभीरो, ऊंचो अगम अपारे। साध संग जो तुम्हें मिलायो, तो सुनी तुम्हारी बाणी, आनंद भया पेखत ही नानक, प्रताप पुरख निर्वाणी। सोरठ महला पंजवां, हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की सरना, संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना। हम संतन स्यों बने आई, पूर्व लिखिया पाई, एह मन तेरा पाई रहाओ। संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों ब्योहारा, संतन स्यों हम लाहा खाटिया, हर भगत भरे भंडारा। संतन मोको पूंजी सौंपी, तो उतरिया मन का तोखा, धर्म राय अब कहा करे गो, जो फाट्यो सगलो लेखा। महा आनंद भय सुख पाया, संतन कह प्रसादे, कहो नानक हर स्यो मन मानिया, रंग रते बिस्मादे। सोरठ महला पंजवां, जेती समगरी।

गुरपुरै दिया उपदेशा तुम ही संग पराता रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह अवमाना ता मैं सुख नहीं पाई है। हो रेन तू सगल की मेरे मन तो अंध मंगल सुख पाई है। काल ना पाने अंतर बिद जाने ता की कर मन सेवा। कर पूजा होम एहो मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा। गोविंद मुद्र दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा। नाम वर्तन नाम वालेवा नाम नानक प्राण आधारा। सोरठ महला पंजवा मृत कौ पायो तन सासा। बिशरत आन मिलाया पशु प्रेत मुग्ध पय स्रोते। हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख बढ़ाई। ताकि कीमत कहन न जाई रहाओ। दुख सो काटायो डेरा अंध मंगल बिश्रामा। मन बाइथ फल

जो कुछ करै सोई सोई जानै, रहै न कछुए शानी रहाओ। जेहबा स्वाद लोभ मद माताओ, उपजे अनक बेकारा। बहुत जोन भरमत दुख पाया, हों मैं बंधन के पारा। दे के वाड़ अनक पड़ दे मैं, परदारा संग फाकै। चित्र गुबत जब लेखा मांगै, तब कौन पड़दा तेरा टक है। दीन दयाल पूर्ण दुख पंजन, तुम बिन ओट ना काई। काढ़ लिहो संसार सागर मैं, नानक प्रभ शरणाई। सोरठ महला पंजवां, पार ब्रह्म होवा सहाई। कथा कीर्तन सुखदाई, गुरपूरे की बाणी। जप अंत करो नित प्राणी, हर साचा सिमरो भाई। साध संग सदा सुख पाईऐ, हर बिसरना कब हूं जाई रहाओ। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरै सो जीवै। जिसनो कर्म प्राप्त होवै, सो जन निर्मल थीवै। बिघ्न विनाशन सब दुख नासन, गुर चरणी मन लागा। गुण गावते अच्युत अविनाशी, अंधन हर रंग जागा। मन इच्छे से ही फल पाए, हर की कथा सुहेली। आद अंत मद नानक कहो, सो प्रभ हो आबेली। सोरठ महला पंजवां, पंच पदा। बिनसै मोह मेरा यार तेरा, बिनसै अपनी तारी। संतो यह बतावो कारी, जित हो मैं गर्भ निवारी रहाओ। सर्वभूत पार ब्रह्म कर मान्या, होवा सगल रे नारी। पेखे ओ प्रभ जीओ अपने संगे, चूके पीत परमारी। औखद नाम निर्मल जल अमृत, पाइये गुरु द्वारी। कहो नानक जिस मस्तक लिखिया, तिस गुर मिल रोग बेदारी। सोरठ महला पंजवां, कर दूजा दो पदे एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत मैं बैसंतर, सगल दूध मैं किया। ऊंच नीच मैं ज्योत समाणी, कट कट माधव जिया। संतो कट कट रया समायो, पूर्ण पूर रहो सर्व मैं। जल थल रमैया आहयो रहाओ। गुण निधान नानक जस गावै, सतगुर भरम चुकायो। सर्ब निवासी सदा अलेपा, समय रिया समायो। सोरठ महला पंजवां, जाकै सिमरन होए आनंदा। बिनसै जन मरण पै दुखी, चार पदार्थ नव निध पावै। बहुर ना तृष्णा भुखी, जा को नाम लै तू सुखी। सास सास त्यावो ठाकर कहो, मन तन जिया रे मुखी रहाओ। सांत पावै होवै मन शीतल, अग्न ना अंतर तुखी। गुरु नानक कहो प्रभु दिखाया, जल थल त्र पवन रुखी। सोरठ महला पंजवां, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा। इनते आप छड़ावो, एह पीतर ते इनको डारो। आपन निकट बुलावो, अपनी विद्या आप जनावो। हर जन मंगल गावो रहाओ। बिसर नाही कबहू ही ते, एह बिद मन मैं पावो। गुरपूरा भेट्यो वड भागी, जन नानक कतै ना तावो। सोरठ महला पंजवां, जा कै सिमरण सब कछ पाईऐ। बिरथी काल ना जाई, तिस प्रभ त्याग अवर कत राचो। जो समय रिया समाई, हर हर सिमरो संत गोपाला। साध संग मिल नाम ते आवो, पूर्ण हो वै काला रहाओ। सार संभालै नित प्रतपालै, प्रेम सहित गल लावै। कहो नानक प्रभ तुमरे बिसरत, जगत जीवन कैसे पावै। सोरठ महला पंजवां,
अबनासी जियन को दाता सिमरत सब मल खोई गुण निदान भगतन को बर्तन बिरला पावे कोई। मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई जाकी शरण पया सुख पाई है बाहुड़ दुख ना होई रहाओ। वड भागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत खोई तिन की तूर नानक दास बंछै जिन हर नाम हृदय परोई। सोरठ महला पंजवां जन्म जन्म

जी जंत प्रभ सगले उदारे दर्शन देखण हारे गुरपुरे की अचरज वडियाई नानक सदबलिहारे। सोरठ महला पंजवां संचन करो नाम तन निर्मल थाती अगम अपार बिलश विनोद आनंद सुख माण। खाए जीवो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो सच बोयथ। चढ़ लंगो बिक संसार रहाओ पय कृपाल पूर्ण अबनासी आपै कीनी सार। पेख पेख नानक बिकसानो नानक नाही सुमार। सोरठ महला पंजवां गुरपुरै अपनी कल तारी सब घट उपजी दया आपे मिल वडाई किन्नी कुशल खेम सब भया। सतगुर पूरा मेरे नाल पार ब्रह्म।

जिन जिन साध संग पाया सो प्रभ अवतराया, कर कृपा नाम रस दिया कुशल खेम सब थिया। होए प्रभु सहाई सब उठ लागी पाई, सास सास प्रभ त्याई है हर मंगल नानक गाई है। सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा, प्रभ मिलियो मन पावंदा पूरे गुर कृपा तारी, तांगत पई हमारी हर की प्रेम भगत मन लीना। नित बाजे अनहत बीना रहाओ हर चरण की ओट सतानी, सब चूकी कान लुकानी जग जीवन दाता पाया। हर रसक रसक गुण गाया प्रभ काटिया जम का फासा, मन पूर्ण होई आसा जै पेखा तै सोई। हर प्रभ बिन अवर ना कोई, कर कृपा प्रभ राखे सब जन्म जन्म दुख लाथे। निरपव नाम ते आया अटल सुख नानक पाया, सोरठ महला पंजवा ठांड पाई करतारे, ताप छोड़ गया परवारे। गुरपुर है राखी सरण सचे की ताकी, परमेसर आप हुआ रखवाला। सांत सहज सुखन मैं उपजे मन हो।

जैसा बालक भाए सुभाई लख अपराध कमावै, कर उपदेश चिड़के बहु भांति बहुड़ पिता गल लावै। पिछले अवगुण बख्श लए प्रभु आगे मार्ग पावै, हरियंत्र जामी सब जाणै ता किस पै आख सुनाई है। कहना कथन ना पीजै गोविंद हर भावै पैज रखाई है, अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है। होए दयाल किरपाल प्रभ ठाकरो आपे सुने बेनंती, पूरा सतगुर मेल मिलावै सब चूकै मन की चिंती। हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती। सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभय आनंदा, दुख कले सब नाठे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना, कार्य सगले संठे। जग जीवन नाम तुम्हारा गुरपुरै दियो उपदेसा, जा पौजल पार उतारा रहाओ।

क्या गुण तेरे आख वखाणी, कीमत कहण न जाई, पेख पेख जीवै प्रभ अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रह आप प्रभ स्वामी, पत मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बांछो संता तूरी, सोरठ महला पंजवां, गुरपुरा नमस्कारे, प्रभ सबे काज सवारे, हरे अपनी कृपा तारी, प्रपूर्ण पै सवारी, अपने दास को पयो सहाई, सगल मनोरथ कीने करते, ऊनी बात ना काई रहाओ, करते पुरख ताल देवाया, पिछे लग चली माया, तोट ना कतहू आवै, मेरे पूरे सदगुर पावै, सिमर सिमर दयाला, सब जी भय कृपाला, जय जयकार गोसाई, जिन पूरी बणत बनाई, तू पा

नानक नाम ते आया आद पुरख प्रपाया। सोरठ महला पंजवां जित पार ब्रह्म चित आया।

सोरठ महला पंजवा गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगर्द हमारे राम नाम लगा जमल जाए कर पागा प्रभ जी तू मेरो सुखदाता। बंधन काट करे मन निर्मल पूर्ण पुरख विधाता रहाओ नानक प्रभ अबनासी ता की सेवना बिरथी जासी अनंद करे तेरे दासा जप पूर्ण होई आसा। सोरठ महला पंजवा गुरे अपने बलिहारी जिन पूर्ण पै सवारी मन चंदिया फल पाया।

प्रभ अपने वर दीने सगल जीव अस कीने जन नानक नाम ते आया ता सगले दुख मिटाया। सोरठ महला पंजवा ताप गवाया गुरपुरे वाजे अनहद तूरे सर्ब कल्याण प्रभ कीने कर कृपा आप दीने। बेदन सतगुर आप गवाई सिख संत सब सरसे होए हर हर नाम ते आई रहाओ। ज्यो मंगे सो लेवे प्रभ अपने संतां देवे हर गोविंद प्रभ राखिया जन नानक साज सुपाखिया। सोरठ महला पंजवा सोई कराए जोत पावे मुहे सियाणप कछु ना आवै हम बारक तौ शरण आई प्रभ आपे पैज रखाई मेरा मात पिता हर राया। कर कृपा प्रतपालन लागा करी तेरा कराया रहाओ। जी जंत तेरे तारे प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे जेकरा वैसो करना नानक दास तेरी सरना। सोरठ महला पंजवा हर नाम हृदय परोया सब काज हमारा होया। प्रभ चरणी मन लागा पूर्ण जाके भागा मिल साध संग हर त्याया। आठ पहरिया राध्यो हर हर मन चिंदिया फल पाया रहाओ। परा पुरबला अंकर जागया राम नाम मन लागया मन तन हर दर्श समावै। नानक दास सच्चे गुण गावै सोरठ महला पंजवा। गुरमिल प्रभु चितारिया कार्ज सब सवारिया मंदा को नाया लाए सब जय जयकार सुनाए। संतो साची शरण स्वामी जी जंत सब हाथ सहकै सुप्रभ अंतर जामी रहाओ। करतब सब सवारे प्रभ अपना बिरद समारे पतत पावन प्रभ नामा जन नानक सतगुरबाना। सोरठ महला पंजवा पार ब्रह्म साज सवारिया एहो लहोड़ा गुरु उबारिया आनंद करो पित माता परमेश्वर जी का दाता। शुभ चितवन दास तुम्हारे राखे पैज दास अपने की कार्य आप सवारे रहाओ। मेरा प्रभु पर पुकारी पूर्ण कल जनधारी नानक सरणी आया मन चिंदिया फल पाया। सोरठ महला पंजवा सदा सदा हर जापे प्रभ बालक राखे आपे। शीतला ठाक रहाई बिघन गए हर नाई मेरा प्रभु होवा सदा दयाला। अरदास सुनी भगत अपने की सब जी भया कृपाला। रहाओ प्रभ करण कारण समराथा हर सिमरत सब दुख लाथा। अपने दास की सुनी बेनंती सब नानक सो

तरई कौन नाम गुरजा कै सिमरै पव सागर कौ तरई। कल मैं एक नाम कृपा निध जाहि जपै गत पावै। और धर्म ताकै सम नाहन एह बिद बेद बतावै। दुख सुख रहत सदा निरलेपी जा को कहत गोसाई। सो तुम ही मैं बसै निरंतर नानक दर्पण न्याई। सोरठ महला नावा माई मैं कह बिद लखो गोसाई। महामोह अज्ञान तिमर मो मन रहो उरजाई रहाओ। सगल जन्म परम ही परम खोयो न असर मत पाई। बिख्या सकत रहो निस्बासर न छूटी अदमाई। साध संग कबू नहीं कीना न कीर्त प्रभ गाई। जन नानक मैं नाहे को गुण राख लेहो सरनाई। सोरठ महला नावा माई मन मेरो बस ना है। निस्बासर बिख्यान कौतावत कह बिदरो कौता है रहाओ। वेद पुराण सिमरत के मत सोनो निमख ना ही ये बसावै। पर तन पर धारा स्यो रचियो बिरथा जन्म सिरावै। मद माया कै पयो बावरो सूजित ने कछ ज्ञाना। कट ही पीतर बस्त निरंजन ताको मर्म ना जाना। जब ही शरण साध की आयो दुर्मत सगल बिनासी। तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जमकी फासी। सोरठ महला नावा अरे नर एह साची जी तार। सगल जगत है जैसे सुपना बिन सत लगत ना बार रहाओ। बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार। तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार। अजहू समझ कश बिगड़ो नाहन पजले ना मुरार। कहो नानक निज मत साधन कहो पाख्यो तोहे पुकार। सोरठ महला नावा एह जग मीत ना देखियो कोई। सगल जगत अपने सुख लागे ओ दुख में संग ना होई रहाओ। दारा मीत पूत सन बंदी सगरे तन स्यो लागे। जब ही निरतन देखियो नरको संग छाड़ सब भागे।

मनुआ पौन बिंद सुखवासी नाम वसै सुख पाई जेह बा नेत्र सोतर सचराते जल बूजी तुझे बुझाई आस निरास रह बैरागी निज कर ताड़ी लाई पिखिया नाम रजे संतोखी अमृत सहज पियाई।

बिख माया चित मोहया पाई, चतराई पत खोए, चित में ठाकर सच वसै पाई, जे गुर ज्ञान समोए। रूडो रूडो आखिए पाई, रूडो लाल चलूल, जे मन हर स्यों बैरागिए पाई, दर कर साचया पूल। पाताली आकाश तू पाई, कर कर तू गुण ज्ञान, गुर मिलिया सुख पाया पाई, जूका मनो गुमान। जल मल काया मांजिए पाई, पी मैला तन होए, ज्ञान महारस नाइए पाई, मन तन निर्मल होए। देवी देवा पूजिए पाई, क्या मांगो क्या देहे, पाहन नीर पखालिए पाई, जल में बुढ़े तेहे। गुर बिन अलख ना लखिए पाई, जग बुढ़े पत खोए, मेरे ठाकर हाथ वड्याइया पाई, जय पावे तें दे। बैयर बोले मिठली पाई, साच कह पिर पाए, बिरह बेदी सच वसी पाई, अदक रही हर नाए। सब को आखे अपना पाई, गुरते बुझे सुजान, जो भी दे से उबरे पाई, शब्द सच्चा निशान। ईंधन अदक सकेलिए पाई, पाव करन चक पाए, खिन पल नाम हृदय वसै पाई, नानक मिलन सुभाए। सोरठ महला तीजा, कर पहला ते तुकी एको अंकार, सतगुर प्रसाद। भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो, तुर तू रखदा आया, प्रहलाद जन तुद राख लै हर जियो, हरनाक समार पजाया। गुरमुखा नो प्रतीत है हर जियो, मनमुख परम भुलाया, हर जी एह तेरी वडियाई। भगतां की पैज रख तू स्वामी, भगत तेरी सरनाई रहाओ। भगतां नूं जम जोहे ना साकै, काल ना नेड़े जाई, केवल राम नाम मन वसिया, नामे ही मुक्त पाई। अरिद सिद्ध सब भगतां चरणी लागी, गुर कै सहज सुभाई। मन मुखां नूं प्रतीत ना आवई, अंतर लोभ सुवाओ, गुरमुख हिरदै शब्द ना भेदियो, हर नाम ना लागा पाओ। कूड़ कपट पाज लह जासी, मनमुख फीका या लाओ, भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी, भगती हूं तू जाता। माया मोह सब लोक है तेरी, तू एको पुरख विधाता, हों मैं मार मन सामने समाणी, गुर कै शब्द पछाता। अचिंत कम करै प्रभ तिनके, जिन हर का नाम प्यारा, गुर प्रसाद सदा मन वसिया, सब का ईश्वर नहारा। ओना की रीस करे सो विगुचै, जिन हर प्रभ है रखवारा, बिन सतगुर सेवे किने ना पाया, मनमुख पौंक मोए बिललाई। आवै जावै ठौर ना पावै, दुख में दुख समाई, गुरमुख होवै सो अमृत पीवै, सहजे साज समाई। बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़ै, जे अनेक कर्म करै अधकाई, वेद पढ़ै तै वाद वखाणै, बिन हर पत गवाई। सच्चा सतगुर साची जिस बाणी, पज छूटै गुर सरनाई। जिन हर मन वसिया से दर साचे सचियारा, ओना दी सोभा जुग जुग होई, कोई न मिटन हारा। नानक तिन कै सद बलिहारै, जिन हर राखिया उर तारा, सोरठ महला तीजा दो तुकी। निगुणिया नो आपे बख्शले पाई, सतगुर की सेवा लाए। सतगुर की सेवा उत्तम है पाई, राम नाम चित लाए, हर जियो वापे बख्श मिलाए। गुणहीन हम अपराधी पाई, पूरे सतगुर ले रलाए रहाओ। कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे,
ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਭਉ ਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆਨ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇੜੈ ਚਾੜ ਮਨੂਰੈ ਤੇ ਕੰਚਨ ਭਏ ਭਾਈ ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਆਪ ਛੋੜ ਨਾਉ ਮਨ ਵਸਿਆ ਭਾਈ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰਣੈ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਤਿਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਓ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਿਨ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਿਜ ਸਮਾਓ ਗੁਰਬਿਨ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ ਭਾਈ ਪੁੱਛੋ ਗਿਆਨੀਆਂ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਕਰ ਭਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ ਗੁਰਮਤੀ ਪਉ ਉਪਜੈ ਭਾਈ ਪਉ ਕਰਨੀ ਸਚਸਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਤਿਨਕੈ ਹਉ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਜਨਮ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਭਾਈ ਕੁਲਪੀ ਲਈ ਬਖਸਾਏ ਸਚ ਬਾਣੀ ਸਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਭਾਈ ਤਿਸ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਏ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ

आओ गुर की कार कमावनी पाई आप छोड़ चित लाए सदा सहज फिर दुख न लग गई पाई हर आप वसै मन आए फिर का हुक्म ना जान पाई सा कुलखणी कुनार मन अठकार कमावनी पाई विणना मैं कूड़ियार से गावे जिन मस्तक भाग है पाई पाए सच्चा बैराग आंदन राते गुण रवे पाई निरपव गुर लिवलाग सबना मार जीवाल दा पाई सो सेवो दिन रात सो क्यों मनो विसारी है पाई जिसकी वड्डी है दात मनमुख मैली डुमनी पाई दरगै नाही थाओ गुरमुख होवै ता गुण रवै पाई मिल प्रीतम साहि समाओ एत जन्म हर ना चेतो पाई क्या मोह देसी जाए किड़ी पवंदी मोहायोन पाई बिख्या नो लोभाए नाम समालै सुख वसै पाई सदा सुख सांस शरीर नानक नाम समाल तू पाई अपरंपर गुणी गहीर सोरठ महला पंजवां कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिनै उपाया पाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई दे कर अपनी वथ किन कहिया क्यों देखिए पाई करता एक या कथ गुरु गोविंद सलाहिए पाई जिसते जापै तथ मेरे मन जपिए हर भगवंता नाम दानो दे जन अपने दुख दर्द का हंता रहाओ जाके कर सब किश है पाई नौनिद परे पंडार तिसकी कीमत ना पवे पाई ऊंचा गम अपार जी जंत प्रतपाल दा पाई नित नित करदा सार सतगुर पूरा भेटिए पाई शब्द मिलावन हार सच्चे चरण सिरेविय पाई परंप हो वै नास मिल संत सभा मन मांजिए पाई हर कै नाम निवास मिटै अंधेरा अज्ञानता पाई कमल होवै प्रगास गुर बचनी सुखी उपजै पाई सब फल सतगुर पास मेरा तेरा छोड़िए पाई होई है सब की तूर कट कट ब्रह्म पसारिया पाई पेखै सुने हजूर जित दिन विसरै पार ब्रह्म पाई तित दिन मरिए चूर करण करावन समर्थो पाई सर्व कला भरपूर प्रेम पदार्थ नाम है पाई माया मोह विनाश तिस पावै ता मेल लय पाई हृदय नाम निवास गुरमुख कमल प्रगासिया पाई हृदय होवै प्रगास प्रगट भया प्रताप प्रपाई।

माया लालच अटिया प्यारे चेतन आवै मूल जिंतु विसरै पार ब्रह्म स्वामी सेतन होए धूड़ बिललाट करै बहुतेरिया प्यारे उतरै नाही सूल जो गुरमेल सवारिया प्यारे तिनका रहया मूल साक्त संग ना की जई प्यारे जेका पार वसाए जिस मिले हर विसरै प्यारे सो मुहका लै उठ जाए मन मुख टोई नह मिलै प्यारे दरगै मिलै सजाए जो गुरमिल सवारिया प्यारे तिन्ना पूरी पाए संजम सहस स्याण पां प्यारे एक ना चली नाल जो बेमुख गोबिंद ते प्यारे तिन कुल लागै गाल होंदी वसना जातिया प्यारे कू न चली नाल सतगुरु जिना मिलाय उन प्यारे साचा नाम संभाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनो नदर करे अंदन कीर्तन गुण रवै प्यारे अमृत पूर परे दुख सागर तिन लंघिया प्यारे पवजल पार परे जिस पावै तिस मेल लह प्यारे सही सदा खरे समर्थ पुरख दयाल देओ प्यारे भगतां तिसका तान ते सरनाई टह पै प्यारे जे अंतर जामी जान हलत पलत सवारिया प्यारे मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे न विसरै प्यारे नानक सत कुरबान सोरठ महला पंजवां कर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो निवल भुवंग मसादे पंच जना स्यो संग न छुटक्यो अधिक अहं बुद्ध बादे प्यारे इन बिद मिल न जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी कै द्वारै दीजे बुद्ध बिबेका रहाओ मोन पयो कर पाती रहो नगन फिरयो बन माही तड़ तीर्थ सब धरती प्रमयो दुबदा छुटकै नाही मन कामना तीर्थ जाए बसयो सिर करवत तराए मन की मैल न उतरै एह बिद जे लख जतन कराए कनक कामनी हैवर गैवर बहु बिद दान दा तारा अन बस्तर भूम बहु अरपे न मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंधन डंडाओ तो खट कर मारत रहता हाहो करत बंधन मैं परया न मिलिए एह जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए पी कर रहया वड्डी हार जा फिर जन्मे हर स्यो संग न गया राजलीला राजन की रचना करया हुक्मया फारा सेज सोहनी चंदन चोवा नरक कोर का द्वारा हर कीर्त साध संगत है सिर कर मन कह कर्मा कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक एह रंग माता पयो कृपाल दीन दुख भंजन हर हर कीर्तन एहो मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले चौथे की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला पहला सोरठ सदा सुहावनी जे सच्चा मन होए दंदी मैल न कत मन जीबै सच्चा सोए ससरै पेयै पैवसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी रावे पिर संग सदा सिंगारी नाओ मनो कदे ना मैल पतंग देवर जेठ मोए दुख ससु का डर किस जे पिर पावे नानका कर्म मणि सब सच महला चौथा सोरठ।

हर प्रेम कसाई दिन सरात, हर रत्ती हर रंग चोले, हर जैसा पुरख ना लबई, सब देखिया जगत मैं टोले। गुर सतगुर नाम दृढ़ाया, मन अंत ना काहूं डोले, जन नानक हर का दास है, गुर सतगुर के गोल गोले। पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सृजन हारिया, तुद आपे खेल रचाए तुद आप सवारिया, दाता करता आप भोगन हारिया, सब तेरा शब्द वरत ओ पावन हारिया। हाँ गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया, श्लोक महला तीजा। हाँ मैं जल दे जल मोए, भ्रम आए दूजे पाए, पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए। एहो जग जलता नदरी आया, गुर कै शब्द सुभाए, शब्द रते से शीतल पए, नानक सच कमाए महला तीजा। सफल्यो सतगुर सेवया तन जन्म परवान, जिन्ना सतगुर जीवन दिया मोया ना विसरै सही पुरख सुजान। कुल उधारे अपना सोजन होवै परवान, गुरमुख मोए जीव दे प्रमाण है, मनमुख जन्म मराहे, नानक मोए ना आखिए जे गुर कै शब्द समाहे। पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव, हर नाम ते आई है, सतसंगत साधु लग हर नाम समाई है। हर तेरी वड्डी कार मैं मूर्ख लाई है, हां गोला लाला तुद मैं हुकुम फरमाई है। हाँ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाइया, श्लोक महला तीजा। पूर्व लिखिया कमावना जे करता आप लिखियास, मोह ठगौली पाई अन विसरिया गुणतास, मत जानो जग जीवन दा दूजे पाए मोयास। जिनी गुरमुख नाम ना चेतो से बहन न मिलनी पास, दुख लागा बहुत घना पुत कलातना साथ कोई जास, लोकां विच मोह काला होवा अंदर उबे सास, मनमुखा कोना विसही चुक गया वे सास। नानक गुरमुखा नो सुख अगला जनांतर नाम निवास। महला तीजा से सैन से सज्जना जे गुरमुख मिले सुभाए, सतगुर का पाणा अंदन करे से सच रहे सुमाए। दूजे पाए लगे सज्जन ना आखिए जे अपमान करे वेकार, मनमुख आप सुवारथी कारज ना सके सुवार। नानक पूर्व लिखिया कमावना कोई न मिटन हार, पौड़ी तुद आपे जगतो पाए कै आप खेल रचाया, त्रै गुण आप सिर

वेद पुराण सब है मत सुन के करी कर्म की आसा। काल ग्रस्त सब लोग सियाने उठ पंडित पै चले निराशा। मन रे सरयो ना एक काजा भजियो नारग पत राजा रहाओ। बन खंड जाए जोग तप कीनो कंद मूल चुन खाया। नादी बेदी सबदी मोनी जम के पटाए लिखाया।

सबै जग ऊपर माहे लिखे परम ज्ञानी, कहो कबीर जन पहे खालसे प्रेम भक्त जय जानी। कर दूजा दोए दोए लोचन पेखा, हाँ हर बिरया और ना देखा,

बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई, बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवै अकेला। कथनी कह परम ना जाई, सब कथ कथ रही लुकाई, जा कहो गुरमुख आप बुझाई ता कह हृदय रहा समाई। गुर किंचित कृपा कीनी सब तन मन दे हर लीनी, कह कबीर रंग राता मिलियो जग जीवन दाता। जाके निगम दूध के ठाटा, समुंद बिलोवन कौ माटा, ताकि हो बिलोवन हारी क्यों मेटै गोशास तुहारी। चेरी तू राम ना करस पतारा, जग जीवन प्राण आधारा रहाओ। तेरे गलह तौक पग बेरी, तू घर घर रमैया फेरी, तू अजो ना चेतस चेरी। तू जम बपरी है हेरी, प्रभ करन करावन हारी, क्या चेरी हाथ बिचारी, सोई सोई जागी जितलाई ततलागी। चेरी तै सुमत कहां ते पाई, जाते भ्रम की लीक मिटाई, सो रस कबीर जानिया मेरो गुरप्रसाद मन मानिया। जह बाज ना जिया जाई, जो मिले ता कालिया गाई, सद जीवन भलो कहां ही, मुए बिन जीवन नाही। अब क्या कथिया ज्ञान बिचारा, निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ। कस कुंकुम चंदन गारिया, बिन नैनो जगत निहारिया। पूत पिता एक जाया, बिन ठाहर नगर बसाया, जाचक जनदाता पाया, सो दिया न जाई खाया। छोड़िया जाए न मुका, औरन पहजाना चूका, जो जीवन मरना जाने सो पंच सैल सुख माने। कबीर है सो तन पाया, हर पेट ते आप मिटाया। क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सह जन्म लियो सोई। हर का नाम ना जप सगवारा, क्या सोचे बारंबारा रहाओ। अंधेरे दीपक चाहिए, एक बस्ता गोचर लहिए, बस्ता गोचर पाई कट दीप करे आसमाई। कह कबीर।

हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलोभ सपानी, काया मांजस कौन गुना, जौ कट पीतर है मलना रहाओ, लौकी अड़सर तीर्थ नाई, कौरा पंतऊ ना जाई, कह कबीर बिचारी, पवसागर तार मुरारी सोरठ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, बहु परपंच कर पर धन लियावै, सुदारा बयान लुटावै, मन मेरे पूले कपट ना कीजै, अंतन बेरा तेरे जी पैली जह रहाओ, छिन छिन तन छीजै, जरा जनावै तब तेरी ओक कोई पानियो ना पावै, कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की ना जपै सवेरा, संत हो मन पमने सुख बनया, कि जोग प्राप्त गनया रहाओ, गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंद लिए दरवाजे, बाजी आले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटिया उबा करिया, कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया, राग सोरठ भूखे भगत ना कीजै, यह माला अपनी लीजै, हाँ मांगो संतन रेना, मैं नाही किसी का देना, माधो कैसी बने तुम संगे, आप ना देहो ता ले वो मंगे रहाओ, दोए शेर मांगो चूना, पाओ की ओ संग लूना, अध शेर मांगो दाले, मोको दोनों वक्त जवाले, खाट मांगो चौपाई, सरहाना अवर तुलाई, ऊपर को मांगो खींदा, तेरी भगत करे जन थींदा, मैं नाही कीता लबो, एक नाम तेरा मैं फबो, कह कबीर मन मानिया, मन मानिया तो हर जानिया, राग सोरठ बाणी भगत नाम दे जी की, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जब देखा तब गावा, तौ जन तीरज पावा, नाद समाए लोरे सतगुर पेटले देवा रहाओ, जह चिल मिलकार दिसंता, तै अनहद शब्द बजंता, ज्योति ज्योत समानी, मैं गुर प्रसादी जानी, रतन कमल कोठरी, चमकार बिजल तही, नेरै नाही दूर, निजात मैं रया भरपूर, जय अनहत सूर उजियारा, तह दीपक जलै शंशारा, गुर प्रसादी जानिया, जन नामा सहे समानिया, कर चौथा सोरठ, पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा, का पहचान शिवाई हो, तो पै दुगनी मजूरी दहाओ, मोको बेडी देहो बताई हो, रिबाई बेडी दे न जाई, देख बेडी रे उसमाई, हमारे बेडी प्राणे आधारा रहाओ, बेडी प्रीत मंजूरी मांगे, जौ को शान शिवावे हो, लोग को टंब सबोते तोरे, तो अपन बेडी आवे हो, ऐसो बेडी बर्न ना सको, सब अंतर सब ठाई हो, गुंगे महा अमृत रस चाखिया, पूछे कह न जाई हो, बेडी के गुण सुन री बाई, जल्द बांध तू था प्यो हो, नामे के स्वामी सी बहोरी, लंकप भीखण आप्यो हो, सोरठ करती जा, अड़मड़िया मंदल बाजै, बिन सावन कन हर

तुम शरणागत राजा रामचंद, कहरव दास चुमारा, चमरटा गांठ ना जनई, लोग गठा वै पन ही रहाओ। आर नहीं जे तो पो, नहीं रामबी ठाओ रो पो, लोग गंठ गंठ खरा बिगूचा, हम बिन गंठे जाए पहुचा। हरवदास जपै राम नामा, मोहे जमस्यो नाही कामा। राग सोरठ बाणी भगत पेखन की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नैनो

माथे पीर शरीर जलन है, करक करे जे माही, ऐसी बेदन उपज खरी पई, वा काय औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल, एहो औखद जग सारा, गुर प्रसाद कह जन पीखन, पावो मुख द्वारा। ऐसा नाम रतन निर्मोलक, पुन पदार्थ पाया, अनक जतन कर हृदय राखिया, रतन ना छपै छपाया। हर गुण कहते कह ना जाई, जैसे गूंगे की मिठाई, रहाओ रसना रमत, सुनत सुख श्रवना, चित चेते सुख होई, कहो पीखन दोए नैन संतोखे, जै देखा तै सोई। तनासरी महला पहला, कर पहला चौपदे, एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरपौ निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद। जियो डरत है अपना, कैसे करी पुकार, दुख विसारन सेवया सदा सदा दातार। साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दातार रहाओ, अंदन साहेब सेविया, अंत छिडाए सोए, सुन सुन मेरी कमनी, पार उतारा होए। दयाल तेरे नाम तरा, सद कुरबान जाओ रहाओ, सरबंग साचा एक है, दूजा नाही कोए, ता की सेवा सो करे, जा को नदर करे, तुदवाज प्यारे केव रहा, सा वड़ियाई दे, जित नाम तेरे लाग रहा, दूजा नाही कोए, जिसे आग्या प्यारे जाए कहां रहाओ। सेवी साहेब अपना, अवर न जाचों कोए, नानक तांका दास है, बिंद बिंद चुख चुख होए, साहेब तेरे ना विटाओ, बिंद बिंद चुख चुख होए, रहाओ। तनासरी महला पहला, हम आदमी हां एकदमी, मोहलत मोत ना जाना, नानक बिनवैत सरे वो, जाके जी पराना। अंधे जीवना विचार, देख के ते के दिना रहाओ, सास मां सब जियो तुम्हारा, तू मैं खरा प्यारा। नानक सायर एव कहत है, सच्चे परवदगारा, जे तू किसे ना देही मेरे साहेबा, क्या को कड्डे गहना। नानक बिन मैं सो किश पाई है, पुरब लिखे का लहना, नाम खसम का चेतना किया, कपटी कपट कमाना। जम द्वार जा पकड़ चलाया, ता चलदा पछताना। जब लग दुनिया रही है नानक, किस सुनिया किस कही है, पाल रहे हम रहन ना पाया, जीवत अमर रही है। तनासरी महला पहला, कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद क्यों सिमरी, सिवरिया नहीं जाए, तपह आओ जियड़ा बिललाए, सिरज सवारे साचा सोए, तिस विसरे चंगा क्यों होए, हिकमत हुक्म ना पाया जाए, क्यों कर साच मिलो मेरी माए, रहाओ वखर नाम देखन कोई जाए। ना को चाखे ना को खाए, लोक पतिने ना पत होए, ता पत रहे राखे जा सोए, जै देखा तै रहा समाए, तुद बिन दूजी नाही जाए। जे को करे कीते क्या होए, जिसनों बख्से साचा सोए, हुण उठ चलना मोहत के ताल, क्या मोदिसा गुण नहीं नाल, जैसी नदर करे तैसा होए, विण नदरी नानक नहीं कोए। तनासरी महला पहला, नदर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवै रहे लिवलाए, आत्मा प्रात्मा एको करै, अंतर की दुबदा अंतर मरै, गुर प्रसादी पाया जाए, हर सो चित लागै, फिर काल ना खाए रहाओ। सच सिमरिया होवै प्रगास, ताते बिख्या मैं रह उदास, सतगुर की ऐसी वड्याई, पुत्र कलत्र विचे गत पाई, ऐसी सेवक सेवा करै,
ਜਿਸਕਾ ਜੀਉ ਤਿਸਿਆ ਗੈ ਧਰੈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦਰਗੈ ਪਾਵੈ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਏ ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਮਤੇ ਕੈਸਾ ਡਰੈ ਭਣਤ ਨਾਨਕ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕੋ ਪਾਵੈ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਜਪ ਤਪ ਸਭ ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਰ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ

सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए, पवखन्ना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ। सहस तव नैन नन नैन है तोहे कहो, सहस मूर्त ननायक तोही, सहस पद बिमलो ननेक पद गंध बिन। सहस तव गंध विचलत मोही, समय जोत जोत है सोए, तिसके चानन समय चानन होए, गुरसाखी जोत प्रगट होए। ज्योतिष पावे सो आरती होए, हर चरण कमल मकरंद लोभत मानो, अन दिन मोहे आही प्यासा। कृपा जल देह नानक सारिंग कहो, होए जाते तेरे नाम वासा। तनासरी महला तीजा, घर दूजा चौपदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। एहो तान्या खुट नान खुटै ना जाए, पूरे सतगुर दिया दिखाए। अपने सतगुर को सदबल जाई, गुर कृपा ते हर मन वसाई। से तन मंत हर नाम लिव लाए, गुर पूरे हर तन परगासिया। हर कृपा ते

पूरे गुरु की साची बाणी, सुख मने अंतर सहि समाणी, एक आचार्य जन देखो पाई, दुबदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, सब मैं वसै प्रवे को सोए, गुरमती घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया, तनासरी महला तीजा, हर नाम तन निर्मल अत्या पारा, गुर कै शब्द भरे भंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोह जल अभमान, गुरमुख हर रस चाखै कोय, तिसदा आनंद होवै दिन राती, पूरे भाग प्राप्त होए रहाओ, शब्द दीपक वरतै तिहो लोए, जो चाखै सो निर्मल होए, निर्मल नाम हौ मैं मल तोए, साची भगत सदा सुख होए, जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग, तिसदा हरख नाही कदे सोग, आप मुगत अवरा मुक्त करावै, हर नाम जपै हर ते सुख पावै, तिन सतगुरु सब मुई बिललाए, अंदंदा जय सांत ना पाए, सतगुर मिलै सब तृष्ण बुझाए, नानक नाम सां सुख पाए, तनासरी महला तीजा, सदा तने अंतर नाम संभाले, जी जंत जिनै प्रतपाले, मुक्त पदार्थ तिन कौ पाए, हर कै नाम रते लिवलाए, गुर सेवा ते हर नाम तन पावै, अंतर प्रगास हर नाम ते आवै रहाओ, एहो हर रंगूड़ा तन पिर होए, संत सिंगार रावे प्रभ सोए, हम मैं विच प्रभ कोय ना पाए, मुलों पुला जन्म गवाए, गुर ते सांत सहज सुख बाणी, सेवा साची नाम समाणी, शब्द मिलै प्रीतम सदा ते आए, सच नाम वड्याई पाए, आपे करता जो जुग सोए, नदर करे मेलावा होए, गुरबाणी ते हर मन वसाए, नानक साजर ते प्रभ्या मिलाए, तनासरी महला तीजा तीजा, जग मैला मैलो होए जाए, आवै जाए दूजे लोभाए, दूजे पाए सब पर जब गोई, मनमुख चोटा खाए, अपनी पद खोई, गुर सेवा ते जन निर्मल होए, अंतर नाम वसै पति उत्तम होए रहाओ, गुरमुख उबरे हर सरनाई, राम नाम राते भगत दरड़ाई, भगत करे जन्म डियाई पाए, साच रते सुख सहि समाए, साचे का गाहक विरला को जान, गुर कै शब्द आप पछाण, साची रास साचा वापार, सो तन पुरख जिस नाम प्यार, तिन प्रभ साचा एक सच लाए।

बहुते फेर पए कृपन कहो अब किस कृपा कीजै। हो दयालो दर्शन देहो अपना आपी ऐसी बस करी जै। पणत नानक परम पट खूले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सतगुर स्यो मन मानिया। तनासरी महला चौथा कर पहला चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद। जो हर सेवै संत भगत तिनके सब पाप निवारी हामी ऊपर कृपा कर स्वामी रख संग तुम जो प्यारी। हर गुण कह न सको बनवारी हम पापी पाथर नीर डुबत कर कृपा पाखण हम तारी रहाओ। जन्म जन्म के लागे विख मोरचा लग संगत साध सवारी ज्यों कंचर बै संतर तायो मल काटी करते उतारी।

हर हर हर औखत जग पूरा जप हर हर हों मैं मारी। हर हर अगम अगाध बोध अपरंपर पुरख्या पारी। जन को कृपा करो जग जीवन जन नानक पै सवारी। तनासरी महला चौथा हर के संत जना हर जपयो तिनका दुख भरम पौ भागी। अपनी सेवा आप कराई गुरमते अंतर जागी। हर कै नाम रता बैरागी हर हर कथा सुनी मन पाई। गुरमत हर लिव लागी रहाओ संत जना की जात हर स्वामी तुम ठाकर हम सांगी। जैसी मत देवो हर स्वामी हम तैसे बुलग बुलागी। क्या हम किरम नानक कीरे तुम वड पुरख वडागी। तुमरी गत मित कह ना सके प्रभ हम क्यों कर मिलया पागी। हर प्रभ स्वामी कृपा तारो हम हर हर सेवा लागी। नानक दास संदास करो प्रभ हम हर कथा कथागी। तनासरी महला चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा। जो बोले हर हर बानी जो जो कह सुने सो मुक्ता हम तिस कह सतगुर बानी। हर के संत सुनो जस कानी हर हर कथा सुनो एक निमुख पाल। सब किलविख पाप लह जानी रहाओ। ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरख वडानी। तिनकी तूर मंगै प्रभ स्वामी हम हर लोच लुचानी। हर हर सफलियो बिरख प्रभ स्वामी जिन जपियो से तृप्तानी। हर हर अमृत पी तृप्ता से सब लाथी पूख पुखानी। जिनके वडे भाग वड उचे तिन हर जपियो जपानी। तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दा दसानी। तनासरी महला चौथा हम अंधले अंध बिखै बिखराते क्यों चाले गुर चाली। सतगुर दया करे सुखदाता हम लावे अपन पाली। गुरसिख मीत चलो गुर चाली जो गुर कह सोई पल मानो। हर हर कथा निराली रहाओ हर के संत सुनो जन पाई। गुर सेवो बेग बेगाली सतगुर सेव खर्च हर बांधाओ मत जानो वाज के काली। हर के संत जपो हर जपना हर संत चले हर नाली। जिन हर जपया से हर होए हर मिलिया केल के लाली। हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली। जन नानक संगत साध हर मेलो हम साज जना पगराली। तनासरी महला चौथा हर हर बूंद पए हर स्वामी हम चात्रक बिलल बिललाती। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देवो हर निमखाती। हर बिनो रह न सको एक राती जो बिन अमल अमली मर जाई है। त्यों हर बिनो हम मर जाती रहाओ। तुम हर सरवर अत अगाह हम लह न सके अंत माती। तू पर परे अपरंपर स्वामी मित जानो अपन गाती। हर के संत जना हर जपयो गुर रंग चलू लै राती। हर हर भगत बनियत सोभा हर जपयो उत्तम पाती। आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावै पाती। नानक जन तुमरी शरण आई हर राखो लाज पगाती। तनासरी महला चौथा कलयुग का धर्म कहो तुम पाई किव छूटे हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर जपयो तरह तरा की। हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगते का की रहाओ। हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपयो हर बचना की।
लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जमकी बाकी। हर के संत जपियो मन हर हर लग संगत साध जना की। दिन यार सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चरियो चंद चंदा की। तो वड पुरख वड अगम्या गोचर तुम आपे आपे आपा की। जन नानक कहो प्रभ कृपा की जय कर दस दसा की। तनासरी महला चौथा कर पंजवा दोपद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। उर धार विचार मुरार रमो रम मन मोहन नाम जपीने। अदृष्टा गोचर परंपर स्वामी गुरपुरै प्रगट कर दीने। राम पारस चंदन हम काष्ट लोष्ट हर संग हरी सतसंग पहे। हर कंचन चंदन कीने रहाओ नाम शे खट बोले मुख आगर मेरा हर प्रभ इवना पतीने। जन नानक हर हृदय सत्यावो इव हर प्रभ मेरा पीने। तनासरी महला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर एव हर हर नाम ते आई। हर दर गै पावे फिर जन्म ना आवे हर हर हर ज्योत समाई। जप मन नाम हरी होहे सर्व सुखी हर जस ऊच सबना ते ऊपर। हर हर हर सेव छडाई रहाओ हर कृपा निध कीनी गुर भगत हर दीनी। तब हर स्यों प्रीत बने आई बहु चिंत विसारी हर नाम ओर तारी। नानक हर पय है सिखाई तनासरी महला चौथा। हर पढ़ हर लेख हर जप हर गाओ हर भोजन पार उतारी। मन बचन हृदय ते आए हर होए संतुष्ट एव पण हर नाम मोरारी। मन जपिए हर जगदीश मिल संगत साधु मीत। सदा आनंद होवे दिन राती हर कीर्त कर बनवारी रहाओ। हर हर करी दृष्ट तब भयो मन उद्यम हर हर नाम जपियो गत ही पई हमारी। जन नानक की पत राख मेरे स्वामी हर आए पर्यो है शरण तुम्हारी। तनासरी महला चौथा चौरासी सिद्ध बोत तीस कोट मुन जानो सब चाहे हर जियो तेरो नाओ। गुर प्रसाद को बिरला पावे जिन कौल लाट लिखिया तुर पाओ। जप मन रामै नाम हर जसी उत्तम काम। जो गावे सुने तेरा जस स्वामी हम तनकै सद बलिहारै जाऊं रहाओ। शरणांगत प्रतपालक हर स्वामी जो तुम देहो सोई हाँ पाओ। दीन दयाल कृपा कर दीजै नानक हर सिमरन का है चाओ। तनासरी महला चौथा। सेवक सिख पूजन सब आवै सब गावे हर हरि उत्तम बानी। गाव्या सुनिया तनका हर थाए पावै। जिन सतगुर की आग्या सत सत करमानी। बोलो पाई हर कीर्त हर पवजल तीर्थ हर दर्तन की उत्तम बात है संतो। हर कथा जिन जनो जानी रहाओ। आपे गुरचेला है आपे आपे हर प्रभ चोज विडानी। जन नानक आप मिलाए सोई हर मिलसी। अवर सब त्याग ओहा हर पानी। तनासरी महला चौथा। इच्छा पूरक सर्व सुखदाता हर जां कै वस है काम तेना। सो ऐसा हर त्याई है मेरे जी अड़े ता सर्व सुख पाव है मेरे मना। जप मानो सतनाम सदा सतनाम। हालत पलत मुखी उज्जल होई है नित त्याई है हर पुरख निरंजना रहाओ। जय हर सिमरन पया तहे उपाद गत कीनी वडपागी हर जपना। जन नानक कौ गुर एह मत दीनी जप हर पवजल तरना। तनासरी महला चौथा।

साहा सब तुझी महेश माहे सबना की तू आस है मेरे प्यारे सब तुझे ते आवे मेरे साहा ज्यों पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह तनासरी महला पंजवां कर पहला चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद पवखंडन दुख पंजन स्वामी भगत वच्छल निरंकारे कोट प्राद मिटे खिन पीतर जां गुरमुख नाम सुमारे मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभ कृपा वासकीने पंच दूतारे रहाओ तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सुहै दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लिहो उबारे तेरा वर्ण ना जापै रूप ना लखिया तेरी कुदरत कौन बिचारे जल थल महियल रविया सर्ब ठाई अगम रूप गिरधारे कीर्त करे सगल जन तेरी तू अबनासी पुरख मुरारे ज्यो पावे त्यों राखो स्वामी जन नानक शरण दुआरे तनासरी महला पंजवा बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल सो हेत बढ़ायो कमल हेत बिन सो है पवरा।

काम हेत कुंचर लै फांक्यो ओ परवस भयो बिचारा नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उसी हेत बेदारा देख कुटांब लोभ मोहयो प्राणी माया कौ लपटाना अत रचियो कर लीनो अपना उण छोड़ सरा पर जाना बिन गोबिंदो अवर संग नेहा ओ जानो सदा दुहेला कहो नानक गुर एह बजायो प्रीत प्रभु सदकेला तनासरी महला पंजवां कर कृपा दियो मोहे नामा बंधन ते छुटकाए मन ते बिसरियो सगलो तंदा गुर की चरनी लाए साध संग।

गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पानी कहो नानक जिन जनते काढ़े तिस गुर कै कुर्बानी। तनासरी महला पंजवा जिसका तन मानो तन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनया दुख सुख मेरा तौ बिद नेकी खटानी जी की कै ही पहमानी। अवर जतन कर रहे बहु तेरे तिन तल नहीं कीमत जानी। रहाओ अमृत नाम निर्मोल कहीरा गुरदीनो मनतानी। डिगै न डोलै दृढ़ कर रहे हो पूर्ण होए तृपतानी। ओए जो बीच हम तुम कश होते तिन की बात बिलानी। अलंकार मिल थैली होई है ताते कनक वखानी। प्रगट्यो जो तो सहज सुख सोभा बाजे अनहत बानी। कहो नानक निचल कर बांधियो गुर की ओ बंधानी। तनासरी महला पंजवा वडे वडे राजन यार पूमन ताकि त्रिशन ना बूझी। लपट रहे माया रंग माते लोचन कछु ना सूजी। बिखिया मैं किन्ही तृप्त ना पाई ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रपै बिन हर कहां आगाई। रहा हो दिन दिन करत

कामवंत कामी बहुनारी परग्रे जोहन चुके दिन प्रत करे करे पछतापे सोग लो मैं सूके हर हर नाम अपारिया मोला अमृत एक निधाना सुख सहज आनंद संतन कै नानक गुर ते जाना तनासरी महला पंजवा लवे न लागन कहो है कछु है जाको फिर एहो तावै जाको गुर दीनो एहो अमृत तिस ही को बन आवै जाको आयो एक रसा खान पान आन नहीं खुदया ता कै चेतना बसा रहाओ मौल्यो मंतन होयो हरिया एक बूंद जिन पाई बरना साको उसता की कीमत कहन न जाई काल ना मिलियो सेव ना मिलियो मिलियो आए चिंता जाको दया करी मेरा ठाकर तिन गुरै कमानो मंता दीन दयाल सदा कृपाला सर्ब जिया प्रतपाला ओत पोत नानक संग्रव्या जो माता बाल गोपाला तनासरी महला पंजवा बार जाओ गुरे अपने ऊपर जिन हर हर नाम दृढ़ाया महा उद्यान अंधकार में जिन सीधा मार्ग

चंदन लेप होत देह कौ सुख गर्दप भस्म संगीत अमृत संग नाहे रुच आवत बखैठ गौरी प्रीत। उत्तम संत भले संजोगी इस युग में पवित पुनीत जात अकारथ जन्म पदार्थ काज बाद रह जीत। जन्म जन्म के किलवख दुख भागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत। साध संग इन दुखते निकसो नानक एक प्रीत। तनासरी महला पंजवा पानी पखा पीसो संत आगे गुण गोविंद जस गाई सास सास मन नाम समारे विश्राम निद पाई। तुम करो दया।

देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन, प्राण पत चित राखो सगल है मरना रहाओ।

मंत्र राम नाम हितकारे सुख सहज आनंद मंगल सहित पवनित पार उतारे रहाओ तन सो थान तन ओए पवना जा मैं संत बसारे जन नानकी सरदा पूरो ठाकर भगत तेरे नमस्कारे तनासरी महला पंजवां छडाए लियो महाबली ते अपने चरण परात एक नाम दियो मन मंता बिनसना कथूं जात सतगुर पूरे कीनी दात हर हर नाम दियो कीर्तन कहो पई हमारी गात हरहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात तनासरी महला पंजवां पर हरना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी ए टेक मन सादारी सागत किया वरदा जाय बिरथारी जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त साजना संगारी तनासरी महला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म रह जाती रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कै चरण कमल निध थाती रहाओ जिसका सा तिन ही रख लिया पूर्ण प्रभ की पाती मेल लियो आपे सुखदाता नानक हर राखी पाती तनासरी महला पंजवा दूत दुश्मन सब तुझ ते निवरै प्रगट प्रताप तुम्हारा जो जो तेरे भगत दुखाए ओह तत्काल तुम्हारा निरखो तुमरी ओर हर नीत मुरार सहाय हो दास कहो कर गए उधरो मीत रहाओ सुनी बेनती ठाकुर मेरे खसमा ना कर आप नानक अंध भय दुख पागे सदा सदा हर जाप तनासरी महला पंज

नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। तनासरी महला पंजवां औखी कड़ी ना देखन देई अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रतपाले। प्रभ सिओ लाग रहे हो मेरा चीत आद्यंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा मीत रहाओ। मन बिलास पए साहेब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूर्ण पैज रखाई। तनासरी महला पंजवा जिसको बिसरे प्राण पत दाता सोई गनो अभागा चरण कमल जाका मन रंगेओ। अमै सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस छीज गया सब तंते प्रीतम सिओ मन लागा रहाओ। जय जय पेखो तै नारायण सगल कटा मैं तागा नाम उदक पीवत जन नानक त्यागे सब अनदागा। तनासरी महला पंजवा जन के पूर्ण होए काम कली काल महा बिख्या मह लज्जा राखी राम रहाओ। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट ना आवै जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का धाम चरण कमल हर जन की थाती कोट सुख विश्राम। गोबिंद मोदर सिमरो दिन रैन नानक सत कुरबान।

स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मदयंत प्रभ जापण नानक रंग लगा परमेसर बाहुड़ जन्म ना छापण तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते सब थोक मानख कहो जाचत शरम पाई है प्रभ कै सिमरन मोख रहाओ कोखे मुनजन सिमरत पुराना वेद पुकारै कोख कृपा सिंध सेव सच पाई है दोवै सोहेले लोक आन आचार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक नानक जन्म मरण पह काटे मिल साधु बिन से सोक तनासरी महला पंजवा तृष्णा बुझ

जन जाई सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई रहाओ। पोह पंबद ज्यों बास बस्त है मुकरमा है जैसे शाई तैसे ही हर बसे निरंतर कट ही खोजो पाई। बाहर भीतर एको जाना एहो गुर ज्ञान बताई जन नानक बिन आपा चीना मिटे ना परम की काई। तनासरी महला नावा साधो एहो जग परम पुलाना।

माया ममता फुनो जेह कट महे पिछाना हो रहाओ। पर निंदा उस्तत न जाकै कंचन लोह समानो, हर सोग ते रह अतीता जोगी ताहे बखानो। चंचल मन दै दिस कौ धावत वा चल जाहे ठहरानो, कौ नानक बिद को जो नर मुक्त ताहे तुम मानो। तनाश्री

जन्म पाए कछ पलो न कीनो ताते अधिक डराओ मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए यह जी सोच तरो गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजो पस ज्यो उदर भरो कहो नानक प्रभ बिरद पछानो तब हाँ पतत तरो तनासरी महला पहला कर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरसागर रतनी भरपूरे अमृत संत चुगै नहीं दूरे हर चुग चुगै प्रभावै सरवर मै हंस प्राण पत पावै क्या पग बपड़ा छपड़ी नाए कीचड़ डूबै मैल ना जाए रहाओ रख रख धर्म रख रख चरण धरे विचारी दुबदा छोड़ पै निरंकारी मुक्त पदार्थ हर रस चाखे आवन जान रहे गुर राखे सरवर हंसा छोड़ ना जाए प्रेम भगत कर सह समाए सरवर मैं हंस हंस मैं सागर अकथ कथा गुरबचनी आदर सुन मंडलिक जोगी बैसे नारना पुरख कहो को कैसे तिर पवन जोत रहे लिव लाई सुर नरनाथ सचे सरनाई आनंद मूला नाथ आधारी गुरमुख भगत सहज बिचारी भगत वछल पै काटन हारे हमे मार मिले भगतारे अनक जतन कर काल संताए मरण लिखाए मंडल मैं आए जन्म

जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद कहो जे मनपति आए। साचे निर्मल मैल न लागे, गुर कै शब्द भरम पौ भागै। सूरत मूर्त आदि अनूप, नानक जाचै साच स्वरूप। तनासरी महला पहला, सहज मिलै मिलिया प्रवान। नात स्मरण न आवण जान, ठाकुर मैं दा दास मैं सोए। जै देखा तै अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाई। बिन गुर भेटे मरियाई जाइए, रहाओ सो गुर करो जे साज दृढ़ावै। अकथ कथावै शब्द मिलावै, हर के लोग अवर नहीं कारा। सचो ठाकर सच प्यारा, तन मैं मनुआ मन मैं साचा। सो साचा मिल साचे राचा, सेवक प्रभ कह लागै पाए। सतगुर पूरा मिले मिलाए, आप दिखावै आपे देखै। हठ ना पतीजै ना बहु पेखै, घट पांडे जन अमृत पाया। प्रेम भगत ब्रह्मन पति आया, पढ़ पढ़ भूलै चोटा खाहे। बहुत सियाण पयावै जाहे, नाम जपै पौ भोजन खाए। गुरमुख सेवक रहे समाए, पूज सिला तीर्थ बनवासा। परमत डोलत पय उदासा, मन मिलै सूचा क्यों होए। साच मिलै पावै पत सोए।

पंचा कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरा हृदय संचा जे तेरे तीर्थ नाए अहम बुद्ध मैल लाए कर को ठाकुर एक तिल ना माने कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन सुनाने सगलिया शर्म कीने मनुआ नह पतीने बबेकहीन देही तोए कोई पाई है रे पुरख विधाता पार ब्रह्म कै रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म धर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पड़े कही ना लेखै जिस भेटिए सफल मूर्त करै सदा कीर्त गुर प्रसाद को नेत्रों पेखै मन अठ जो कमावै तिल ना लेखै पावै बगल जो ध्यान लावै माया रे तारी कोई ऐसो रे सुखैदाई प्रभु की कथा सुनाई तिस भेटे गत होए हमारी सो प्रसन्न गोपाल राय काटै रे बंधन माए गुर कै शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद भेट्यो निरभय गोबिंद सुख नानक लादे हर चरण पराता सफल सफल पई सफल यात्रा आवन जान रहे मिले सादा रहाओ दूजा तनासरी महला पहला शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद तीर्थ नामन जाओ तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ दस पूर्व सदा दसहरा हो नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ तरणी तरा संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना गुरवाग निर्मल सदा चानन ने साच तीर्थ मजना साच ना लागे मैल क्या मल तोई है गुणे हर परोए किसको रोई है विचार मारे तरह तारे उल्ट जोन ना आवे आ पारस परम त्यानी साच साचे पावे आनंद अंदर हरख साचा दुख किलविख पर हरे सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने संगत मीत मिलाप पूरा नावनो गावे गावन हार शब्द सुहावनो साला हे साचे मन सतगुर पुन दान दया मते फिर संग पावे सहज नावे बेणी ता संगम सत सते आराधे अकंकार साचा नित दे चढ़े सुवाया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया कहन कह सब कोए केवड़े आखी है हम मूर्ख नीचा जान समझा साखी है सच गुर की साखी अमृत पाखी तित मन मानिया मेरा कूच कर आवे बिखला दे शब्द सच्चा गुर मेरा आखण तोटना भगत भंडारी परपुर रहा सोई नानक साच कह बेनंती मन मांजे सच सोई तनासरी महला पहला जीवा तेरा नाए मन आनंद है जियो साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो गुर ज्ञान अपारा सिरजनहारा जिन सिर जी तिन गोई परवाना आया हुक्म पठाया फिर न सकै कोई आपे कर वेखै सिर सिर लेखै आपे सुरत बुझाई नानक साहब अगमा गोचर जीवा सच्ची नाई तुम सर अवर ना कोए आया जाए सी जियो हुक्मी होए नबेड़ परम चुकाए सी जियो गुर परम चुकाए अकथ कहाए सच में साई समाना आपो पाए आप समाए हुक्मी हुक्म पछाणा सच्ची वडियाई गुरते पाई तू मने अंत सखाई नानक साहेब अवरना दूजा नाम तेरे वडियाई तू सच्चा सिरजनहार अलख सरंदिया जियो एक शब्द इरा वाद वधंदिया जियो दो राह चलाए हुक्म सवाए जन्म वा संसारा नाम बिना नाही को बेली बिखला दी सिर पारा हुक्मी आया हुक्म ना बूझे हुक्म सवारन हारा नानक साहेब सब संजापै साचा सिरजनहारा
ਭਗਤ ਸੋਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਇਆ ਜੀਓ, ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣ ਰਸਨ ਰਸਾਇਆ ਜੀਓ। ਰਸਨ ਰਸਾਏ ਨਾਮ ਤਸਾਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਕਾਣੇ, ਪਾਰਸ ਪਰਸਿਐ ਪਾਰਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਣੇ। ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਇਆ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਵਿਰਲਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੋਹੰਦਰ ਸਾਚੈ ਸਾਚੇ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀ। ਭੁੱਖ ਪਿਆਸੋ ਆਥ ਕਿਉਂ ਦਰ ਜਾਏ ਸਾ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸਾ ਜੀਓ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਸੱਚ ਵਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਪਛਾਣਾ, ਦੀਨਾ ਨਾ ਦਿਆਲ ਨਿਰੰਜਨ ਅੰਦਨ ਨਾਮ ਵਖਾਣਾ। ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਧਰੋ ਫੁਰਮਾਈ ਆ ਮੁਆ ਮਨ ਮਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਨਿਵਾਰੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਰ ਸਿੰਘ ਮੂਠੜੀਏ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈਐ ਜੀਓ, ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆਲਾ ਲੇਖ ਪੁਰਬ ਕਮਾਇਆ ਜੀਓ, ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਈ ਪੁਰਬ ਕਮਾਇਆ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਹੋਸੀ। ਗੁਣੀ ਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਅਵਗੁਣ ਬਹਿ ਬਹਿ ਰੋਸੀ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਆਕੀ ਛਾਇਆ ਬਿਰਧ ਭਏ ਦਿਨ ਪੁੰਨਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਿਨਾ

हमरे मन तनो राम को नामा। राम सिमरो राम सिमरो राम सिमर पाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ ते अधकाई रहाओ। बनता सुत देहे ग्रहे संपत सुखदाई, इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधियाई। अजा मालो गज गन का पतत कर्म कीने, तेऊ उत्तर पार परे राम नाम लीने। सूकर कूकर जोन भ्रमे तऊ लाज ना आई, राम नाम छाड़ अमृत काहे बिख खाई। तज परम कर्म बेदन खेद राम नाम लेही, गुरप्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही। तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद गहरी करके नीम खुदाई। ऊपर मंड पछाए मारकंडे ते को अधकाई, जिन तरन तर मुंड बलाए।

दुर्योधन से भाई, बारह जो जन छत्र चले था, देही गिरज न खाई, सर्व सो इनकी लंका होती, रावण से अधकाई, कहां पयो दर बांधे हाथी, खिन में पई पराई, दुर्वासा सो करत ठगौरी, जादवे फल पाए, कृपा करी जन अपने ऊपर, नाम देव हर गुण गाए, दस बैर अग्न मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नावो, सत्तर दोए भरे अमृतसर, बेको मार कढ़ावो, पाछे बहुर ना आमन पावो, अमृत बाणी करते उचराओ, आत्म को समझावो रहाओ, बजर कुठार मोहे है शीना, कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो, यह संसार ते तभी छूटो, जो माया न लिपटावो, माया नाम गर्भ जोन का, तेहता दर्शन पावो, इत कर भगत करे जो जानो, तिन पौ सगल चुकाई है, कहत नाम देओ बाहर क्या भरमो, ए संजम हर पाई है, मारवाड़ जैसे नीर बालहा, बेल बालहा कर हला, ज्यो कुरंक निसनाद बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, तेरा नाम रूडो रूप रूडो, आतरंग रूडो मेरो रामैया, रहाओ ज्यो तरणी को इंद्र बालहा, कुसुम बास जैसे पावरला, ज्यो कोकल को अंब बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, चकवी कौ जैसे सूर बालहा, मान सरोवर हंसला, ज्यो तरणी कौ कंत बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, बारक कौ जैसे खीर बालहा, चात्रक मुख जैसे जल तरा, मछली कौ जैसे नीर बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, साधक सिद्ध सगल मुन चाहै, बिरले कहूं डीठला, सगल पवन तेरो नाम बालहा, त्यों नामे मन बीठला, पहल पुरिए पुंडरक वना, ताचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानाऊ हर हर नाचंती नाचना, पहल पुरसा बिरा, अथोन पुरसा दमरा, असगा अस उसगा, हर का बागरा, नाचे पिंदी मैं सागरा, रहा।

पिंदी उबकले संसारा भ्रम भ्रम आए तुम चे द्वारा तू कुन रे मैं जी नामा हो जी आला ते निवारणा जमकारणा पतत पावन माधो बिरद तेरा तन ते वह मुन जनो जिन त्यायो हर प्रभ मेरा।

नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पार अठारे सगल जूठारे, तेरो किया तुझे क्या यार पाओ, नाम तेरा तुही चवर टोलारे। दस अठा अठ सठे चारे खानी, यह वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। तनासरी बाणी भगता की, त्रिलोचन एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नारायण निंद सकाए भूली गवारी, दो कृष्त सुकृत थारो कर मरी रहाओ। संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी इसनान रे, कुल जन मध्य मिलियो सारंग पान रे। कर्म कर कलंक मफीट सरी, विश्व का दीपक स्वामी, ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरड़ ताचे बादवा। कर्म कर अरण पिंगलारी, अनक पातक हरता त्रिपवन नाथरी। तीर्थ तीर्थ प्रमता लह ना पार री, कर्म कर कपाल मफीट सरी। अमृत शशि तेन लक्ष्मी, कल्पतारु शिखर सुनागर नदी चे नाथं। कर्म कर खार मफीटसरी, दादी ले लंका गाड़, ओपाड़ी ले रावण बाण, सल बिसाले आण तोखी ले हरी। कर्म कर कशौटी मफीटसरी, पूर्व लो कृत कर्म न मिटैरी कर गेहन। ताचे मोहे जापी आले राम चे रामं, बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन। धूप दीप कृत साज आरती, वारने जाओ कमलापति। मंगला

रामा भगत रामानंद जानै पूर्ण परमानंद बखानै मदन मूर्त पैतार गोबिंद सैन पणै पज परमानंद पीपा कायो देवा कायो देवलो कायो जंगम जाति कायो धूप दीप नहीं बेदा कायो पूजो पाती काया बहु खंड खोजते नवनिद पाई ना कश आए बो ना कश जाए बो राम की दुहाई रहाओ जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजै सो पावे पीपा प्रणवै परम तत् है सतगुरु होए लखावै तन्ना गोपाल तेरा यारता जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सवारता रहाओ दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो परियां शादन निकाया नाज मंगो सत सीका गौ पैस मंगो लावेरी एक ताजन तुरी चंगेरी कर की गीहन चंगी जन तन्ना लेवै मंगी जय श्री महला चौथा कर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे ही अरे रतन नाम हर बसिया गुरहा तरियो मेरे माथा जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे गुरनाम दियो रिन लाथा मेरे मन भज राम नाम सब अर्था गुरपुरे हर नाम दृढ़ाया बिना मैं जीवन बिरथा रहाओ बिन गुरमूड पए है मन मुख ते मोह माया नित फाथा तिन साधु चरण ना सेवे कबहू तिन सब जन्म अकाथा जिन साधु चरण साध पग सेवे तिन सफल्यो जन्म सनाथा मोको कीजै दास दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा हम अंधले ज्ञान ही न ज्ञानी क्यों चले मार्ग पंथा हम अंधले को गुरे अंचल दीजै जन नानक चले मिलन था जय श्री महला चौथा हीरा लाला मोल कह पारी बिन गाहक मीका काखा रतन गाहक।

गुण गाहा, हर हर हर जस घूमर पावो, मिल सतसंग ओ महाराम, आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन हर कथा नाम लै लाहा, हर हर कृपा तार गुर मिलो, गुर मिलिया हर ओ महाराम, कर कीर्त जस अगमाथा, खिन खिन राम नाम गावाहा, मोको तार कृपा मिलिया गुरदाते, हर नानक भगत्यो महाराम, जय श्री महला चौथा, रस रस राम रसाल सलाहा, मन राम नाम पीना लैलाहा, खिन खिन भगत करै दिन राती, गुरमत भगत्यो महाराम, हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द लैलाहा, गुरमत पंच दूत वासे आवै, मंतन हर ओ महाराम, नाम रतन हर नाम जपाहा, हर गुण गाय सदा लैलाहा, दीन दयाल कृपा कर माधव, हर हर नाम ओ महाराम, जप जगदीश जपो मन महा, हर हर जगना जगलाहा, तन तन वड्डे ठाकर प्रभ मेरे, जप नानक भगत्यो महाराम, जय श्री महला चौथा, आपे जोगी जुगत जुगाहा, आपे निरपौ ताड़ी लाहा, आपे ही आप वरतै, आपे नामो महाराम, आपे दीप लोप दीपाहा, आपे सतगुर समुंद मथाहा, आपे मथ मथा तत कढ़ाए, जप नाम रतनो महाराम, सखी मिलाओ मिल गुण गावाहा, गुरमुख नाम जपो हर लाहा, हर हर भगत दृढ़ी मन पाई, हर हर नामो महाराम, आपे वरदाना वड़साहा, गुरमुख पूंजी नाम विसाहा, हर हर दात करो प्रभावै, गुण नानक नामो महाराम, जैत सरी महला चौथा, मिल सत संगत संग गुराहा, पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा, हर हर कृपा तार मधसूदन, मिल सत संग ओ महाराम, हर गुण बाणी श्रवण सुनाहा, कर कृपा सतगुरु मिलाहा, गुण गावै गुण बोलै बाणी, हर गुण जपियो महाराम, सब तीर्थ वर्त जग पुन तोलाहा, हर हर नाम न पुजै पुजाहा, हर हर अतुल तोलियत भारी, गुरमत जपियो महाराम, सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा, किल विख मैल

बेसुमार बेअंत बढ़ दाता मने गही रहो पेख प्रभ को जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जब प्रभ को गुर प्रसाद नानक मन वसया दुख न कभू चूरो बुझ प्रभ को जैत सरी महला पंजवा लोड़ींदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके कट कट तसै बसेरा रहाओ सुख अराधन दुख अराधन बिसरै ना काहू बेरा नाम जपत कोट सूर्य उजारा बिनसै परम अंधेरा थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा संत संग पावै जो नानक तिस बहुर ना होई है फेरा जैत सरी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद अब मैं सुख पायो गुर आग तजी सियानप चिंत विसारी अहं छोड़ियो है त्याग रहाओ जो देखो तो सगल मोहे मोहियो तो सरन परयो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तौ जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जो संत पेटे वड भाग जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरणी चित लाग जैत सरी महला पंजवा मन मैं सतगुर ध्यान तरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाओ काल जाल।

नाव रूप पयो साध संग पवनित पार परा अप्यो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा जैत सरी महला पंजवा जा कहो पय गोविंद सहाई सुख सहज आनंद सकल स्यों वा कहो ब्याध ना काई रहाओ दिसै सब संग रह अलेपा नह व्यापै उन माई एकै रंग तत के बेते सतगुर ते बुद्ध पाई दया मया कृपा ठाकर की सही संत सुभाई तिन कै संग नानक निस्तरिया जिन रस रस हर गुण गाई जैत सरी महला पंजवा गोविंद जीवन प्राण धन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे मैं दीप रहाओ सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम चरण कमलिया नूप अनक बार करो तह बंधन मने चिरावो धूप हार पर्यो तुमरे प्रभ द्वारे दृढ़ कर गही तुम्हारी लूक काढ़ लिहो नानक अपने कहो संसार पाव के कूप जैत सरी महला पंजवा कोई जन हर स्यों देवे जोर चरण गहो बकौ शुभ रसना दीजे प्राणिया कोर रहाओ मन तन निर्मल करत के आरो हर सिंचै सुधा संजोर या रस मैं मगन होत कृपा ते महा बिख्या ते तोर आयो शरण दीन दुख पंजन चितवों तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन शोर जय श्री महला पंजवा चात्रक चितवत बरसत में है कृपा सिंध करना प्रभ तारो हर प्रेम भगत को नेह रहाओ अनक सुख चकवी नहीं चाहत अनद पूर्ण पेख दे है आने पावना जीवत मीना बिन जल मरनाते हैं हाम्या नाथ नाथ हर सरणी अपनी कृपा करे हैं चरण कमल नानक आराध्य तिस बिन आन ना के हैं जय श्री महला पंजवा मन तन बस रहे मेरे प्राण कर कृपा साधु संग पेटे पूर्ण पुरख सुजान रहाओ प्रेम ठगौरी जिन कौ पाई तिन रस पियो पारी ताकि कीमत कहन ना जाई कुदरत कवन हमारी लाए लय लड़ दास जने अपने उधरे उधर नहारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे जय श्री महला पंजवा आए अनक जन्म भ्रम सरणी उधर देह अंध कूप ते लावो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना ना हिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लावो बिखम नदी जाए तरनी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मैं तरनी हर दर्शन तृप्त नानक दास पावत हर नाम रंग या परनी जय श्री महला पंजवा हर जन सिमरो हृदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवै पूर्ण दास के काम रहाओ कोट बिघन बिनसै हर सेवा निचल गोविंद ताम भगवंत भगत को पौ किश नाही आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गहो नानक सुख समूह विश्राम जैत सरी महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पूलेओ मन माया उरजायो जो जो कर्म कियो लालच लग तेह तेह आप बंधायो रहाओ समझ ना परी बिखै रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जान्यो नाहन बन खोजन कौतायो
रतन राम कढ़ी के पीतर ता को ज्ञान ना पायो, जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवायो। जय श्री महला नावा हरजू राख।

करत पाप अभारा, पै मरबे को बिसरत नाहन ते चिंता तन जारा। किए उपाव मुक्त के कारण दे दिसको उठताया, कट ही पीतर बसै निरंजन ताको मर्म ना पाया। नाहन गुण नाहन कछ जप तप कौन कर्म अब कीजै, नानक हार पर्यो शरणागत अपै दान प्रभ दीजै। जय श्री महला नावा, मन रे साचा गहो बिचारा, राम नाम बिन मिथ्या मानो सगरो यो संसारा रहाओ। जा को जोगी खोज तहारे पायो नाहे तह पारा, सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेखते न्यारा। पावन नाम जगत में हर को कबू नाए संभारा, नानक शरण पर्यो जग बंदन राखो बिरद तुहारा। जय श्री महला पंजवा, शंत कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। दर्शन प्यासी दिन सरात चितवो अंदन नीत, खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। शंत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया, तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरो को जंतिया। तिस दस प्यारे सिर तरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजै, नैन हमारे प्रे रंग रंगारे एक तिलपी नाती रीजै। प्रभ स्यो मन लीना ज्यो जल मीना, चात्रक जवै तसंतिया। जन नानक गुर पूरा पाया सगली तिखा बुजंतिया। यार वे प्रे हब्बे सखिया मुंह कहीं ना जेहिया, यार वे हिक डू हिक चाड़े हों किस चितेहिया। हिक दू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा, तना देख मन चाओ उठंदा हों कद पाई गुणतासा। जिन्नी मैंडा लाल रिजाया हों तिस आगे मन डेहिया। नानक कहे सुन बिनो सुहागण मुंह दस डिखा पिर केहिया। यार वे प्रे अपन पाणा किस नी सी छंदा, यार वे तै रव्या लालन मुंह दस दसंदा। लालन तै पाया आप गवाया जै तन भाग मथाने, बहा पकड़ ठाकर हों किदी गुण अवगुण ना पिछाने। गुणहार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बो किछ सुहंदा। जन नानक तन सुहागण साई जे संग पतार वसंदा। यार वे नित सुख सुखेंदी सा मैं पाई, वर लोड़ींदा आया वजी वादाई। महामंगल रहस्थिया पिर दयाल सद नवरंगिया, वड भाग पाया गुर मिलाया साध कै सतसंगिया। आसा मनसा सगल पूरी प्रे अंक अंक मिलाई, बिनवंत नानक सुख सुखेंदी सा मैं गुर मिल पाई। जय श्री महला पंजवा, कर दूजा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। ऊंचा अगमा पार प्रभ कहन न जाया कथ, नानक प्रभ शरणागति राखन को समरथ। शंत ज्यो जानो त्यो राख हर प्रभ तेरिया, केते गण असंख अवगण मेरिया। असंख्य अवगण खते फेरे नित प्रत सद भूली है, मोह मगन बिकराल माया तौ प्रसादी कूली है। लूक करत बेकार बिखड़े प्रभ नेर हूं ते नेरिया, बिनवंत नानक दया धारो काट भव जल फेरिया। सलोक निरत ना पवे असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाओ, नानक की बेनंतिया मिलैन थावे थाओ। शंत दूसर नाही ठाओ कां पह जाइय, आठ पैर कर जोड़ सो प्रभ त्याई है। त्याए सो प्रभ सदा अपना मनह चिंदया पाई है, तजमान मोह विकार दूजा एक स्यो लिवलाई है। अर्प मन तन प्रभु आगे आप सगल मिटाई है, बिनवंत नानक धार कृपा साच नाम समाई है। सलोक अरे मन ता को त्याई है सब जा के हाथ, राम नाम तन संची है नानक निभै साथ। शंत साथी अड़ा प्रभ एक दूसर नाहे कोए, थान थन अंतर आप जल थल पूर सोए।
जल थल महियल पूर रहया सर्वदाता प्रभ धनी गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गुण ताके क्या गनी पज सरन स्वामी सुख है गामी तिस बिना अन नाहे कोए बिनवंत नानक दया तारो तिस प्राप्त नाम होए। सलोक चित जे चितविया सो मैं पाया नानक नाम ते आए सुख सवाया शंत अब मन छूट गया साधु संग मिले गुरमुख नाम लया ज्योति ज्योत रले हर नाम सिमरत मिटे किल विख बुझी तब त्या गानिया गै पुजाली ने दया कीने अपने कर मानिया लै अंक लाए हर मिलाए जन्म मरना दुख जले बिनवंत नानक दया तारी मेल लीने एक पले। जैत सरी संत महला पंजवा पादाणु संसार गर्भ अटिया करते पापा नेक माया रंग रटिया लोभ मोहे अभमान बूढ़े मरण चीत ना आवे पुत्र मित्र व्यवहार बनता एह करत बिहावे पुज दिवस आए लिखे माए दुख धर्म तूते डिठे आ किरत कर्म ना मिटे नानक हर नाम तन नहीं खटे आ उद्यम करे अनेक हर नाम ना गावही पर मैं जोनिया संख मरजन मैं आवही पशु पंखी सैल तरवर गणत कछु ना आवे बीज बोवस भोग भोगे किया अपना पावे हरतन जन्म हर अंत जूवे प्रभु आपना पावही बिनवंत नानक परमे परमाए खिन एक टिकन ना पावही। जोबन गया बतीत जर मल बैठिया कर कंपै सिर डोर

करण कारण समर्थ प्रभ जो करे सो होई। खिन में था प्यो था पदा तिस बिन नहीं कोई, खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रविया सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी, निर्मल जन सोई। सलोक और चंत जी रचना मात गर्भ अस्थापन, सा सा स्मरंत नानक महायज्ञ ना विनाशन। मुख तले पैर उपरे वसंदो कहोथड़ै थाए, नानक सो तनी क्यों विसारियो उदरै जिस दै नाए पौड़ी। रगत बिंद कर निमया अग्न उदर मझार, उर्द मुख कुचीर बिकल नरक घोर गुबार। हर सिमरत तू ना जलै, मन तन उर धार। बिखम थानो जिन रखिया तिस तिल ना विसार। प्रभ बिसरत सुख कदे नाहे, जासै जन्म हार। सलोक मन इच्छा दान करण, सर्वत्र आसा पूर्ण। खंडन काल कलेसै प्रभ सिमर नानक ने दूरन। हब रंग माण जिस संग, तै स्यों लाइय ने हो। सो सहो बिंद न विसरो, नानक जिन सुंदर रचिया दे हो। पौड़ी जियो प्राण तन तन दिया, दीने रस भोग। गृह मंदिर रथ अस दिए, रच पले संजोग। सुत बनता साजन सेवक दिए, प्रभ देवन जोग। हर सिमरत तन मन हरिया, ले जाए विजोग। साध संग हर गुण रमो, बिनसे सब रोग। सलोक कुटम्ब जतन करण, माया अनेक युद्ध में। हर भगत भावहीण, नानक प्रभ बिसरत ते प्रेत तै। तुटड़ी आसा प्रीत, जो लाई बेअन्न स्यों। नानक सच्ची रीत, साई से तीरत आ पौड़ी। जिस बिसरत तन पसम होए, कहते सब प्रेत। खिनग्रे मैं बिसना देवही, जिन स्यों सोई हेत। कर अनर्थ दर्ब संचया, सो कार्य केत। जैसा बीजै सो लुणै, कर में हो खेत। अकृत कणा हर विसरिया, जोनी परमेत। सलोक कोड़दान इस नानंग, अनक सोधन पवित्र तै। उचरंत नानक हर हर रसना, सर्व पाप विमुचते। ईंदन की तो मुकणा, पोरी दित्ती मुपाहे। मन वसंदड़ो सच सहो, नानक हबो डुखड़े उलाहे। पौड़ी कोट अगा सब नास होहे, सिमरत हर नाओ। मन चिंदे फल पाई है, हर के गुण गाओ। जन मरण पै कटी है।

है। नाद कुरंकै बेदया सनमुख उठतावै, पवर लोभी कुसुम बासका मिलिया बंधावै, त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावै। सलोक चितवंत चरण कमलं साह सास आराधन नै बिसरंत नाम अचत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है। शीतला मन मजाहे पलक न थीवै बाहरा, नानक आसड़ी निवाहे सदा पेखंदो सच तनी पौड़ी। आसावंती आस गोसाई पूरी है, मिल गोपाल गोबिंद न कबहू झूरी है, देहो दर्श मन चाओ लै जाए विसूरी है। होए पवित्र शरीर चरना धूरी है, पार ब्रह्म गुरदेव सदा हजूरी है। सलोक रसना उचरंत नामं श्रवणं सुनंत शब्द अमृत है, नानक तन सद बलिहारं जिन्ना ध्यान पार ब्रह्मण है। हब कूड़ावे काम एक सुसाई बाहरे, नानक सेई धन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी। सद बलिहारी तिन्ना जे सुनते हर कथा, पूरे ते प्रधान निवावै प्रभ मथा। हर जस लिखे बेअंत सोहै से हथा, चरण पुनीत पवित्र चालै प्रपथा। संता संग उदार सगला दुख लथा, सलोक पावी उदोत करण हर रमण संजोग पूर्ण। गोपाल दर्श भेटं सफल नानक सो मुहूर्त, कीम ना सक्का पाए सुख मिति हूं बाहरे, नानक सावेलड़ी परवान जित मिलंदड़ो मां पिरी पौड़ी। सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई, सो मूर्त भला संयोग है जित मिले गुसाई। आठ पैर हर त्याय कह मन इच्छ पुजाई, वड़े भाग सतसंग होए निम लागा पाई। मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई। सलोक पतत पुनीत गोबिंद सर्व दुख निवारण, शरण सूर भगवान जपंत नानक हर हर हरे। छड्यो हब आप लगड़ो चरना पास, नठड़ो दुख ताप नानक प्रापे खंदया पौड़ी। मेल लहो दयाल टह पै द्वारे, रख ले वो दीन दयाल परमत बवहारे। भगत वछल तेरा बिरद हर पत ते उधारिया, तुझ बिन नाही कोए बिना मोए सारिया। कर गै लेहो दयाल सागर संसारिया। सलोक संत उदरण दयालं आसरंग गोपाल कीर्तन, निर्मलंग संत संगेन ओट नानक परमेश्वर है। चंदन चांदना सरद रुत मूल न मिटई काम, शीतल थी वै नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी। चरण कमल की ओट उधरे सगल जन, सुन प्रताप गोविंद निरपो पय मन। तोट न आवै मूल संचया नाम तन, संत जना स्यों संग पाइय वड्डे पुन। आठ पहर हर त्याए हर जस नित सुन। सलोक दया करणं दुख हरणं उचरणं नाम कीर्तन, दयाल पुरख भगवान नानक लिप्त नाम आया। पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप, जिन पाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी। जा प्रभ पय दयाल ना व्यापै माया, कोट अगा गए ना।

चरण पखार करो गुर सेवा, मन चरामो भोग, छोड़ आपत बाद हंकारा, मान सोई जो होग। संत टहल सोई है लागा, जिस मस्तक लिखिया लिखोग, कहो नानक एक बिन दूजा, अवर ना करन है जोग। टोडी महला पंजवा, सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर सोभा, चिंता लाहे हमारी रहाओ। अवर ना सूजै दूजी ठाहर, हार पर्यो तौ द्वारी, लेखा छोड़िया लेखै छूटै, हम निर्गुण लेहो उबारी। सदबख सिंध सदा मेहरबाना, सब ना दे आधारी, नानक दास संत पाछै पर्यो, राख लेहो ए बारी। टोडी महला पंजवा, रसना गुण गोपाल निध गायण, सांत सहज रहस मन उपजो, सगले दुख पलायण रहाओ। जो मांगे सोई सोई पावे, सेव हर के चरण रसायण, जन्म मरण दोहूं ते छूटे, पव जल जगत तरायण। खोजत खोज तत् बिचार्यो, दास गोविंद परायण, अविनाशी खेम चाहे जे नानक, सदा सिमर नारायण। टोडी महला पंजवा, निंदक गुर कृपा ते हट्यो, पार ब्रह्म पर भय दयाला, शिव कै बाण सिर काट्यो रहाओ। काल जाल जम जोहे न साकै, सच का पंथा थाट्यो, खात खर्चत किश निखुटत नाही, राम रतन तन खाट्यो। पसमा पूत हुआ खिन पीतर, अपना किया पाया, आगम निगम कह जन नानक, सब देखै लोक सुबाया। टोडी महला पंजवा, किरपनो तन मन किलवख परे, साध संग भजन कर स्वामी, ठाकन कौ इक हरे रहाओ। अनक छिद्र बोहित के छुटकत, थाम ना जाही करे, जिसका बोहित तिस यारा दे, खोटे संग खरे। गली सैल उठावत चाहै, ओए ऊहा ही है तरे, जोर सकत नानक किश नाही, प्रभ राखो शरण परे। टोडी महला पंजवा, हर के चरण कमल मन त्याओ, काड कुठार पित बात हंता, औखद हर को नाओ रहाओ। तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुखरास, ताको बिगड़ ना को लागै, जाकी प्रभया गै अरदास। संत प्रसाद वैद नारायण, करण कारण प्रभ एक, बाल बुद्ध पूर्ण सुखदाता, नानक हर हर टेक। टोडी महला पंजवा, हर हर नाम सदा सद जाप, तार अनुग्रो पार ब्रह्म स्वामी, वसदी की नियाप रहाओ। जिसके से फिर तिन ही समाले, बिन से सोख संताप, हाथ दे राखे जने अपने, हर होए माई बाप। जी जंत होए मेहरवाना, दया तारी हर नाथ, नानक शरण परे दुख पंजन, जाका बड़ प्रताप। टोडी महला पंजवा, स्वामी शरण परयो दरबारे, कोट पराध खंडन के दाते, तुझ बिन कौन उधारे रहाओ। खोजत खोजत बहु प्रकारे, सर्ब अर्थ बिचारे, साध संग परम गत पाई है, माया रच बंधारे। चरण कमल संग प्रीत मन लागी, सुरजन मिले प्यारे, नानक आनंद करे, हर जप जप सगले रोग निवारे। टोडी

कछु ना थोरी तेरो नहीं सो जानी मोरी रहाओ। आपन राम ना चीनो खिनुआ जो पराई सो अपनी मनुआ। नाम संगी सो मन ना बसायो छोड़ जाए वाहू चित लायो। सो संचियो जित भूख तसायो अमृत नाम तोसा नहीं पायो। काम क्रोध

पाक पर्वत गार तू खुद खसम वड्डा आया तोल दस्तगीरी देह दिलावर तू ही एक करतार कुदरत करण खालक नानक तेरी टेक। तिलंग महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जिन किया तिन देखिया क्या कहिए रे भाई आपे जाने करे आप जिन वाड़ी है लाई राय सा प्यारे का राय सा जित सदा सुख होई रहाओ जिन रंग कंत ना रावया सा पछोरे तानी हाथ पछोड़े सिर तुने जब रहन मिहानी पछो तावा ना मिले जब चुकेगी सारी ता फिर प्यारा रावी है जब आवेगी वारी कंत लिया सोहागनी मैं ते वदवी है से गुण मुझे नायावनी कह जी दोस्त रे है जिनी सखी सहर आवेया तिन पूछोगी जाए पाए लगो बेनती करो लेओगी पंथ बताए हुक्म पछाणे नानका पो चंदन लावे गुण कामन कामन करे तो प्यारे कौ पावे जो दिल मिलिया सो मिल रहिया मिलिया कहिए रे सोई जे बहु तेरा लोचिया बाती मेल ना होई तात मिले फुन तात कौ लिव लिवै कौ तावै गुर प्रसादी जानिया तो अन पौ पावै पाना वाड़ी होए कार खर सार न जाने रसिया होवे मुसका ता फूल पछाण अप्यो पीवे जो नानका प्रम प्रम समावे सहजे सहजे मिल रहे अमरा पद पावे। तिलंग महला चौथा हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया बलिहारी गुरे अपने गुर कौ बल जाइया आए मिल गुर सिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे रहाओ हर के गुण हर पाम दे से गुरु ते पाए जिन गुर का पाणा मन्या तिन कुम कुम जाए जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन कहो वारी जिन गुर की कीती चाकरी तिन सद बलिहारी हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा गुर सेवा ते पाई है गुरमुख निस्तारा जो हर नाम ते आएंदे ते जन परवाना तिन मिटाओ नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना साहर तेरी उस्तत है जो हर प्रभ पावे जो गुरमुख प्यारा सेव दे तिन हर फल पावे जिन्ना हर सेती पिरहड़ी तिन्ना जी प्रभ नाले ओए जप जप प्यारा जीव दे हर नाम समाले जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन कौ घुम जाया ओए आप छोटे परिवार स्यों सब जगत छुड़ाया गुर प्यारे हर सेविया गुर तन गुर तन्नो गुर हर मार्ग दसिया गुर पुन वड पुन्नो जो गुर सिख गुर सेवंदे से पुन प्राणी जन नानक तिन कौ वारिया सदा सदा कुर्बानी गुरमुख सखी सहेलियां से आप हर पाइयां हर दरगह पहनाइयां हर आप गल लाइयां जो गुरमुख नाम ते आए दे तिन दर्शन दीजै हम तिनके चरण पखाल दे तूड़ कोल कोल पी जाए पान सुपारी खातिया मुख बीड़िया लाइया हर हर कदे ना चेतो जम पकड़ चलाइया जिन हर नामा हर चेतिया हिरदय और तारे तिन जम कंक तिन जम नेड़ ना आवई गुरसिख गुर प्यारे हर का नाम निदान है कोई गुरमुख जान है नानक जन सतगुर भेटिया रंग रलिया मान है सतगुर दाता आखिए तुस करे पसाओ हाउ गुर विटों सदवारिया जिंद तड़ा नाओ सो धन गुरु साहब आस है हर देश स्नेहा हों वेख वेख गुरु विकसिया गुर सतगुर देहा
ਗੁਰ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵੀ, ਜਿਨ ਸੁਣ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰ ਮੰਨਿਆ ਤਿੰਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਜਾਵੀ। ਹਰ ਕਾ ਮਾਰਗ ਆਖੀਐ ਕਹੋ ਕਿਤ ਬਿਦ ਜਾਈਐ, ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਖਰਚ ਲੈ ਜਾਈਐ। ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਿਆ ਰਾਧਿਆ ਸੇ ਸਾਹ ਵਰਦਾਣੇ, ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਵਾਰਿਆ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਣੇ। ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬੋ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੀਰਾ, ਤੁਦ ਭਾਵੈ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੂੰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤਉ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ ਛਿਣ ਛਿਣ ਔਧ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੈ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਰਹਾਓ। ਹਰ ਗੁਣ ਕਾਹੇ ਨਾ ਗਾਵਹੀ।

जग कहो तुम जानो, नानक हर गुण गाए लै सब सुफर समानो। तिलंग महला नावा हर जस रे मना गाए लै, जो संगी है तेरो अवसर बीतियो जात है, कयो मान लै मेरो रहाओ। संपत रथ तन राज सिंह अत ने हो लगायो, काल फास जब गल परी सब पयो परायो। जान बूझ के बावरे तैं काज बिगारियो, पाप करत सुखच्यो नहीं न गर्भ निवारियो। जेह बिद गुरु उपदेसिया सो सुन रे पाई, नानक कहत पुकार के गहु प्रभ शरणाई। तिलंग बाणी भगतां की कबीर जी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद बेद कतेब इफ्तरा पाई, दिल का फिक्र ना जाए। टुकदम करारी जाओ करो हाजर हजूर खुदाए, बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे। एह जो दुनिया सिहर मेला दस्तगीरी नाहे रहाओ। द्रोग पढ़ पढ़ खुशी होए बेखबर बाद बकाहे, हक सच खालक खलक म्याने श्याम मूर्त नाहे। असमान म्याने लहंग दरिया गुसल कर दन बूंद, कर फकर दायम लाए चश्मे जह तहां मौजूद। अल्लाह पाक पाक है सक करो जे

करीमा रहीमा अल्लाह तू गने हाजरा हजूर दर पेश तू मने दरियाओ तू दिहंद तू बिस्यार तू धनी देह लेह एक तू दिगर को नहीं तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी नामे चे स्वामी बखसंद तू हरी हल्ले यारा खुशखबरी बल बल जाओ हाँ बल बल जाओ नीकी तेरी बिगारी आले तेरा नाओ रहाओ कुजा आमद कुजा रफती कुजा मेरवई द्वारका नगरी रास बगोई खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल द्वारका नगरी काहे के मगोल चंदी हजार आलम एक लखाना हम चिनी पातशाह सांवले बरना।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद राग सुही।

दूध कर्म फुन सुरत समायण होए निराश जमावो जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा रहाओ। एहो मनी टी हाथ करो फोन नेत्रो नींद ना आवे रसना नाम जपो तब मथिया इन बदे अमृत पावो। मन संपटो जित सत सरन आवन पावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहेब रवत रह। कहिंदे कहे कहे कह जावे तुम सरे अवर ना कोई भगत हीन नानक जन जंप हौसा लाही सच्चा सोई। सूही महला पहला कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद अंतर वसै ना बाहर जाए अमृत छोट काहे बिख खाए ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे होवो चक्र साचे केरे रहाओ। ज्ञान ध्यान सब कोई रवे बंधन बांधया सब जग पवे सेवा करे सो चाकर होए जल थल महियल रव रहया सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए प्रणवत नानक तारे।

नाहे मूले पुछ तिस छुट्टै ता कै बोल साहिब नदर जिस कल्ले आने आप जिस नाही दूजा मतै कोए ताहे सारे साज जाने सब सोए नाओ नानक बख्शीस नदरी कर्म होए सूही महला पहला पांडा हच्छा सोए ज्योतिष पाव सी पांडा आत्मलीन तोता हच्छा ना होए सी गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी ये द्वारे तोए हच्छा होए सी मैले हच्छे का विचार आप वरताए सी मत को जाने जाए अगे पाए सी जेहे कर्म कमाए तेहा होए सी अमृत हर का नाम आप वरताए सी चलिया पत्स्यो जन्म सवार वाजा वाए सी मानस क्या विचारा त्यो लोक सुनाए सी नानक आपने हाल सब कुलतार सी सुही महला पहला जोगी होवे जोगवे भोगी होवे खाए तपिया होवे तप करे तीर्थ मल मल नहाए तेरा सदड़ा सुनी जय पाई जे को बह अलाए रहाओ जैसा बीजे सो लुणे जो खट्टे सो खाए अगे पुछ ना होवई जे सणनी सण जाए तैसो जैसा कंडिए जैसी कार कमाए जो दम चेतना आवई सो दम बिरथा जाए एहो तन वेची बै करी जे को ले विकाए नानक कम ना आवई जतन नाही सच्चा नाओ सूही महला पहला कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जोग ना खिंथा जोग ना डंडा जोग ना पसम चढ़ाई है जोग ना मुंदी मूंड मुंडाया जोग ना सिंगी वाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जोगत एव पाई है गल्ली जोग ना होई एक दृष्ट कर संसर जाने जोगी कही है सोई रहाओ जोग ना बाहर मड़ी मसानी जोग ना ताड़ी लाई है जोग ना दे संतर पवे जोग ना तीर्थ नाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है सदगुर भेटै ता सहसा टूटै तावत वर्ज रहाई है निजर चरै सहे तुन लागै कर ही परचा पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है नानक जीवत्या मर रही है ऐसा जो कमाई है वाजे बाजो सिंगी वाजे तौ निरपो पद पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जो जुग तौ पाई है।

मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना, तू जल थल मैयर भरपुर लीना, तू आपे सर्ब समाना रहाओ। मन तारा जी चित तोला, तेरी सेव शराब कमावा, कट ही पीतर सो सहो तोली, इन बिद चित रहावा। आपे कंडा तोल तो राजी, आपे तोलन हारा, आपे देखा आपे बूझे, आपे है मनजारा। अंदला नीच जात परदेसी, खिन आवे तिल जावे, ता की संगत नानक रहिंदा, क्यों कर मूड़ा पावे। राग सुही महला चौथा, कर पहला एको अंकार, सतगुर प्रसाद मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के। मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के, गुर तुठे मन पर बोधया, हर पिया रस गट के रहाओ। सत संगति उत्तम सतगुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा तार मिलो सत संगत, हम धोवे पग जन के। राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाथी तिस तिस के। हमरी जात पात गुर सतगुरु, हम वेचो सिर गुर के, जन नानक नाम परयो गुर चेला, गुर राखो ला जन के। सुही महला चौथा, हर हर नाम भजो पुरखोत्तम, सब बिन से दालद दलगा, पौ जन्म मरना मेट्यो गुर सबदी, हर अस्त्र सेव सुख समगा। मेरे मन पज राम नाम अत पिरगा, मैं मंतन अर्प धरियो गुर आगै, सिर वेच लियो मुल महंगा रहाओ। नरपत राजे रंग रस मान, बिन्ना मैं पकड़ खड़े सब कलगा, धर्म राय सिर डंड लगाना, फिर पछताने हथ फलगा। हर राख राख जन किरम तुम्हारे, सरनांगत पुरख प्रत पलगा, दर्शन संत देहो सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुम गा। तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी, मोको कीजे दान हर निमगा। जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विटाओ सद घुमगा। सूही महला चौथा, हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठ रंग, गुर तुठे हर रंग चाड़िया, फिर बहु न हो भी भंग। मेरे मानो हर राम नाम कर रंग, गुर तुठे हर उपदेसिया, हर पेटिया राव निसंग रहाओ। मुंद ए आनी मन मुखी, फिर आवन जाना अंग, हर प्रभ चेतना आयो, मन दूजा पाओ सहलंग। हम मैल भरे दोहचारिया, हर राखो अंगी अंग, गुर अमृत सर नवलाया, सब लाथे किल वख पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभ, सत संगत मेलो संग, मिल संगत हर रंग पाया, जन नानक मन तन रंग। सूही महला चौथा, हर हर करै नित कपट कमावै, हिरदा शुद्ध ना होई, आन दिन कर्म करे बहु तेरे, सुपने सुख ना होई, ज्ञानी गुरबिन भगत ना होई।